मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:52 मिनट होने ही वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है खेत खलिहान में वार्ता, मिर्च की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे दैनिक जीवन

जीवन में मिर्च का काफी महत्व है। इसका अनेक रूपों में इस्तेमाल होता है। इसकी खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम और आर्द्रता का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो मिर्च की फसल अधिक तापक्रम और आर्द्रता पसंद करती है। यह प्रायः 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पसंद करती है। लेकिन सब्जी जाति वाली किस्में कुछ कम तापमान में भी अच्छी होती है। मिर्च की फसल की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थ से भरपूर उचित जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। क्षारीय भूमि में इसकी खेती नहीं की जा सकती है, परंतु चूने की अधिक मात्रा हो तो भी इसकी सफल खेती की जा सकती है। यह कुछ हद तक अम्लीयता बर्दाश्त कर सकती है। भूमि का पीएच 5.5 से 6.5 होना अच्छा होता है। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए मिर्च की बुआई सही समय पर करनी चाहिए। बिहार में मुख्य फसल हेतु बीज की बुआई का उपयुक्त समय जून जुलाई का महीना है और रोपण का समय जुलाई अगस्त है। बीजों को बीज स्थली में बोएं जिसका ठीक समय अभी चल रहा है। बीज की बुआई के पहले बीज का उपचार थीरम या कैप्टान नामक दवा से निश्चित रूप से आप कर लें। इसके लिए 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम दवा मिलाकर उपचारित करें। 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए 40 से 50 वर्ग मीटर भूमि पौधशाला के लिए पर्याप्त होगी। बीज बोने के लिए पौधशाला की ऊंचाई भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर रखें तथा उसमें पानी नहीं रुके इसकी भी व्यवस्था रखें। क्यारियों की चौड़ाई 1 मीटर तथा लंबाई आवश्यकता अनुसार रखें। बीज को उपचारित करना किसी भी हालत में नहीं भूलें, अन्यथा पौधे बीमारी से आक्रांत होकर मर जाएंगे और उपज में काफी कमी होगी। अगर पौधे कमजोर हों तो यूरिया का उपरिवेशन कर तुरंत सिंचाई कर दें। पौधशाला में लगे पौधे को कम से कम 2 बार 10 से 12 दिनों के अंतराल पर डाइथेन M45 नामक फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करें ताकि रोग होने की आशंका नहीं रहे। कीट का आक्रमण दिखाई पड़े तो मेटास्टाक दवा के 0.1% घोल का छिड़काव भी 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करें। हरी मिर्च के लिए फसल सारों भर उगाई जाती है। किसान भाई इसके लिए बुआई भी फसल लेने के समय के हिसाब से ही करें। सफल खेती के लिए स्वस्थ और रोग मुक्त बीज का उपयोग करें। बीज की दर उसके अंकुरण और शुद्धता प्रतिशत पर निर्भर करती है। यदि बीज का अंकुरण 90 से 95% है तो प्रति हेक्टेयर 700 से 900 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। प्रायः मिर्च के पौधे के रोपण शाम के समय ही आप करें। तेज धूप के समय यदि आप रोपाई करती हैं तो पौधे की वृद्धि कम होती है और पौधे

अधिक आप बढ़ा सकते हैं। किस्मों के बारे में आप जान लें। मसाला के लिए मिर्च की प्रमुख किस्में हैं पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, G1, G2, G4, G5, पंत C1, आंध्र ज्योति, भाग्य लक्ष्मी, K2, पंजाब लाल। संकर किस्मों के लिए सोल्जर, क्रांति, दशहरा, गोदावरी, प्रीति, हीरो, BSS 202, BSS 414, तेजस्विनी अच्छी जातियां हैं। इनकी आप बुआई करें। खेत खलिहान में अभी आपने सुना वार्ता मिर्च की खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन

0: नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन।
2: आकांक्षा। कई सौ वर्ष पहले की बात है, राजधानी दिल्ली के पास ही जंगल में एक फकीर छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। सेवा को धर्म का पर्याय मानकर कुटिया में पधारे सभी आगंतुकों का भरपूर आदर सत्कार करते थे, लेकिन धन की कमी उनके इस पुनित कार्य में बाधक थी। फकीर ने सोचा, क्यों ना बादशाह अकबर से थोड़ा धन मांग लिया जाए, ताकि अतिथियों के स्वागत में धनाभाव के कारण लज्जित ना होना पड़े। ऐसा विचार कर वे दरबार में पहुंचे तो देखा कि बादशाह अकबर नमाज अदा करते हुए खुदा से कह रहे थे कि ए खुदा, तू मुझे और भी दौलतमंद बना, मेरे साम्राज्य का विस्तार कर, मेरी खुशियों में इजाफा कर, आदि आदि। फकीर ने जब ऐसा सुना तो वे उठकर चलने लगे। तब तक बादशाह की इबादत पूरी हो चुकी थी। फकीर को जाता हुआ देखकर बादशाह ने पूछा, आप तो मुझसे मिलने आए थे लेकिन बिना मिले ही चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? फकीर ने कहा, जब तुम ही धन दौलत और साम्राज्य के भिखारी हो तो एक भिखारी के सामने हाथ क्या फैलाया जाए। यह सत्य है कि इस दुनिया में चाहे किसी को कितना भी धन दौलत या मान सम्मान क्यों ना मिल जाए, व्यक्ति की आकांक्षाएं कभी संतुष्ट नहीं होती। स्वामी रामतीर्थ के शब्दों में, जो व्यक्ति गरीब होता है उसे ही अधिक की चाह होती है। ऐसी आकांक्षा सही मायने में विभत्स होती है। जब तक हमें कुछ उपलब्धि पाने की आकांक्षा होती है, भले ही वह किसी भी स्तर पर हो, तब तक वहां पर क्रोध, क्षोभ, गुस्सा, शोक, भय आदि जैसे नकारात्मक भावों की प्रधानता होती है। यदि माध्यम या साधन गलत है तो उसके परिणाम भी गलत होंगे। यदि हमारी आकांक्षा सकारात्मक है तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, साथ ही हमारा कर्म भी अच्छा होगा, क्योंकि इच्छाओं के भंडार से ही विचारों का लावा फूटकर निकलता है। बुरा कर्म करने वाले व्यक्तियों पर किए गए अनुसंधान से पता चलता है कि उनकी आकांक्षा ही बुरी थी। हम धन, पद, यश, ज्ञान, प्यार, व्रत, नियम एवं साधना आदि से स्वयं को भरते रहें तो भी अपने को भर ना पाएंगे, क्योंकि भीतर तो विराट शून्य है। विजयश्री बनने की आकांक्षा उचित अनुचित की सीमा समाप्त कर देती है। प्रेमचंद ने कहा है, असीम आकांक्षा मर्यादा का उल्लंघन कर बैठती है। यदि हम आकांक्षा की प्रकृति को समझ जाएंगे तो फिर इसकी जगह प्रेम लेगा और यही हमारी आंतरिक विजय होगी।
1: अभी आपने सुना चिंतन मनन, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए देश वंदना।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अभी आपने सुना समूह स्वर में देश वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं भीमसेन जोशी एवं लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं भीमसेन जोशी के स्वर में ये भजन।

0: अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता, हृदय घात को कैसे पहचाने। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर कामख्या कुमार।
1: आज मैं आप लोगों को हृदयाघात, जिसको कि जान पहचान की भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इसको पहचानने के कुछ लक्षण हैं जो आप घर में भी अगल बगल भी पहचान सकते हैं। पेशेंट जिसको ये हृदयाघात होता है उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या वो कंप्लेन करेगा। पहले तो सबसे पहले सीने में बहुत तेज़ दर्द होता है, जो कि धीरे धीरे भी हो सकता है या फिर अचानक भी हो सकता है। इस दर्द की अवधि 20 से 30 मिनट तक रहती है। यह बहुत जोरदार दर्द होता है, लेकिन कभी कभी दर्द के बदले में हमारा जो पेशेंट है वो बोलेगा कि सीने में जकड़न हो रहा है, मेरा सीना बहुत भारी हो रहा है, इस तरह का भी कंप्लेन कर सकता है। दूसरा, सीने में दर्द के अलावा हमारा जो पेशेंट है वो बोलेगा कि जबड़े में दर्द है, दांत में दर्द है, या बहुत जोर से सर में दर्द हो रहा है। इससे भी हम लोग हृदयाघात को या हार्ट अटैक को समझ सकते हैं कि वो हो सकता है। तीसरा जो और जगह है वो दोनों बाहों में दर्द हो सकता है, ज़्यादातर बाएं साइड में होता है, कंधों में हो सकता है। तो ये सब दर्द हैं जो कि सीने के अलावा और जगह भी दर्द हो सकते हैं, और ये सभी हार्ट अटैक के रूप में हो सकते हैं। दर्द के अलावा अचानक सांस फूलना, खांसी होना, प्लस पेशेंट का अपने बिछावन पे बार बार करवट बदलना और आराम की स्थिति को खोजना भी हार्ट अटैक या हृदयाघात का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा जो बहुत कॉमन है, बहुत आम चीज़ है, कि कभी कभी दर्द ना होके पेशेंट बोलता है कि बहुत ज़ोर से गैस बन गया है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रहा है, तो ये सब भी चीज़ कभी कभी हृदयाघात या हार्ट अटैक के रूप में चाहे पहचाने जाते हैं या फिर जाने जाते हैं। इसके अलावा जब कोई मरीज जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, जैसे डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से ऐसा है उसको, तो उसको अगर खूब पसीना आ रहा है या फिर पसीने में अचानक नहा गया है, तो ये भी एक हार्ट अटैक का लक्षण है। फिर अचानक कमजोरी आना, बेहोशी जैसी स्थिति होना, या फिर उसको लगे कि अब मैं मर जाऊंगा, मरणासन्न जैसी स्थिति भी एक हृदयाघात का लक्षण है। ये सब लक्षण जो है अगर किसी पेशेंट के आसपास ऐसा दिखाई दे तो सबसे पहले हार्ट अटैक या हृदयाघात के रूप में सोचना चाहिए, और उसके बाद छोटे मोटे चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे गैस्ट्रिक हो सकता है या फिर और मसल प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको अलग से हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन ये सब जो लक्षण मैंने आपको बताया है ये सब हार्ट अटैक के रूप में हो सकता है। इसके अलावा एक दर्द रहित हृदयाघात भी होता है, जो बिना दर्द के भी हो सकता है।

0: है जिसे साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं, जैसे कि किसी लंबी बीमारी वाली पेशेंट में, जैसे डायबिटीज वाले लोगों में यह खास होता है कि उसको कभी कभी दर्द बिल्कुल नहीं होता है और हार्ट अटैक होने के बाद वो अचानक मर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं साइलेंट हृदयाघात और साइलेंट हार्ट अटैक। अगर ऐसा पेशेंट कोई आता है तो सबसे पहले तो बगल के क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाएं और पहले इस बात की पुष्टि कर लें कि ये जो सब चीज लक्षण है वो हार्ट अटैक के हैं या दूसरी बीमारी है। हार्ट अटैक का जांच सबसे पहले वहाँ ECG के द्वारा या फिर ब्लड टेस्ट में CKMB, ट्रॉप आई टेस्ट वगैरह कुछ साधारण से टेस्ट हैं जिसको करा लेने के बाद हार्ट अटैक की जानकारी हो सकती है। और अगर हार्ट अटैक है तो उसी डॉक्टर या फिर नज़दीकी अस्पताल में जाके हार्ट अटैक का जांच, फिर उसके बाद इलाज आराम से आप करवा सकते हैं। हार्ट अटैक से बचने का लक्षण या ना हो किसी आदमी में, ये तो संभावना है, लेकिन इससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। जैसे कि कोई आदमी बीमारी से ग्रसित है, डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर बहुत मोटे हैं, थायराइड है, तो ये सब चीज जो है कंट्रोल रखना है। खास करके ब्लड प्रेशर के रोगियों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि अपना ब्लड प्रेशर वो नियमित रूप से जांच करवाएं, और जांच करवाते करवाने के साथ साथ अगर वो बढ़ा हुआ है तो प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर टाइम पे दवा लेते रहें, उसको बीच बीच में जांच करवाते रहें अपने ब्लड।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुना वार्ता, हृदयघात को कैसे पहचाने। वार्ताकार थे डॉक्टर कामाख्या कुमार। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी।

भरत के साथ अयोध्या का समस्त समाज अवधपुरी के मार्ग पर उदास लौट रहा है। सभी श्री राम के विरह में विह्वल हैं। ऐसी मनोदशा में स्नान भोजन की सुधि किसे होगी? यमुना, गंगा तथा गोमती को पार कर चौथे दिन लोग अयोध्या पहुंचे। मंत्री गुरुवर वशिष्ठ की देखरेख में भरत को राज्य सौंप सहेज कर मिथिलापति 4 दिनों बाद तिरहुत लौट गए। भरत ने श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित करके गुरुजन तथा माताओं की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर धर्म की धुरी धारण की। नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर वहां निवास करने लगे।

रामचरितमानस गान संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे रसरंग, मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास, स्मृति संवाद एवं फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नहीं पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम बज में उर्दू। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। लोकगीत आप सुनेंगे 10:30 पर, गायक कलाकार होंगी नूतन कुमारी। फिल्म संगीत नई फिल्म से आप सुनेंगे 11 बजे से। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। दोपहर 12 बजे से आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। 12:30 पर आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दोपहर 1 बजे से आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। कलाकार होंगे तेज नारायण चौधरी एवं साथी। 1:30 पर आप सुनेंगे रेडियो धारावाहिक गंगा के सुरताल, लेखक होंगे रमेश रमन। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। 3 बजे से आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग। गायक कलाकार होंगे नुसरत फतेह अली खान। समूह स्वर में देशभक्ति गीत आप सुनेंगे 3:20 पर। 3:25 से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्र सेवा के कार्यक्रमों का प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे से आप सुनेंगे युवा वर्गों को संबोधित कार्यक्रम युवा वाणी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा पर्यावरण में वार्ता, विश्व पर्यावरण दिवस, नई उम्मीद नया संकल्प। वार्ताकार होंगे अरविंद कुमार मिश्र। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार होंगे श्यामानंद झा। रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो नाटक लोहा सिंह, लेखक होंगे रामेश्वर सिंह कश्यप, प्रस्तुतकर्ता होंगे श्याम सुंदर उस्ताद। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे अंगिका लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम गुंज बिहार। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे गीत गजल कार्यक्रम भाव गीत।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी म्यान्मारदेशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आङ्ग लैङ्ग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यान्मार भारतदेशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेऽपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यान्मार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपतिभवने म्यान्मार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आङ्ग लैङ्ग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ती राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यान्मार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक सम्बन्धान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पादसमूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षताम् कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षासम्बन्धः सुदृढः अभवत्।

0: नितिननवीन ह्य नवदिल्ल दल से वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्तृभि सह उपवेशनम् कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉक्टर संवित पात्रावर्यः नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य द्वादश वर्षाणां सेवायाः विषये संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में जिसे आप रोजाना सुनते हैं सुबह के 7 बजे से लेकर 7:55 तक। और श्रोताओं, आज मैं हूं आप सभी के साथ आपका रेडियो दोस्त केशव, और आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह प्रोग्राम जानकारियों से भरा है, जहां पर हम जानते हैं बहुत सी जानकारियों को, जैसे कि मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास एवं अन्य जानकारियां। और श्रोताओं, आपको पता ही है कि कार्यक्रम के 2 पड़ाव में हम आपको बहुत सारी जानकारियों को बताते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों को भी सुनवाते हैं। और आज कार्यक्रम के पहले पड़ाव में हम आपको सुनवाएंगे गायक कलाकार राजीव कुमार झा को हमारे रसरंग में, और साथ ही साथ 7:20 पर हम आपको सुनाएंगे स्मृति संवाद, जिसमें भेंटवार्ताकार होंगे नरेश प्रसाद सिंह और भेंटकर्ता होंगे कुसुमाकर दुबे। और साथ ही साथ कार्यक्रम के 2 पड़ाव में हम आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीत। आइए श्रोताओं, अब अपने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के और सुनते हैं गायक कलाकार राजीव कुमार झा को रसरंग में।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं मौसम सूचना के बारे में। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 2 जून के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। आपको बता दें, इसके बाद मौसम शुष्क रहने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत तथा दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की भी संभावनाएं हैं। तो श्रोताओं, ये थी मौसम सूचना के बारे में जानकारी। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कुछ जानकारियों को।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक

0: यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए रसरंग में सुनते हैं गायक कलाकार राजीव कुमार झा के द्वारा गाया यह भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे रसरंगी गायक कलाकार राजीव कुमार झा को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है स्मृति संवाद। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर नरेश प्रसाद सिंह, भेंट करता है डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा।
1: श्रोताओं नमस्कार। जीवन के स्मृतियों के पन्नों को समेटे हुए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ उपस्थित हैं नरेश प्रसाद जी। नरेश प्रसाद जी एक अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं। सबसे पहले नरेश भाई, हम आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में, और पहली बात जो जानना चाहेंगे वो ये कि आप कहाँ के रहने वाले हैं।
2: जी, मैं नरेश प्रसाद सिंह, मैं ग्राम करहरिया पत्रालय करंजा अंचल संभोगन जिला बांका का निवासी हूँ।
1: बाल्यकाल आपका यहीं बीता था?
2: जी, बाल्यकाल यहीं बीता।
1: पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई?
2: पढ़ाई लिखाई तो घर से ही हुई जी। और सबसे पहले मैंने जो हाई स्कूल की परीक्षा पास की वो रमावती रामेश्वरी उच्च विद्यालय प्रतापपुर, जो शंभुगंज ब्लॉक में है, वहीं 1967 ईस्वी में मैंने प्रथम श्रेणी से मैट्रिक की परीक्षा पास की।
1: उसके बाद की पढ़ाई?
2: उसके बाद 1971 में मैंने इंटर की परीक्षा की बांका से, और बाद में 1967 ईस्वी में मैं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय बांका में बेसिक ट्रेनिंग के लिए नामांकन लिया। उसके बाद 4/9/1973 को मेरी नियुक्ति उच्च प्राथमिक विद्यालय बघौनिया अंचल बेलहर जिला बांका में हुई।
1: उसके बाद?
2: उसके बाद वहीं मैं लगातार 32 वर्षों तक कार्यरत रहा।
1: लगातार उसी स्कूल?
2: जी।
1: अवकाश प्राप्त भी उसी स्कूल से?
2: जी नहीं, अवकाश प्राप्त तो बाद में किए, फिर शंभुगंज आ गए।
1: 32 वर्ष वहां करने के बाद आप शंभुगंज?
2: जी।
1: शंभुगंज में कितने वर्ष रहे?
2: शंभुगंज में 4 वर्ष रहे।
1: अच्छा।
2: मध्य विद्यालय नरौन अंचल शंभुगंज जिला बांका।
1: अवकाश प्राप्त वहां से किए?
2: जी।
1: कुल कितनी सेवा की आपने?
2: वो लगभग 36 वर्ष
1: 10 महीने की सेवा है ना। अभी आपकी उम्र कितनी है नरेश भाई?
2: 66 वर्ष है
1: जी। आपकी जन्मतिथि क्या है?
2: 9/1/1951 है।
1: 51 की जन्मतिथि है और 66 वर्ष की उम्र में आप नरेश भाई स्वस्थ दिख रहे हैं, सानंद दिख रहे हैं, है ना? आपके स्वास्थ्य का राज क्या है?
2: जी, मेरा जीवन तो नियमित है, मैं नियमित समय पर जगता हूँ जी।
1: माने वो समय क्या है जगने का?
2: जी, उस समय लगभग आजकल तो 5 बजे जगता हूँ, ठंडा का समय है, 5 बजे जगता हूँ। उसके बाद शौच क्रिया से निवृत्त होकर ठीक 5:20 के लगभग मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ। मेरे साथ 2-4 और ऐसे
1: मित्र लोग होते हैं।
2: हाँ, मित्र लोग हैं और अधिकांश उसमें सेवानिवृत्त शिक्षक ही होते हैं।
1: कितनी दूर तक टहलते?
2: कम से कम 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना,
1: 5 किलोमीटर आप सुबह सुबह लगा। उसके बाद की दिनचर्या में क्या किया है आपका?
2: उसके बाद वहाँ से आते हैं, मुँह हाथ धो के, बस नाश्ता वगैरह तो नहीं करते हैं, लेकिन सुबह में 1 गिलास चना का शुद्ध सत्तू घर का बना हुआ उसको पी लेते हैं।
1: जी जी जी
2: जी। उसके बाद ठीक 10-11, उसके बाद थोड़ा सा मैं अध्ययन करता हूँ। मैं थोड़ा होम्योपैथ से जुड़ा हुआ हूँ और होम्योपैथ की किताबें लेकर पढ़ता हूँ और इसका अध्ययन करता हूँ। और कभी काल अगर कोई आते हैं मेरे पास कुछ सुझाव लेने के लिए तो उन्हें सुझाव देता हूँ, कुछ लिख भी देता हूँ दवाई के लिए, वो लोग दवाई लाते हैं।
1: अच्छा नरेश भाई, ये मैं बता दूँ कि वो बगैर प्रमाण पत्र के और बगैर रजिस्ट्रेशन के क्या ये किसी को बताना चाहिए कि कौन सी दवाई आप
2: जी जी जी करें? मैं जो है MBEH मैंने की थी, मेरा रजिस्ट्रेशन भी है।
1: अच्छा, कहाँ से किए थे?
2: पटना से किए थे।
1: अच्छा अच्छा
2: जी।
1: तो ये सेवा में रहते हुए आपने किया था?
2: जी, सेवा में रहते हुए किया था जी।
1: तो इसके लिए पढ़ाई लिखाई क्या नियमित होकर किए थे या अवकाश लेकर किए थे या ऐसे कर लिए?
2: उसमें जो परीक्षा होती थी ऐसे परीक्षा तो दिए थे, परीक्षा की अवधि में बराबर छुट्टी लेकर ही दिया करते थे। मैंने सेवा अवधि में ही BA की परीक्षा पास की, विभागीय अनुमति पत्र लेकर। उसके बाद MA की परीक्षा भी पास की, विभागीय अनुमति पत्र लेकर।
1: रात को सोते कितने बजे हैं नरेश भाई?
2: लगभग 10 बजे सोते हैं।
1: 10 बजे
2: जी,
1: चलिए नींद पूरी हो जाती है ना, 10 से
2: नींद पूरी हो जाती है जी, हाँ
1: है ना,
2: नींद पूरी हो जाती है।
1: 36 वर्षों की सेवा में आपके अच्छे बुरे खट्टे मीठे संस्मरण होंगे नरेश
2: जी, जी।
1: वैसे कोई संस्मरण जो आपको याद हो वो बता सके, कौन से संस्मरण है जो आप, किस घटना को आप भूल नहीं पाते हैं?
2: देखिए, मैं जब उच्च प्राथमिक विद्यालय बघोनिया में था, जहाँ की 32 वर्ष मैंने सेवा की, तो वहाँ के पहले हम थे असिस्टेंट टीचर, सहायक शिक्षक, बाद में 10 वर्षों के बाद मैं वहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक बना। उस विद्यालय की स्थिति बहुत दयनीय थी, वहाँ कमरे नहीं थे, कुर्सी टेबल फर्नीचर नहीं थे, लड़के कम थे। जब मैं वहाँ गया तो मैंने पूरी तन्मयता, निष्ठा, ईमानदारी से काम करना शुरू किया। गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए, और वहाँ वो सुने होंगे, वहाँ के विधायक, पूर्व विधायक चतुर्भुज प्रसाद सिंह 3-3 बार विधायक बने, वो वहीं के रहने वाले थे। और संयोग ऐसा कि हमारी जो कमिटी बनती थी विद्यालय शिक्षा समिति, उसमें मुख्य रूप से वे भी एक सदस्य हुआ करते थे। तो वे एक आदर्शवादी, एक निष्ठावान, एक ईमानदार नेता थे, तो उनसे भी हमको प्रेरणा बहुत मिली। और इसके पूर्व वहाँ जो प्रधानाध्यापक थे, जिस समय में असिस्टेंट टीचर था, एक टीचर थे प्रभारी हरनारायण महतो, काफ़ी जानकार और पढ़े लिखे कम, मिडिल पास, वर्नाकुलर, लेकिन अंग्रेजी फटाफट बोलते थे और अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, और बहुत ईमानदार शिक्षक थे। वे विद्यालय में अगर इंस्पेक्टर भी आ जाते तो इंस्पेक्टर भी उनसे परहेज करते थे, बोलने में काफ़ी माहिर थे, पुराने शिक्षक थे। तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा।
1: यानी कि जो अच्छे व्यक्ति से मुलाकात की, उनके आपने अच्छे गुणों को पकड़ा, ये अच्छी बात है। और नरेश भाई, सबसे बड़ी बात है कि आत्म प्रशंसा, ये अपनी अच्छी बातें तो सब लोग बड़े अच्छे ढंग से बता देते हैं। कोई ऐसी बुरी बात जो आपको आज तक दुख हुआ हो कि ये हमने क्यों किया?
2: देखिए, वैसी बात तो नहीं मेरे पास कोई बात हुई है कि कोई अशुभ बात हो।
1: नहीं, हो सकता है, जैसे कि आप 36 साल नौकरी किए, सेवा किए, कभी हो सकता है कि गुस्सा आ गया हो, किसी बच्चे को पीट दिया हो ज्यादा, और बाद में बड़ी तकलीफ हुई हो आपको कि क्यों हमने पीट दिया।
2: देखिए, ऐसी तो मेरे साथ नहीं, मैं बहुत भावुक और बहुत सहनशील धैर्यवान शिक्षक था। और अभी भी वो जो गांव है, वहाँ जहाँ 32 वर्ष मैंने सेवा की, वहाँ जितने युवक थे सबको संगठित किया, वहाँ कोई खेल का, मैं चूंकि फुटबॉलर मैं पहले से ही था, बचपन से ही था, मैट्रिक की परीक्षा पास किया उसके पहले से, बाद में भी बहुत दिन तक फुटबॉल खेलता रहा।
1: वैसे तो फुटबॉल खेलने के क्रम में कहीं गए भी बाहर?
2: जी, लोकल में गए थे, जैसे प्रतापपुर है, तारापुर।
1: राष्ट्रीय स्तर के किन्हीं व्यक्तियों से आपकी मुलाकात?
2: जी नहीं, वैसी बात नहीं हुई थी।
1: राज्य स्तर के किसी व्यक्तियों से आपकी मुलाकात?
2: नहीं, वैसे खिलाड़ियों से नहीं हुई।
1: और घर में जहां आप अभी रहते हैं, वहां आप जैसे कि अपनी जो दिनचर्या आपने बताई, उसमें प्रातःकाल भ्रमण के अलावा जो आपका खान पान है, अध्ययन अध्यापन है, थोड़का फुल्का, इसके अलावा और कोई शौक?
2: शौक तो
1: जो, जैसे खेती बाड़ी का है, पौधे लगाने का शौक है, बहुत तरह की चीजें होती है ना।
2: शौक तो है,
1: जैसे होता है कि अब मान लीजिए हमने अवकाश प्राप्त कर दिया, तो जो अगल बगल के बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं, उनको बुलाकर हम कुछ पढ़ा रहे हैं। स्कूल में आप क्या पढ़ाते थे?
2: स्कूल में तो हम लोग जब प्राइमरी सेक्शन में थे तो वहाँ सब विषय पढ़ाना पड़ता था,
1: और बाद में
2: शिक्षकों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी।
1: बाद में नरेश भाई,
2: बाद में तो सेवानिवृत्त जब तक हुए, तब तक तो सभी विषय का है, मौका ही ऐसा मिलता था कि जिस स्कूल में जाते थे, 1-2 टीचर 3 टीचर से ज्यादा रहते नहीं थे,
1: इसलिए
2: सब विषय पढ़ना
1: पड़ता था। आज के समय में क्या आसपास के बच्चों को आप पढ़ाते लिखाते?
2: नहीं, अभी जो है, मैं जब सेवानिवृत्त हो गया तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह का काम हो कि जिससे कि थोड़ा दिमाग, दिल दिमाग भी संचालित रहे, शरीर भी संचालित रहे। तो मैंने एक 12 कट्ठा की जमीन है, उसमें मैंने आम का पेड़ लगाया, उसके बाद उसमें जामुन, अनार,
1: माने पौधे वगैरह लगाए,
2: बहुत तरह के लगाए, अमरूद लगाए, नींबू लगाए, बहुत लगाए।
1: ये तो स्वहित के लिए हुआ नरेश भैया
2: जी,
1: लोक हित के लिए आपने और क्या किया? अभी अवकाश प्राप्त होने के बाद लोक हित के लिए ऐसा कोई कार्य जो आप किए हुए हों या समाज को आप योगदान दे रहे हों, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना? मैंने एक छोटा
2: सा, हाँ, अभी अभी ऐसा है सर कि उस जगह के जितने आसपास के बच्चे हैं, मैं सबों को प्रेरित करता हूं और मैं ये कहता हूं कि तुम लोगों को जो कठिनाई हो, जो समझ में नहीं आवे, जो हिसाब नहीं बने, चूंकि मैं गणित भी पढ़ाता था और गणित स्कूल में भी पढ़ाता था, विज्ञान भी पढ़ाता था, सब इसे पढ़ाता, लेकिन बच्चों को मैं कहता हूँ कि अगर कहीं कठिनाई हो तो मेरे पास आओ। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आते भी हैं और बाद में जो मैं 32 साल के बाद जब यहाँ नरहौन आ गया, मध्य विद्यालय नरहौन, तो अगल बगल के छात्र थे, गांव के भी छात्र पढ़ते थे, तो वो सब जानते थे कि हाँ ये पढ़ाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं। और इतना ही नहीं, मैंने विद्यालय में आज तक इस अभी जो है आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर सोचा जाए तो मैंने विद्यालय में रहकर इतनी ईमानदारी से काम किया, इतनी ईमानदारी से काम किया कि इसके साक्ष्य में जहाँ जहाँ हम रहे हैं वहाँ के अभिभावक, छात्र, समाज कमिटी है। और मैंने आज तक विद्यालय का मैंने एक भी पैसा पॉकेट में नहीं रखा, बल्कि मैंने
1: छोड़ के ना
2: जी।
1: चलिए, बड़ी अच्छी बात रही नरेश प्रसाद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने जीवन के कुछ संस्मरणों को आप हमारे श्रोता भाइयों के साथ बांटा।
0: अभी आपने सुना स्मृति संवाद में भेंट वार्ता। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर नरेश प्रसाद सिंह, भेंटकर्ता थे डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और जानेंगे अन्य शेष जानकारियों के बारे में। सबसे पहली जानकारी है यानी कि आज के दिन के इतिहास के बारे में जानते हैं। आज की तारीख है 2 जून, और 2 जून को क्या कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं इसके बारे में जानते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि साल 1924 ईस्वी में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, जिसके माध्यम से अमेरिका में जन्मे सभी मूल अमेरिकियों यानी जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है, उन्हें आधिकारिक रूप से अमेरिकी नागरिक घोषित किया गया था। साल 1947 में आज ही के दिन भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की आधिकारिक रूप से घोषणा की थी। साल 1953 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में राज्याभिषेक यानी कि ताजपोशी हुआ था। इस भव्य समारोह का पहली बार टीवी पर प्रसारण किया गया था। साल 1966 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका ने अपने पहले ही प्रयास में सर्वेयर 1 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा था। और आज ही के दिन साल 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम हिस्सों को अलग करके तेलंगाना को भारत के 29वें राज्य के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली। तब से हर साल 2 जून को यहां तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो श्रोताओं, ये थी 2 जून को इतिहास में घटित कुछ प्रमुख घटनाएं जिनके बारे में हमने जाना। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जोधा अकबर से। इस गीत को आवाज़ दिया है जावेद अली ने।

और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत जिसे हमने लिया है फिल्म जन्नत से। लेकिन इस गीत से पहले आइए कुछ जानकारियों को सुनते हैं जिनमें कि हमारी जानकारी है रेल सूचना के बारे में, यानी कि आप सभी को रेल सूचना से अवगत करवाते हैं। गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, जिसका सही समय है सुबह 7:50 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करिए गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस, जो कि रोज़ाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है 7:45 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 20 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 8:15 पर और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 1:10 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 8:05 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 9:10 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर, जिसका सही समय है 8:37 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 12335 भागलपुर लोकमान तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, जो कि मंगलवार और शुक्रवार के दिन चलती है भागलपुर जंक्शन से लोकमान तिलक टर्मिनल की तरफ और इस गाड़ी का सही समय है 8:55 और यह गाड़ी अपने सही समय पर आज मंगलवार के दिन भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 9 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 20 की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्योल इंटरसिटी, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 9:35 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 30 की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 10:15 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुँचेगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो कि रोज़ाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है सुबह 11:55 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। तो श्रोताओं, ये थी रेल सूचना के बारे में जानकारी और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत जिसे हमने लिया है फिल्म जन्नत से। इस गीत को आवाज़ दिया है KK ने।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए जानते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के बारे में। सबसे पहले सुर्खी है कि अब सिर्फ जहाज व सरकारी नावें चलेंगी, यात्रा फ्री। अब बरारी घाट से महादेवपुर और जाह्नवी घाट तक सिर्फ जहाज व बड़ी नावें चलेंगी, यात्रियों को किराया नहीं देना होगा। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को बरारी घाट पर नाविकों, जलयान संचालकों व प्रशासनिक टीम के साथ बैठक हुई, जिनमें यह निर्णय लिया गया। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो अस्पतालों में सीधे रेफर करने पर लगेगी रोक। 15 जुलाई से राज्य के जिला अस्पतालों में लागू होगी नई रेफरल प्रणाली। आपको बता दें बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों को सीधे बड़े मेडिकल कॉलेज में रेफर करने के खेल पर अब पूरी तरह रोक लगेगी। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में आगामी 15 जुलाई से एक नई और प्रभावी रेफरल प्रणाली को लागू किया जा रहा है। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो राज्य में दरोगा के 20,937 नए पद स्वीकृत, 8,000 भर्ती जल्द। विस्तार से बताएं तो बिहार में पुलिस अवर निरीक्षक यानी दरोगा एवं समकक्ष कोटी के 20,937 नए पद सृजित किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने दरोगा के इतने पदों को पहले ही मंजूरी दे दी थी। इनमें से गृह विभाग के ने 8,000 पदों को बहाली और जिला आवंटन के लिए विमुक्त कर दिया है। वहीं अगली सुर्खी की मैं बात करूं तो अगली सुर्खी है कि अब 5 मई में ही नामांकन, जून व जनवरी में सेमेस्टर पूरा। विस्तार में बताएं तो राज्य के विश्वविद्यालय अब स्नातक में अपनी सुविधा के अनुसार नामांकन नहीं ले सकेंगे। उन्हें एक नियम फॉलो करना होगा, इसे यूनिफॉर्म कैलेंडर के रूप में लोक भवन ने जारी किया है। पहले सेमेस्टर में नामांकन की प्रक्रिया मई में ही शुरू करनी होगी, इसका सेमेस्टर जनवरी में पूरा करना होगा। लोक भवन के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने पत्र जारी किया है। इसके अनुसार पहले सेमेस्टर में मई से 30 जून तक ही नामांकन लेना होगा। तो श्रोताओं ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियां, और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको यह फिल्मी गीत सुनवाते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म हाउसफुल 5 से। इस गीत को आवाज़ दिया है मधुबंती बाग्शी एवं सुमंतो बनर्जी ने।

श्रोताओं, वक्त अब हमें और इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम में आपके साथ और आगे बढ़ पाएं। तो जाते जाते बस यही कहूंगा कि आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और यूं ही आकाशवाणी भागलपुर के साथ जुड़े रहिए। मैं चला, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001

0: हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल, और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउ लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउ लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और

0: सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2-3 branches also।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट U Min Aung Hlaing says his country will not allow its territory to be used against India's security interests. India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President U Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defense, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
9: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
8: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the United States have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement, and negotiations are now focused on a few minor issues, commerce and full stops. We have a report.
10: Commerce Minister Piyush Goyal said that the team from United States is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement BTA. The talks will take place in New Delhi from today and it will last till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator Brendan Lynch. On 3rd of February, both sides announced the framework for the first phase of the BTA. The two sides are proposed to finalize the details of the interim agreement and take forward the negotiations under the broader BTA on multiple areas such as market access, non-tariff measures, customs and trade facilitation and investment promotion. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
8: BJP National President Nitin Naveen held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on the Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancement taking place across every sector. Mr. Patra said, today, the Bharatiya Janata Party and the NDA have been given the opportunity to serve in government in 22 states. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards the empowerment of women.
1: Over the past 12 years, women empowerment in India has witnessed a transformative shift driven by sustained government efforts to enhance access to healthcare, education, livelihood opportunities, financial inclusion and leadership roles. The Pradhan Mantri Mudra Yojana, launched in 2015, has enabled millions of women to access collateral-free loans to start and expand their businesses. Under the scheme, loans worth more than 40 lakh crore rupees had been disbursed to beneficiaries by March this year. Of them, around 17 lakh crore rupees were given to women. Talking to Akashwani News, Vanisri from Tirupur, Tamil Nadu, said that the scheme has motivated her to become entrepreneurs.
11: The help of this scheme, I started my dream career and opened my new business as a small boutique shop. And I'm really proud to say it's running successfully. Now I'm capable to start 2 to 3 branches also and also give more franchises also. Only with the help of this PM Mudra scheme, it motivates me to become an entrepreneur in a larger level.
1: The flagship schemes such as Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Sukanya Samridhi Yojana and Vimania Initiative have collectively strengthened women's access to banking, savings and entrepreneurial platforms. Under the Jan Dhan Yojana, a total of over 58 crore accounts have been opened till date, and out of these, around 33 crore Jan Dhan accounts belong to women. Talking to Akashwani News, a resident of Shimla in Himachal Pradesh, Saroj Bala said that after opening the Jan Dhan account, the full benefits of government schemes are now directly credited to her bank account.
4: Modi ji ke 12 varsh ka karyakal bahut acha hai. Unhone aam janmanas ko bahut suvidhaen di hain, jiska Jan Dhan khate se bhi sambandh hai. उसने एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है. उसके उसने छोटी छोटी सुविधाएं, हमें छोटा सा ऋण भी मिलता है, हमें 10,000 रुपए का, जो बिना किसी गारंटी के देती है सरकार हमें.
1: Another key initiative is the Lakhpati Didi program, which focuses on helping women to achieve sustainable annual incomes of at least 1 lakh rupees. The Beti Bachao Beti Padhao scheme has contributed to improving the national sex ratio at birth from 918 in 2014-15 to 929 in 2024-25. With sustained policy support and innovative programs, women are playing a pivotal role in shaping a self-reliant and inclusive economy. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
8: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. In Uttarakhand, UNESCO World Heritage Site Valley of Flowers, located in Chamoli district, has been opened to tourists. The Forest Department has appealed to visitors to cooperate in the conservation of the valley's rich biodiversity and rare plant species. Valley of Flowers is currently home to more than 300 species of flowers and several rare varieties of flora. Forest Range Officer Chetna Kantpal said that the valley will remain open until October the 31st.
5: Valley 1st June se 31st of October.
12: The valley is open from 1st of June to 31st of October. The valley was discovered by Franz Mait in 1931 while he was returning from a successful expedition to Mount Kamet. He again visited the valley in 1937 and then in 1938. He published a book named Valley of Flowers. In 2005, Valley of Flowers was declared a World Heritage Site by the UNESCO.
5: World Heritage Site declared kiya gaya.
8: 5 newly appointed Supreme Court judges will take oath today. Chief Justice of India Surya Kant will administer the oath of office to the judges. President Draupadi Murmu, after consultation with the Chief Justice of India, has appointed 5 new judges to the Supreme Court. The Central Board of Secondary Education has activated the portal for verification of marks and re-evaluation for students. In a social media post, the board informed that the verification and re-evaluation portal is live now. CBSE has advised students to watch the video carefully for step-by-step instructions on how to apply for verification of marks and re-evaluation. As many as 22 rowers have been inducted into the Target Olympic Podium Scheme TOPS Development Group ahead of the 2026 Asian Games. Details from our correspondent.
6: Total of 22 rowers are now a part of the TOPS development group across 6 boats. Sports Ministry said that the induction of these rowers is another effort to build sustainable bench strength across several boat categories rather than focusing only on individual medal prospects. The crew will now prepare for major international competitions featuring rowing, including the Asian Games and World Cup circuit. Among those inducted are Paris 2024 Olympian Balraj Pawar, Asian Games 2022 silver medalist Arvind Singh and Asian Games 2022 double medalist Jaswinder Singh. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
8: In hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the Men's Under-18 Asia Cup in Kakamigahara, Japan. Captain Ketan Kushwaha led from the front with a brace, scoring in the 3rd and 36th minutes. Varinder Singh added another goal in the 5th minute, while Shahrukh Ali sealed the win with a powerful strike in the 54th minute. Korea's lone goal came through captain Yoon Chae-hyuk in the 21st minute. With the win, India moved level on 6 points with Korea and Japan in Pool A. The top 2 teams from each pool will advance to the semi-finals. India will take on Chinese Taipei in their final pool match tomorrow. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. Coastal Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha, Rajasthan and West Madhya Pradesh can experience thunder squall with wind speed reaching 50 to 60 kilometers per hour. In Keralam, 10 of the 14 districts are under yellow alert today. More from our correspondent.
13: Yellow alert indicating isolated heavy rainfall has been issued in 10 districts of Keralam today. Rainfall is likely to intensify over the next 3 days. Most observatories in Keralam have recorded around 5 mm of rainfall since 4 a.m. today. In Lakshadweep, 15 mm of rainfall has been reported from Kavarathi, Agathi and Amini today. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
8: And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
14: Thank you, Sunil. Heads are likely to roll in the Central Board of Secondary Education as the Education Ministry has initiated an internal crackdown over irregularities in the on-screen marking system tender, reports the Times of India in its top story. The Supreme Court has rejected the plea to computer-based NEET re-exam on June 21, writes the Tribune. For the first time, more than 10,000 girls have cleared G Advanced 2026, the gateway to IITs and premier engineering institutes, and with 1 in 4 girl candidates clearing the exam, this also marks a new record, writes the Indian Express. Myanmar President U Min Aung Hlaing's visit to India is widely covered on the front pages of dailies. Myanmar vows its territory won't be used to threaten India during PM meet, headlines the Pioneer. Security tops India-Myanmar dialogue agenda, writes in the Sun Times. Monsoon misses first June onset date in Kerala and is now likely in 2 to 3 days, reports the Statesman. The Pioneer quotes a report that reveals Indian employees take fewer annual leaves than their peers in Asia-Pacific markets, with only 17.2% Indian workers using 100% of their leave. Daily Zappe tributes to Indian cinema's renowned playback singer Suman Kalyanpur, who died on Sunday. The silken voice of Hindi cinema that touched hearts falls silent, headlines the Hindu. And finally, the latest National Family Health Survey reveals that Indian women using the internet has doubled to 64% in 4 years. Among men, it increased from 51.2% to 80.5%, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Sunil.
8: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Myanmar President U Min Aung Hlaing says his country will not allow its territory to be used against India's security interests. India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
15: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। म्यांमा के सदर ओमिन ऑनलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कुश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। और हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। म्यांमा के सदर ओमिन ऑनलाइन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने कल नई दिल्ली में तजारत, दिफा, तवानाई और कनेक्टिविटी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए वसीतर मौजूआत पर बातचीत की। म्यांमा के सदर भारत के 5 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। बातचीत के बाद नामा निगारों को जानकारी देते हुए खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने म्यांमा के इख्तदारे आला और इलाकाई सालिमियत के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया और तरफेन ने अपने सिक्योरिटी मफादात के मुनाफी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के बेचा इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत उजागर की।
9: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the president has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
15: खारिजा सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने खासतौर पर तजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, तवानाई और मस्नूई जहानत जैसी अहम टेक्नोलॉजी के शोबों में करीबी इश्तराक कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। म्यांमा के सदर आला सतह के वफद के हमरा आज मुंबई जा रहे हैं, जहां वो कारोबारी और सनती रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है और अब मुजाकरात में चंद मामूली उमूर पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमरीकी टीम दोतरफा तजारती मुआहदे के पहले मरहले को हतमी शक्ल देने के बारे में बातचीत के लिए नई दिल्ली आई हुई है। ये बातचीत नई दिल्ली में आज से जुमेरात तक जारी रहेगी। कॉमर्स के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन भारत के आला मुजाकरातकार हैं, जबकि अमरीकी टीम की सरबराही उसके आला मुजाकरातकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के आला अहदेदारों और कारकुनान के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल तंजीमी तौसी और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने से मुतालिक बातचीत के कलीदी निकात को शेयर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने 12 साल मुकम्मल कर रही है और हर किसी ने ये महसूस किया है कि कैसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत में हर शोबे में तरक्की रूनुमा हुई है। जनाब पात्रा ने कहा कि मौजूदा वक्त में बीजेपी और एनडीए को मुल्क की 22 रियासतों में खिदमात अंजाम देने का मौका हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और निफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम हुकूमत की जानिब से ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक किए गए इकदामात का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
16: گزشتہ 12 سال میں خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق اقدامات میں نمایاں تبدیلی آئی ہے. حکومت کی جانب سے حفظان صحت، تعلیم، روزگار کے مواقع اور

0: वाणी के पटने केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर प्रदेश के नगर निकायों में भी आज हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। राज्य के प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मी होने पर नहीं कराना होगा निबंधन। राज्य सरकार ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम समाप्त किया। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा जिले के बरबीघा में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, साथ ही आमस पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री शेखपुरा को 53 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सामस स्थित विष्णु धाम के सौंदर्यीकरण की योजना के साथ अन्य योजना इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है कि मुख्यमंत्री पटना से यहां पहुंचते ही पहले सामस स्थित विष्णु धाम में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद सहयोग शिविर में शामिल होकर वहां मौजूद लोगों से सहयोग शिविर के बारे में फीडबैक प्राप्त करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार।
0: मुख्यमंत्री आज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत परसौनी नाथ पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। राज्य की पंचायतों में भी सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। सहयोग शिविर से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में उद्योगों, निवेशकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों को विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने में जटिलताएं दूर की जाएंगी। पटना में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को लाइसेंस निर्गत करने, अनुमति प्रदान करने और प्रक्रियाओं को सरल तथा आसान बनाने का निर्देश दिया है। श्री चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक उनके खाते में राशि भेजने को सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
2: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि संगठन पार्टी की शक्ति है और उसी के जरिए सरकार की उपलब्धियां और विचारधारा को जन जन तक ले जाना है। इसके तहत महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम को समाप्त कर दिया है। अब दुकान और प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मी होने पर दुकानदारों को निबंधन नहीं कराना होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन की सहमति के बाद इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना के अनुसार अब नए लेबर कोड में 10 और इससे अधिक कर्मी रखने पर ही दुकानदारों को निबंधन कराना होगा। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नियमों का अनुपालन करते हुए सरकारी आवास खाली करना होगा। श्रीमती सिंह ने पटना में जदयू कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राबड़ी देवी वरिष्ठ नेत्री हैं, इसलिए उन्हें भी नियमों का सम्मान करना चाहिए। श्रीमती सिंह ने कहा कि सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई प्रतिशोध और द्वेष की भावना से नहीं की जा रही है। राजद के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुरक्षा कारणों से आवास दिया गया है। इधर राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार यदि द्वेषपूर्ण राजनीति करेगी तो राजद के सभी नेता सरकारी आवास और सुरक्षा वापस कर देंगे। बेगूसराय की एमपी एमएलए अदालत ने केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद

0: गिरिराज सिंह को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जमानत दे दी है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। पटना के बिहटा स्थित इरेडिएशन सेंटर और इनलैंड कंटेनर डिपो के निरीक्षण के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री सिंह ने कहा कि सरकार प्रदेश में आधुनिक औद्योगिक और कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
1: सिर्फ जरदालु आम ही नहीं, मखाना के उत्पादन और मखाना की खरीद बिक्री और एक्सपोर्ट में बिहार जल्द से जल्द अव्वल नंबर पे पहुंचे, इसकी परिकल्पना हम लोग करते हैं। और उस उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह की सुविधाएं ताकि किसान से लेकर जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, उन सबको मिल सके, उसके ऊपर भी हम लोग एक चेन फैसिलिटी बनाने का काम कर रहे हैं। रेडिएशन सेंटर अभी बिहार में एक है, और भी रेडिएशन सेंटर हम लोग बिहार के अलग अलग कोने में भी खोल सके, जिससे कि इस एक्सपोर्ट फैसिलिटी को और ज्यादा सुगम बनाया जा सके।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। लोकभवन ने राज्य के 14 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई निर्धारित है। लोकभवन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में हीट वेव जैसी स्थिति बनी हुई है। पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और बक्सर सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
0: प्रदेश में 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन और बालू उठाव पर रोक लगा दी गई है। खान और भूतत्व विभाग ने कहा है कि आगामी मानसून के दौरान नदियों के जलस्तर में संभावित वृद्धि के मद्देनजर ये प्रतिबंध लगाया गया है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान सभी बालू घाटों पर खनन गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों में बालू की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक बनाने का निर्देश भी दिया है। निगरानी विभाग ने पूर्णिया के नगर प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी रूपक कुमार को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी पर जमीन के दाखिल खारिज की प्रक्रिया के लिए राशि की मांग करने का आरोप है। मुंगेर की एक अदालत ने न्यायालय के आदेश की अनदेखी करने के मामले में मुफस्सिल थाना प्रभारी विपिन कुमार सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। वर्ष 2010 के इस मामले में मुख्य अभियुक्त की मृत्यु संबंधी रिपोर्ट नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। बिहार संग्रहालय की ओर से पटना में आज से 7 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों

0: जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने एक महिला के साथ उत्पीड़न मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी जिले के फुलहर से प्राप्त अभिलेख युक्त बौद्ध देवी तारा की प्रतिमा और पुरावशेष को मिथिला ललित संग्रहालय को सुपुर्द कर दिया गया है। गोवा में संपन्न राष्ट्रीय महिला मास्टर्स एथलेटिक प्रतियोगिता में भोजपुर की अंजू कुमारी ने 3 स्वर्ण पदक जीता। अंजू ने 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ और रिले स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया है। पटना में 6 से 10 जून तक बिहार राज्य सब जूनियर फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन साइट फिर ठप हुई, परेशान रहे विद्यार्थी। दैनिक जागरण लिखता है, करोड़ों की सरकारी दवाओं पर नकली रैपर लगा, बांग्लादेश में तस्करी। दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार और गया समेत कई जिलों के अस्पतालों से आती थी दवाएं। दैनिक भास्कर ने बिहार में काली कमाई से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, काली कमाई से बिहार के अफसरों की प्रॉपर्टी खरीद का खुलासा, मामा जी के जरिए बागडोगरा पहुंच रहा है बिहार के अफसरों का कैश। प्रभात खबर जेई एडवांस परीक्षा परिणाम से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखता है, गुवाहाटी जोन के सफल छात्रों में 45% बिहार के। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर प्रदेश के नगर निकायों में भी आज हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। राज्य के प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मी होने पर नहीं कराना होगा निबंधन। राज्य सरकार ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम समाप्त किया। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म जाने मन से। इस गीत को आवाज़ दिया है सोनू निगम एवं साधना सरगम ने। गीतकार हैं समीर और संगीत है अनु मलिक का।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म सलामे इश्क से। इस गीत को आवाज़ दिया है सोनू निगम, श्रेया घोषाल, साधना सरगम एवं साथी ने। गीतकार हैं समीर और संगीत है शंकर एहसान लॉय का। लेकिन इस गीत से पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नई पुरानी। अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। इस गीत को आवाज दिया है सोनू निगम ने। श्रोताओं, इस गीत से पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।

0: AIR at 90.
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम बज़्म-ए-उर्दू। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं मोहम्मद सरजार अहमद।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम बज़ में उर्दू। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मोहम्मद सरशार अहमद। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत हैं लोकगीत। गायक कलाकार हैं नूतन कुमारी।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं लोक गीत। गायक कलाकार हैं नूतन कुमारी। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये झूमर। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं लोकगीत। गायक कलाकार हैं नूतन कुमारी। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये निर्गुण।

0: आते जब पिंजरा से सुगना।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। गायक कलाकार थी नूतन कुमारी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 11 बजने ही वाले हैं। अगला कार्यक्रम आप कुछ ही देर में सुनेंगे।

धड़क टू फिल्म का गीत अभी आपने सुना विशाल मिश्रा की आवाज़ में। गीतकार रश्मि विराग, संगीतकार थे जावेद मोहसिन।

सोनू निगम और पलक मुछाल को आइए सुनते हैं फिल्म बॉर्डर टू में। गीतकार जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर, संगीतकार हैं अनु मलिक, साथ में मिथुन।

0: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, इस बीच लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।
0: और अंतराल के बाद एक बार फिर शामिल होते हैं नई फिल्मों से कार्यक्रम में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सचेत टंडन और परंपरा टंडन को, फिल्म है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। गीतकार कौसर मुनीर और संगीतकार हैं सचेत परंपरा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से, और अब सुनते हैं फहीम अब्दुल्ला को। फिल्म है तेरे इश्क में। इरशाद कामिल का गीत, संगीतकार हैं AR रहमान।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए वरुण जैन, राघव चैतन्य और सचिन जिगर को फिल्म है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। गीतकार इंद्रनील, संगीतकार हैं सचिन जिगर।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

दोस्तों, कुछ आवाज़ें केवल गीत नहीं गाती, वे भावनाओं को स्वर देती हैं। कुछ आवाज़ें केवल कानों तक नहीं पहुंचती, वो सीधा दिल में उतर जाती हैं। और ऐसी ही एक आवाज़ थी सुमन कल्याणपुर। आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो ऐसा लगता है मानो भारतीय संगीत के आकाश का एक चमकता सितारा कहीं दूर जाकर भी अपनी रोशनी छोड़ गया है। आज का ये गुलदस्ता समर्पित है उस मधुर, कोमल और आत्मा को छू लेने वाली आवाज़ को, जिसने दशकों तक भारतीय संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाई। आज हम श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की महान पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपुर को। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी के निधन ने सचमुच भारतीय संगीत जगत को एक ऐसी पीड़ा दी जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं। 31 मई को 89 वर्ष की आयु में जब उनका निधन हुआ तो भारतीय फिल्म संगीत का एक स्वर्णिम अध्याय हमेशा के लिए इतिहास बन गया। तो आज के कार्यक्रम में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं महान पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपुर को, और आज का गुलदस्ता सजाते हैं उन्हीं के गीतों से।

दोस्तों, आज के गुलदस्ता में हम याद कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी को, सुन रहे हैं उनके गीत और बातें कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके गीतों के बारे में। तो सुमन जी का जन्म 28 जनवरी 1937 को हुआ था। संगीत उनके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा रहा। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की और धीरे धीरे फिल्म संगीत की दुनिया में कदम रखा। 1950 और 60 का दशक तो आपको याद है ना, जिसे भारतीय फिल्म संगीत का स्वर्णकाल माना जाता है। तो उस दौर में जब संगीत के आकाश पर अनेक सारे बहुत बड़े बड़े नाम चमक रहे थे, तब सुमन जी ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनकी आवाज़ में एक अलग सी मिठास थी, एक ऐसी सरलता थी दोस्तों जो सीधा मन को छू लेती थी, दिल में बस जाती थी। और उनकी आवाज़ में एक ऐसी कोमलता थी जो हर गीत को, भावनाओं को एक नया रंग दे जाती थी। कई बार श्रोताओं को ये भ्रम भी हो जाता था कि वे किसी और प्रसिद्ध गायिका को सुन रहे हैं, क्योंकि हमेशा उन्हें लता जी के साथ उनकी तुलना की गई, उनकी आवाज़ की तुलना की गई। लेकिन सच तो ये था ना कि सुमन कल्याणपुर जी की अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान थी, अपना एक अलग जादू था। उनकी आवाज़ में बनावट नहीं थी, दिखावा नहीं था, वो बिल्कुल नदी के शांत जल की तरह बहती थी। और शायद यही कारण रहा दोस्तों कि उनके गीत आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं जितने अपने समय में थे। वो गीत उनका याद है ना, मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा, नूर महल फिल्म का। आइए सुनते हैं वही गीत।

सुमन कल्याणपुर जी को हम याद कर रहे हैं आज के गुलदस्ता में और सुन रहे हैं उनके गीत और बातें हो रही हैं उनके फिल्मों की, उनके गीतों की। तो जब भी सुमन कल्याणपुर जी का नाम लिया जाएगा तब वो सारे गीत जो उन्होंने गाए, जैसे आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, तुमने पुकारा और हम चले आए, या फिर पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, जैसे ढेरों गीत याद आएंगे जो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाए। उनके ढेर सारे युगल गीतों ने हम संगीत प्रेमियों के दिलों में अपना स्थायी निवास बनाया। लेकिन केवल गीत ही उनकी पहचान नहीं थे दोस्तों, उनकी पहचान थी उनका विनम्र व्यक्तित्व, उनकी सादगी, उनका शांत स्वभाव। उन्होंने कभी लोकप्रियता के लिए शोर नहीं मचाया, कभी विवादों में वो नहीं रहीं, वे बस गाती रहीं और उनके गीत स्वयं उनकी पहचान बनते चले गए। कितनी अद्भुत बात है ना, आज के दौर में जहाँ पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वहाँ सुमन जी ने केवल अपने सुरों के सहारे करोड़ों दिलों में जगह बनाई। ढेर सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया और हर संगीतकार, हम अगर विवादों की बात करते हैं तो विवादों से परे जाकर उनका सम्मान करते थे। नौशाद साहब का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, नौशाद साहब कह रहे थे कि जब वो साथी फिल्म बना रहे थे, उसके गीतों की धुन बना रहे थे, तो बाकी सारे गीतों के लिए उन्होंने लता मंगेशकर को लिया, लेकिन एक गीत पर जाकर वो अटक गए और उसके लिए उन्होंने सुमन कल्याणपुर जी को याद किया। मुकेश के साथ ये बड़ा ही प्यारा सा गीत है और यही गीत आइए अब हम सुनते हैं। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, आइए सुनते हैं ये गीत।

कितना प्यारा गीत है ना ये, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, और उतनी ही प्यारी लगती है इसमें सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़, बहुत शांत स्निग्ध और बहुत प्यारी सी आवाज़ लगती है, और मुकेश की भी आवाज़ उतनी ही खूबसूरत है इस गीत में। तो दोस्तों, कभी कभी लगता है कि पुराने दौर के कलाकार सिर्फ कलाकार नहीं थे, वे संस्कृति के वाहक थे, वे हमें सिखाते थे कि प्रसिद्धि से बड़ा होता है समर्पण, तालियों से बड़ा है साधना, और सफलता से बड़ा होता है विनम्र होना। सुमन कल्याणपुर जी इसी परंपरा की प्रतिनिधि थी। उन्होंने, पता है, हिंदी के साथ साथ मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। कई दशकों तक संगीत लोगों के जीवन का हिस्सा बना रहा, उनका संगीत। सुमन कल्याणपुर जी के बारे में अगर हम बातें करें तो फिल्मों से इतर भी उन्होंने गैर फिल्मी गीत खूब गाए, ढेर सारे भजन एल्बम में भी उन्होंने आवाज़ दिया। तो आज हम जब उनके गीत सुनते हैं तो केवल वो संगीत नहीं होता, हम वो एक पूरा दौर सुनते हैं, पता है, उसके साथ शायद हम अपने माता पिता की यादें भी सुनते हैं। हम रेडियो का वो सुनहरा युग सुनते हैं जब गीतों में शब्दों की गरिमा थी, धुनों में आत्मा थी और आवाज़ों में अपनापन था। कहा जाता है कि कलाकार कभी मरते नहीं, वे अपनी रचनाओं में जीवित रहते हैं। तो हम भी ये मानते हैं, हम ये कहते हैं कि सुमन जी भी कहीं नहीं गई हैं, वे रेडियो की हर उस तरंग में हैं या गीतों में हैं, दुनिया की हर तरंग में हैं जहां उनका कोई गीत कभी बजेगा। वे हर उस दिल में हैं जो संगीत से प्यार करता है, वे हर उस स्मृति में हैं जहां भारतीय फिल्म संगीत का स्वर्णिम इतिहास बनता है। उनके निधन पर देश भर से श्रद्धांजलियाँ आई, प्रधानमंत्री सहित संगीत और फिल्म जगत की ढेर सारी हस्तियों ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर बताया। तो आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें नमन करते हैं, उनके सुरों को प्रणाम करते हैं, उनकी साधना को प्रणाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी पावन आत्मा को उनके चरणों में स्थाई निवास प्रदान करें। तो सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, और इस गीत को हमने लिया है इस बार मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ में, और ये फिल्म है राजकुमार।

श्रोताओं, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई परिवर्तन है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, दौर बदलते हैं, लेकिन कुछ धरोहरें ऐसी होती हैं जो हमेशा बनी रहती हैं। और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ भी ऐसी ही धरोहर है। आने वाले वर्षों में जब कोई रेडियो पर उनका गीत सुनेगा, जब कोई पुरानी रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज़ खोजेगा, जब कोई संगीत प्रेमी उनके सुरों में खो जाएगा, तब शायद सुमन जी फिर से जीवित हो उठेंगी। यही तो कलाकार की अमरता है। आज इस श्रद्धांजलि वाले कार्यक्रम में हम केवल एक महान गायिका को याद नहीं कर रहे, हम उस पूरे संगीत युगों को नमन कर रहे हैं जिसने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। हम उस पीढ़ी को प्रणाम कर रहे हैं दोस्तों जिसने कला को पूजा माना। हम उस साधना को आज प्रणाम कर रहे हैं जिसने सुरों को अमर बना दिया। दोस्तों, स्वर कभी नहीं मरते, वे हवा में खुल जाते हैं, स्मृतियों में बस जाते हैं और पीढ़ियों तक सुनाई देते रहते हैं। आज सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ अब भी गूंज रही है रेडियो की तरंगों में, पुराने गीतों की धुनों में और करोड़ों दिलों की धड़कनों में। सुमन कल्याणपुर जी को विनम्र श्रद्धांजलि।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आरंभ होता है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक।

नारी लोक सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, समय का प्रबंधन हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। अलग अलग कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और उसको करने के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है। समय प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि आप स्वयं का मूल्यांकन करें, एक डायरी में रोज की बातें लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना समय उपयोगी कार्यों को देते हैं और

और किस काम को बाद में करना है। काम के दौरान उस कार्य का आकलन भी करते जाएं कि जैसा आपने सोचा था वैसा ही काम हो रहा है या नहीं। समय प्रबंधन का यह मतलब नहीं है कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, यदि गलती हो जाती है तो उसे तत्काल सुधार कर आगे बढ़े, यानी आप काम समय पर करें और सही काम करें। काम के दौरान काम का आकलन करने से आप किसी भी कार्य को सही तरीके से और सही समय में करने का पूर्वानुमान करने की दक्षता बढ़ेगी, और अगली बार जब आप दूसरा काम करेंगी तो आपका आत्मविश्वास और बेहतर होता जाएगा। मैंने यह याद रखें कि आलस्य समय प्रबंधन का घोर दुश्मन है। यदि काम के दौरान आप आलस्य करते हैं तो थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं तो आपकी बनी बनाई कार्य योजना बेकार हो सकती है। इसीलिए भी किसी भी कार्य को पूरा मन लगाकर और सतर्कतापूर्वक करें। एक भी गलती आपके कार्य में बाधा बन सकती है और आपको विपरीत दिशा में ले जा सकती है। बहनों, अपने समय को सही ढंग से उपयोग करने के लिए एक पक्का समय सारणी यानी टाइम टेबल बना लें। हर एक काम के लिए कुछ समय निर्धारित करें। यदि यह हम अपने मन में याद नहीं रख सकते तो बेशक हम उसे किसी कागज़ या अपने मोबाइल में लिखकर रख सकते हैं। बहनों, ज़रूरी नहीं कि हम हर काम समय में ही जुटे हो। यदि काम से छुट्टी हो या कई दिन ऐसे होते हैं जब हमारे पास कुछ ज़रूरी काम नहीं होता, उन दिनों को और खाली समय का सदुपयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। टीवी देखकर या कोई खेल खेलकर भी मनोरंजन करना ज़रूरी है, परंतु ध्यान रखें कि हम उस सारे खाली समय को मनोरंजन में ही ना निकाल दें। बहनों, रात की अच्छी नींद पूरे दिन के ऊर्जा का स्रोत होती है। अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छे से सोएंगे तभी अगले दिन ताज़ा दिमाग के साथ अपने समय का अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। इसीलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि सोने से समय व्यर्थ होता है, बल्कि 7 से 8 घंटा सोने से समय और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहते हैं और हम बाकी के समय जगते हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही बहनों, यह सोचना कि कुछ काम कर लिए और अब कुछ काम बाद में करेंगे, अब थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं, यह गलत है। हम जितना हो सके कम से कम सोशल मीडिया ऐप्स का प्रयोग करें। बहनों, अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोग दिन भर मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं। इससे न केवल आपका समय बर्बाद होता है बल्कि यह आपकी आंखों और स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। इसीलिए सोशल मीडिया का निर्धारित प्रयोग करके भी आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो बहनों, इसी के साथ हम आज की अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ और भी खास बात।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: AIR at 90.
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बहनों, हमारी भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के लिए कई कानून बने हैं जिनका उपयोग करके वे अपने को सुरक्षित कर सकती हैं। समय समय पर बहनों, इन कानून में कई संशोधन और बदलाव भी होते हैं जिन्हें जानना और समझना आवश्यक है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सुनते हैं ये पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। विषय है भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के लिए बने कानून में संशोधन और बदलाव। भेंटवार्ताकार है रेशमा कुमारी और भेंट करता है श्रीना गुप्ता। तो चलिए सुनते हैं ये पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता।
1: बहनों नमस्कार। बहनों, हम समय समय पर अपने कार्यक्रम में भेंट वार्ता के माध्यम से कानूनी संबंधी जानकारी देते रहते हैं। इसी संदर्भ में इस बार का विषय है भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के लिए बने कानून में संशोधन और बदलाव से जुड़ी जानकारी। बहनों, समाज समय के साथ विकसित होता है और इस निरंतर बदलते समाज में इंसानों की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन होते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 इसी का परिणाम है। तो इस नए बने कानून में बच्चों और महिलाओं के लिए क्या संशोधन हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है भागलपुर की जानी मानी अधिवक्ता रेशमा कुमारी जी। रेशमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: जैसा कि आज हम भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहे हैं रेशमा जी, तो हम जानना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता क्या है।
2: हम यही कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता जो है आपराधिक कानूनों का एक नया आधुनिक और सुव्यवस्थित कानून, जो 1860 ईस्वी में कानून था, जो अंग्रेजों के समय बनाया गया था
1: जी,
2: और समय समय बदला और पूरा समाज बदला, लेकिन कानून के बारे में जो भी मामला पुराना था और अपर्याप्त साबित हो रहा था, जैसे महिलाओं के खिलाफ में अपराध, बच्चों के खिलाफ में यौन शोषण और डिजिटल साइबर अपराध था, इसी सब लेकर हम लोग ध्यान रखते हुए आईपीसी के धारा की जगह पर बीएनएस लागू करने के लिए जो 2023 में किया गया, वो दृष्टिकोण सब देखते हुए जो अपराध ज़्यादा बढ़ रही हैं इसी के मामले में आया है।
1: तो हम ये जानना चाहेंगे रेशमा जी कि आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से बदलने की क्या ज़रूरत पड़ी।
2: इसलिए ज़रूरत पड़ी कि बहुत साइबर अपराध हो रहा था और कानून में जो महिलाओं को जो गरिमा और उसका सम्मान केंद्र को रखते हुए ये ज़रूरी था कि बच्चे लोग पे जो इतनी उत्पीड़न हो रहा है उसको सभी ध्यान में रखते हुए अपराध किए जा रहे हैं इस मामले में रखने के लिए अब 2023 में जो चेंज किया गया वो बहुत जरूरी था, क्योंकि आईपीसी में धारा में वो कमी थी
1: जी,
2: इसलिए बीएनएस को लाना पड़ा।
1: भारत में न्याय प्रणाली में सुधार के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 को क्रियान्वित किया गया। इस पहल को महिला सुरक्षा की दिशा में आप किस तरह से देखती हैं रेशमा जी, और क्या इसे महिला सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम मानती हैं, महत्वपूर्ण प्रयास मान सकते हैं हम लोग?
2: जरूर, इसमें महिलाओं

0: जो किया गया है बच्चों की सुरक्षा के प्रावधान के लिए, ये अपराध सभी अपराधों से में प्राथमिकता दी गई है और बीएनएस और महिलाओं और बच्चों के कानून में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईपीसी की धारा जो अभी आप देख रहे हैं बलात्कार और जिस जुड़े हुए कानून है और उसमें भी बदलाव लाना है, तो आईपीसी के जगह पर जो 375 376 थी जो धारा थी वे 64 में नए कानून बनाया गया और स्पष्ट रूप से ही सख्त कानून बनाया गया, क्योंकि नहीं अगर बनता तो बहुत दिक्कत होती सभी महिलाओं को और बच्चों को।
1: तो क्या महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं तो उनको देखते हुए आज की डेट में किस तरह के कानूनी प्रावधान की आवश्यकता महसूस की जा रही है या पहले की जाती रही है?
0: ये बच्चों के साथ जो यौन अपराध को कठोरता दंड में बढ़ोतरी हुआ है और सुधार लाया गया है बीएनएस के जगह पर, वहाँ पर है कि बच्चों के तस्करी संगठित अपराध देखा गया है और नाबालिग को अपराध में इस्तेमाल करने का और गंभीर अपराध को बच्चों के केवल पीड़ित ही नहीं बल्कि भविष्य में जिम्मेदारी मानकर कानून बनाया गया है।
1: क्या किडनैपिंग और तस्करी से जुड़े कानून में भी बदलाव आए हैं?
0: हाँ
1: जी,
0: इसमें आईपीसी की तुलना में बीएनएस की धारा 143 में मानव तस्करी को अपराध को परिभाषित किया गया है। वही अपहरण का धारा 137 में बताया गया कि जिसके दो मुख्य रूप हैं, पहला भारत में अपहरण
1: जी
0: और दूसरा है वैधानिक संरक्षकता के अपराध। वैधानिक संरक्षकता है कि किसी बच्चे को जो 18 वर्ष के कम आयु के हों उसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ किसी बच्चे को व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना उसके अभिभावक से दूर से ले जाना और व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना फुसलाकर ले जाना और महिलाओं और बच्चों की तस्करी में कठोर सजा दिलाया गया है बीएनएस में।
1: पीड़ित महिला और बच्चों के लिए न्याय प्रक्रिया में क्या सुधार हुआ है?
0: पीड़ित बच्चों और महिला का जो दिया गया बीएनएस में जो समयबद्ध न्याय, पीड़ित गोपनीयता, संवेदनशील जांच प्रक्रिया और महिला और बाल पीड़ितों के लिए विशेष प्रावधान है, इससे पीड़ित को दोबारा मानसिक आघात न पहुंचे, इसके लिए बीएनएस बनाया गया है।
1: तो रेशमा जी, क्या बीएनएस सिर्फ सजा देने वाला कानून ही है?
0: नहीं, बीएनएस केवल दंडनात्मक नहीं बल्कि सुधारनात्मक भी है और संरक्षणात्मक कानून भी है। इसका उद्देश्य है अपराध रोकना, पीड़ित को न्याय दिलाना,
1: जी, जी।
0: समाज में भरोसा कायम करना,
1: जी।
0: ये सब बीएनएस में आया है।
1: भारतीय न्याय संहिता में क्या शादी का झूठा वादा कर महिला का शोषण करना अपराध है?
0: जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति झूठे विवाह के वादे करके उनसे शोषण करना एक अपराध है।
1: कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को कैसे देखा जा सकता है, आप कैसे देखती हैं रेशमा जी?
0: भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 में जो महिला के साथ यौन उत्पीड़न केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि अश्लील शब्द और ऑनलाइन मैसेज, धमकी, ये सब के कारण ही आज महिलाओं को जो साथ हो रहा है यौन उत्पीड़न, उसको पर रोक लगने के लिए ये बिजनेस का धारा लाना बहुत जरूरी।
1: रेशमा जी, अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से बात कर रहे हैं तो ऐसे में भारतीय न्याय संहिता जैसे कानूनों के अस्तित्व और दंड की गंभीरता को लेकर महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के बारे में अगर हम देखें तो जागरूकता किस तरह से फैलाई जा सकती है?
0: हमारा कहना है कि बीएनएस को जो कानून के बारे में सभी महिला और बच्चों को जो बहुत कम जानकारी उनको मिल रही है, हमारा ये भी कहना है कि उन लोग को विद्यालय में और कॉलेज में एक कानून के बारे में उनको सारा जो नया कानून बना है 2023 में उनको जानकारी देना अति आवश्यक है, क्योंकि सभी बच्चे बच्चियां में महिलाएं में अगर नहीं जागरूकता होगी तो बहुत दिक्कतें की सामना करना पड़ेगा।
1: आपके हिसाब से महिला और बाल कानूनों में और क्या सुधार होना चाहिए?
0: बाल सुधार में हमारा ये कहना है कि जो बच्चे नाबालिग हैं उनको जैसे कि प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं
1: जी,
0: और कहीं भी उनके साथ अगर गलत हो रहे हैं, बाल बच्चे से अगर काम करवा रहे हैं मजदूर वाला लेवल का काम, उन पर कम से कम जो भी समाज के लोग हैं व्यक्तिगत उनको ले जाना चाहिए प्रशासन पुलिस के पास
1: जी।
0: उनको ये कहना चाहिए कि बच्चे के साथ इतना घटना हो रही है तो वो मजदूर का काम जो नहीं करवाएं जो नाबालिग हैं बच्चे, इस पर रोक लगाना चाहिए। हम लोग में भी समाज के सभी लोग को जागरूक होना चाहिए, आगे बढ़ के काम करना चाहिए।
1: लेकिन अभी भी रेशमा जी आप देखिए कि जो पढ़ी लिखी नहीं है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो पढ़ी लिखी है शिक्षित महिलाएं हैं वो भी कानून को बहुत अच्छी तरह से नहीं जान

0: जानती हैं, अपने अधिकारों को नहीं समझ पाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो दबा देती इस मामले को, शिकायत दर्ज नहीं करती। तो ऐसे बारे इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: हमारा ये कहना है कि जो महिला पढ़ी लिखी हैं वो थोड़ा समाज के और परिवार से दबे हुए हैं, समाज में इज्जत ना उछाल हो इसके लिए वो नहीं कुछ कहीं बोल पाती हैं। तो एक महिला के लिए आपका महिला आयोग है, आपका पुलिस महिला पुलिस थाना है, आप एक लोक अदालत की भी व्यवस्था की गई हैं, आप वहाँ भी जाके एक शिकायत केंद्र में आप वहाँ आवेदन दे सकती हैं और वहाँ पर अपना सब बात को रख सकती हैं, क्योंकि वहाँ महिला ही वहाँ मिलेगी।
0: तो अभी आप पुलिस की बात की, तो पुलिस और प्रशासन की भूमिका कितनी ज़रूरी है इसमें?
1: पुलिस प्रशासन को भी BNS के बारे में बहुत जानकारी कम है
0: जी,
1: क्योंकि नया जो 2023 में हुआ है और वो IPC की धारा वो मैंने कि उनको दिया गया, लेकिन BNS की भी जानकारी दिया गया, उन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है प्रशासन को, लेकिन फिर भी वहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर एक अधिवक्ता लीगल अधिवक्ता वहाँ पर जाकर प्रशासन को भी कम से कम ट्रेनिंग दें और समझाएं ताकि कानून के बारे में उनको अति जानकारी हो और पुलिस भी समाज और महिलाएं बच्चे को जहाँ तक हो मदद करें।
0: पुलिस के अलावा आम नागरिक इन अपराधों को रोकने में क्या भूमिका निभा सकते हैं?
1: इसमें है कि समय से पहले जो जागरूक हों
0: जी,
1: चुप ना रहें
0: बिल्कुल,
1: पुलिस को सूचना दें तुरंत
0: जी,
1: कानूनी मदद दिलाएं और वहाँ पीड़ित का जो जितना तक हो सके सभी को साथ दें।
0: क्या मौजूदा कानून पीड़ितों की मानसिक और सामाजिक मदद भी कर पाते हैं?
1: मदद कर पाते हैं
0: जी, किस तरह से, जरा विस्तार से हमारी बहनों को बताएं।
1: यहाँ पर है कि जैसे कोई भी पीड़ित महिला है उनको सभी माने समाज के लोग परिवार के लोग आगे बढ़कर चढ़कर उनको ले जाएं जहाँ पर उनको प्रशासन के बारे ले जाएं, या तो कानून अगर उनको सलाह दें उनको अच्छे जगह वहाँ ले जाएं जहाँ उनको मदद मिले कानून का और अपनी बात को रख सके।
0: जी, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन शोषण की। तो ऑनलाइन शोषण और साइबर बुलिंग जैसे अपराधों से निपटने में यह कानून कितना मददगार है?
1: इसमें जो आप बता रहे हैं कि साइबर का जो हो रहा है अपराध बहुत बड़ा
0: जी,
1: इसमें कामकाजी महिलाओं को भी साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है
0: जी,
1: बच्चे हैं उनके साथ भी हो रहा है, जो बच्चे नाबालिग हैं उनके साथ भी मानसिक आघात पहुंच रहा है। तो वहाँ पर है BNS का इस्तेमाल करें और वहाँ सभी नाबालिग जो अपराध कर रहे हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, गंभीर अपराध कर रहे हैं, वहाँ पर रोक लगाने के लिए कानून के लिए जानकारी दें सभी जगह।
0: ये कानून की जानकारी
1: हर एक माता पिता को जानकारी दें,
0: होना चाहिए,
1: अपने बच्चे को भी दें और समाज में भी रखें
0: जी। यौन उत्पीड़न या मेरिटल रेप की अगर हम बात करें तो उसे आप किस तरह से परिभाषित कर सकती हैं और भारतीय न्याय संहिता में इसकी क्या सजा का प्रावधान है?
1: पत्नी जो अलग रह रही हैं उनके साथ जो बिना सहमति के शारीरिक संबंध होते हैं वे सेपरेट वाइफ कहा जाता है, उनमें भी ये धारा 67 में प्रावधान है जी। और वह भी जो आपका नीति अपनाया गया है जो महिलाओं के खिलाफ मानसिक और डिजिटल अपराध के बिना BNS को में भी लाया गया है
0: जी। और बच्चों से संबंधित अपराधों में भारतीय न्याय संहिता की क्या नई सोच है इसके बारे में भी हमें थोड़ा विस्तार से बताएं
1: जी। BNS में बच्चों के जो विरुद्ध अपराध है जो धारा 93 है 99 है जो विशिष्ट रूप से बताया गया है कि साथ ही साथ बच्चों को भी लेकर कानून और अपने अधिक संवेदनशील बनाया गया है,
0: कानून को और अधिक संवेदनशील
1: बनाया गया है
0: जी।
1: जो मुख्य बदलाव है
0: जी क्या है?
1: बच्चों के साथ यौन अपराध जो कठोरतम दंड है
0: जी बिल्कुल,
1: और दूसरा है बच्चों की तस्करी के संगठित अपराध के रूप में देखा गया है
0: जी,
1: और तीसरा है नाबालिगों के अपराध में इस्तेमाल करना और गंभीर अपराध है
0: जी,
1: जो बच्चों को केवल पीड़ित ही नहीं बल्कि भविष्य की भी जिम्मेदारी मानकर कानून बनाया गया है
0: जी। बहुत अच्छी बात है। रेशमा जी, क्या गैंग रेप के मामलों में भी कोई नया बदलाव आया है, कोई नया प्रावधान है?
1: जी हाँ, BNS की धारा 70 में सामूहिक बलात्कार के मामलों में और कठोर दंड का प्रावधान है, साथ ही साथ नाबालिग पीड़ितों के लिए भी आयु का भेद के समाप्त कर दिया गया है, और विशेष रूप से है कि अब 18 वर्ष की कम आयु की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप में आजीवन कारावास

0: या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है, या बदलाव महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के प्रति कानून की शून्य सहिष्णुता नीति को दर्शाता है।
1: रेशमा जी, भारतीय न्याय संहिता 2023 की कानूनी प्रावधान में उचित समय पर अपराध से बचे लोगों को उबरने और उनके जीवन को उन्नति में लाने में किस तरह से मदद कर सकते हैं?
0: सभी महिलाओं और बच्चों को हम लोग जहाँ तक हो सके BNS के कानून के बारे में जानकारी दें, पुलिस के पास पहुँचाएँ, जितना हो सके उनको मदद करें, कानूनी मदद दिलाएं, इस तरह हम लोग सब मदद करेंगे समाज के तौर पर।
1: रेशमा जी, बच्चों से संबंधित अपराधों में भारतीय न्याय संहिता BNS की क्या नई सोच है?
0: जी, यहाँ BNS में बच्चों अपराध को लेकर धारा 93 से लेकर 99 तक में विशिष्ट रूप से बदलाव बनाया गया है। साथ ही साथ बच्चों को लेकर कानून और अधिक संवेदनशील बनाया गया है। जो मुख्य बदलाव है
1: जी,
0: बच्चों के साथ यौन अपराध पर कठोरतर दंड, बच्चों की तस्करी को संगठित अपराध के रूप में देखा गया है, जो नाबालिग को अपराध में इस्तेमाल करना अब गंभीर अपराध है
1: जी,
0: और बच्चों को केवल पीड़ित ही नहीं बल्कि भविष्य की जिम्मेदारी मानकर कानून बनाया गया है।
1: अंत में आप बहनों को, श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? रेशमा जी, आप
0: श्रोताओं बहनों को संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सिर्फ कानूनी नहीं
1: जी
0: बल्कि सभी समाज के लोग जिम्मेदार हों और होना चाहिए। कानून हमारे साथ हैं, बस हमें उनका सही इस्तेमाल जीवन में करना चाहिए।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है, आपने सभी बातों की अच्छी जानकारी दी। निसंदेह हमारी बहनें इनसे लाभ लेंगी। रेशमा जी, यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम।
2: अभी बहनें सुन रही थी पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, विषय था भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के लिए बने कानून में संशोधन और बदलाव। भेंट वार्ताकार थी रेशमा कुमारी और भेंट करता थे श्रीना गुप्ता। और अब इसके साथ ही बहनों, अब वक्त हो चला है आप सबों से विदा लेने का, तो दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

नारीलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने

0: आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
1: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
0: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुडी और प्रमोद कुमार डुडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी, हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है
1: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है
1: जी।
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
1: जी,
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान के दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो,
7: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया,
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
7: चलो चलो चलो
8: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
4: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
6: लुई पाश्चर
2: सर,
6: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
2: कहिए सर।
6: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
2: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
6: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
3: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
3: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
3: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
3: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
3: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
8: अरे आजा आजा आजा।
9: हाँ,
8: इंजेक्शन लगा दूं?
9: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी। हाँ,
3: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
10: सर, सर ये टेलीग्राम।
9: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
10: क्या हुआ सर?
9: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
10: कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
9: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
10: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
9: हाँ चार्ल्स।
3: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
11: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
9: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
11: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
9: आप,
11: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
9: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
11: मेरा अच्छा, बेटा।
9: अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
3: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
0: इस तरह

0: और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज कलाकार हैं तेज नारायण चौधरी और साथी। इनके स्वर में आरंभ में सुनिए गणेश वंदना।

0: AIR at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: तेज नारायण चौधरी और साथियों के स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक देवी गीत।

श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम हम पुनः लेकर आएंगे 1:20 पर। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं से किया संवाद, कहा भारत सरकार आदिवासी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत। झारखंड जल मिशन 2.0 को लेकर दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू आज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से वर्चुअल माध्यम से होंगे शामिल। मुख्यमंत्री आज स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की करेंगे समीक्षा, विभागीय कार्य प्रणाली, योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं लंबित मामलों का लेंगे लेखा जोखा। सीबीएसई 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय, बोर्ड ने जानकारी के लिए जारी किया वीडियो। और पर्यावरण सप्ताह के तहत झारखंड वन विभाग की ओर से कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन, स्वच्छता अभियान, मानव श्रृंखला, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और कार्यशालाएं शामिल। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों से बातचीत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार आदिवासी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं का के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये देश के विकास के लिए सभी समाज का आवश्यकता है। देश का सामग्रिक विकास तब कहला जाएगा जब सभी स्तर के बच्चे, सभी स्तर के समाज के लोग विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे सोशियली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, कल्चरली। लेकिन हम जो बड़े बन जाते हैं, शहर में रह जाते हैं, अपना संस्कृति, अपना परंपरा, अपना अतीत को भूल जाते हैं। अतीत कभी भूलना नहीं।
0: झारखंड में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच झारखंड जल मिशन 2.0 को लेकर एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में विभाग के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल एमओयू में शामिल होगा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने आकाशवाणी को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस एमओयू कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने विभाग की बकाया राशि भुगतान की भी उम्मीद जताई।
2: केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में आज 2 से 3 बजे तक के बीच मीटिंग है। झारखंड केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और झारखंड सरकार के साथ एमओयू होना है, जिसमें झारखंड जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर के उसमें एमयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और बेहतर रूप से नल जल योजना को धरातल पर कैसे चालू किया जाएगा, जो बकाया राशि है आगे मिलने की संभावना है एमयू के पश्चात। अभी अगर आप देखेंगे 6,207 करोड़ रुपया अभी बकाया है। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन जुड़ेंगे।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा करेंगे। इस दौरान विभागीय कार्य प्रणाली, योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। राजमहल विधायक एमटी राजा ने राजमहल और उधवा प्रखंड में 2.34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 11 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें डीप बोरिंग, जल मीनार, तालाब में सीढ़ी घाट, सार्वजनिक भवन और पोखर का सौंदर्यीकरण शामिल है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और सामुदायिक भवनों जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि पिछले 3 दशकों से उपेक्षित इलाकों का भी विकास हो सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विशेष गहन पुनरीक्षण और जनगणना के मद्देनजर बूथ से पंचायत तक संगठन मजबूत करने का अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 15 जून तक हर बूथ पर BLA 2 और 10 सदस्यीय बूथ कमेटी बनाई जाएगी। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में 4 जून तक चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में संगठनात्मक बैठकें होंगी। वहीं रांची जिले में 8 प्रखंडों के लिए केंद्रीय व जिला संयोजक मंडल सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। यह पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 74,085 पर, जबकि निफ्टी अंक लुढ़क कर 23,302 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। जमशेदपुर पुलिस ने उलीडी थाना क्षेत्र में हुए विकास सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SSP पीयूष पांडे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं।
3: उलीडी थाना अंतर्गत एक डेड बॉडी हम लोग को मिली थी, जिसकी शिनाख्त करने पर विकास सिंह 25 वर्ष जो उलीडी के रहने वाले थे उसके रूप में इनकी पहचान हुई थी। तो इसमें बॉडी के ऊपर काफी धारदार हथियार से अटैक करने वाले निशान थे और इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए SIT बनाएगी। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के दौरान अपनी संलिप्तता स्वीकारी है।
0: झारखंड वन विभाग 1 से 5 जून तक पर्यावरण सप्ताह मना रहा है, जिसमें स्वच्छता अभियान, मानव श्रृंखला, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और कार्यशालाएं शामिल हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है।
4: एक सप्ताह का कार्यक्रम स्टार्ट किया है, लोगों ने बायोडायवर्सिटी पार्क में वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया प्लास्टिक रिमूवल के लिए। वहाँ से कल हम लोग हॉर हाफ में करने जा रहे हैं।

0: वहाँ पे पक्षियों के भी हम लोग वॉचिंग करेंगे, देखेंगे कौन कौन से पक्षी वहाँ पे हैं और वो कैसे हम लोगों के बायोडाइवर्सिटी के लिए यूजफुल है, लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा।
1: गिरिडीह में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के शासी निकाय की बैठक हुई। इसमें राज्यसभा सांसद, जमुआ विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, गिरिडीह महापौर, पर्यटन मंत्री के प्रतिनिधि और कई विधायकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में जिले के अधिसूचित पर्यटन स्थलों की स्थिति और पर्यटन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। विधायक मंजू कुमारी ने बताया कि बी श्रेणी के पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए कंसल्टेंट के जरिए डीपीआर तैयार कराया जाएगा। जो पर्यटन स्थल अब तक अधिसूचित नहीं हुए हैं उनके लिए भी दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा।
2: पर्यटन विभाग विधानसभा में झारखंड था, मंदिर में तत्काल बोला गया शौचालय 2 यूनिट का, उसके बाद पानी का व्यवस्था, उसके बाद उसको बैठने के लिए आरसीसी बनाया जाएगा। दूसरी बात, हमारे जो जलीय शिव मंदिर है हमारे मिर्जागंज में, नाली का पानी है किस तरह से उसको मतलब की निकाला जाए उसके लिए भी डीसी साहब ने शासन दिए है।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधा को ध्यान में रखते हुए टाटानगर बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस में स्थायी रूप से एक अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। रेलवे के इस फैसले से ट्रेन में यात्रियों के लिए बैठने की क्षमता बढ़ेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं से किया संवाद, कहा भारत सरकार आदिवासी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत। झारखंड जल मिशन 2.0 को लेकर दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू आज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से वर्चुअल माध्यम से होंगे शामिल। मुख्यमंत्री आज स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की करेंगे समीक्षा, विभागीय कार्यप्रणाली, योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं लंबित मामलों का लेंगे लेखा जोखा। सीबीएसई 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय, बोर्ड ने जानकारी के लिए जारी किया वीडियो। और पर्यावरण सप्ताह के तहत झारखंड वन विभाग की ओर से कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन, स्वच्छता अभियान, मानव श्रृंखला, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और कार्यशालाएं शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, एक बार फिर स्वागत है लोकरंग कार्यक्रम में। आज कलाकार हैं तेज नारायण चौधरी एवं साथी। इनके स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक विरह गीत।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
5: तेज नारायण चौधरी और साथियों के स्वर में अब सुनते हैं पूर्वी।
6: आरे

तेज नारायण चौधरी और साथियों के गाए इस पूर्वी के साथ ही लोक रंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्व प्रसारित रेडियो धारावाहिक गंगा के सुरताल। लेखक रमेश रमण, निर्देशक हैं दासमती चाटर और अशोक शरण। आइए सुनते हैं इसकी पहली कड़ी।

0: आदिकाल से ही गंगा भारत की आस्था, श्रद्धा, पूजा, ईश्वरीय कृपा और दिव्य मंगलमयी कामना की नदी रही है। भारत की गौरवमयी संस्कृति की प्रतीक है गंगा। गंगा के बिना भारतीय संस्कृति की अवधारणा ही अधूरी है।
1: प्राचीन काल में गंगा का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं था, बल्कि उसका भौगोलिक और राजनीतिक महत्व भी था। गंगा ने प्राचीन काल से अब तक अपनी गोद में कई बड़े शहरों को बसाया है। भारतवर्ष के सभी धर्म, जाति तथा संप्रदाय के लोगों ने गंगा के प्रति आस्था प्रकट की है।
0: नजीर बनारसी ने अपनी शायरी में कहा है, वो छूत हो या अछूत, सबका उठा के चलती है भार गंगा। यहां नहीं ऊंच नीच कोई, उतारे है सबको पार गंगा।
1: पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा की उत्पत्ति स्वर्ग से हुई है। गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का श्रेय भगीरथ को जाता है। दरअसल भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की और गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया।
0: गंगा वेगवान गति से स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, जिसका भार पृथ्वी उठा न सकी, और अंततः भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटा में समेट लिया, और फिर शंकर की जटा से गंगा का पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ।
1: अब यदि हम इस प्राचीन गीत को सुने तो इसमें कुछ ऐसा ही कहा गया है।

0: इस गीत का यदि संक्षेप में वर्णन करें तो अर्थ निकलता है, गंगा मैया के लिए भगीरथ बेहाल हैं। कोई घर के आगे का भाग लीप रहा है तो कोई पीछे का भाग, पर भगीरथ तो शिव का द्वार लीप रहे हैं। कोई फूल तोड़ रहा है तो कोई बेलपत्र तोड़ रहा है, कोई अन्न धन मांग रहा है तो कोई कामधेनु मांग रहा है, पर भगीरथ गंगा जी की धारा मांग रहे हैं। आगे आगे भगीरथ भागे जा रहे हैं और पीछे पीछे सुरसरी गंगा फैलती जा रही हैं।
1: पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा की उत्पत्ति और उससे संबंधित चाहे जो कुछ भी कहा गया हो, पर आज गंगा की उत्पत्ति का स्थान गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर, समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर, हिमालय की बर्फीली चोटियों में एक अंधेरी गुफा से हुई है। उस स्थान की आकृति गाय के मुख के समान है, इसलिए इस स्थान को गौमुख के नाम से जाना जाता है।
0: ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटती हुई, गंगोत्री से ऋषिकेश तक की कूदती हुई गंगा गंगोत्री से ऋषिकेश तक की यात्रा पूरी करती हैं। गंगा की तेज धारा को देखकर एक गीतकार ने कहा है,

0: गंगा तुम धीरे बहु, मेरे प्रियतम को पार उतरने दो। किस वस्तु की है तेरी नैया और किस वस्तु की है पतवार? कौन है इस नैया का खेवैया? धर्म की है मेरी नैया और सत की है पतवार। नैया का खेवैया है मेरा स्वामी, मेरे प्रियतम को पार उतरने दो।
1: गंगा की प्रचंड धारा को देखकर एक स्त्री गंगा से यही प्रार्थना करती है। दरअसल गंगा समय और स्थान के हिसाब से अलग अलग रूपों में देखी जाती हैं।
0: एक ओर जहां गंगोत्री से ऋषिकेश तक गंगा की तेज धारा को देखकर लोग उसमें उतरने से डरते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार की हरि की पौड़ी में डुबकी लगाने से चूकते भी नहीं। कहा जाता है कि हरि की पौड़ी में स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
1: गंगा स्नान को लेकर मैथिली झूमर में गाया गया है।

0: इस गीत में युवती से आग्रह किया जा रहा है, गोरी चलो गंगा स्नान को, रास्ते के लिए रख लो ठेकुआ और पकवान, साथ में रख लो सत्तू। बड़े भाई ने चादर तानी है, चादर की खुट पकड़कर मैं स्नान को गई। सखी सजाती है टिकुली और सिंदूर, दिल सिंह सराय पहुंचकर सत्तू खाऊंगी। गंगा मैया ने दिया है एक बालक, गंगा को चढ़ाऊंगी फूलों की माला।
1: गंगा स्नान की अपनी विशेष महत्ता है। धार्मिक दृष्टिकोण से न देखकर यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गंगा जल को देखा जाए तो गंगा जल को शुद्ध, पवित्र तथा कीटाणु रहित जल माना गया है।
0: ये लोक मान्यता है कि यदि बांझ औरत पर गंगा मैया प्रसन्न हो जाए तो उसकी सूनी गोद झट से भर देती हैं।
1: तभी तो ये नारी गंगा के किनारे जाकर गीत गाती है और अपने दुखड़े गंगा मैया को सुनाती है।
0: गंगा जमुना के बीच एक नारी तप रही है। हे गंगा, अपनी लहर मुझे देती तो मैं मझधार में डूब जाती। माँ गंगा उस नारी से प्रश्न पूछती है, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम क्यों मेरी लहरों में डूबना चाहती हो? तुम्हें सास ससुर से दुख है, या फिर तुम्हारा नैहर दूर है, या तुम्हारा पति परदेश में है? ना मुझे सास ससुर से दुख है और ना ही मेरा पति परदेश में है। मैं तो अपनी कोख के दुख से डूबना चाहती हूं। तुम अपने घर जाओ, आज से 9वें महीने में तुम्हें पुत्र होगा। हे गंगा, मैं तुम्हें चटक रंग की पीली साड़ी चढ़ाऊंगी। हे मैया, मुझे भगीरथ जैसा पुत्र दो जिसका पूरे संसार में यश हो।

0: या पति से बिछुड़ने का वियोग या फिर विवाह की खुशी हो, गंगा के किनारे रहने वाले लोगों के जीवन में गंगा रची बसी है।
1: अब एक गीत दो बहनों के द्वारा सुनते हैं। इस गीत में राधा व रुक्मिणी दो बहनें अपने भाई के परदेश से सकुशल लौट आने के लिए गंगा मैया से प्रार्थना करती हैं।
0: हे गंगा मैया, हमारा भाई परदेश से अपनी नाव में सामान लेकर इस पार आ रहा है, आप हमारे भाई को इस पार उतरने दें, यही विनती करते हैं।
1: यदि गंगा मैया प्रसन्न होकर किसी को वरदान देती हैं, तो लोग गंगा मैया को पीले रंग की साड़ी चढ़ाना नहीं भूलते। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा मैया को पीले रंग की साड़ी बहुत पसंद है।
0: मुझे तो एक पुराना फिल्मी गीत याद आ रहा है, उसमें भी तो कहा गया है, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई बो, सैया से कर दे मिलनवा।
1: गंगा की महत्ता भारतीय संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ व निर्विवाद है। गंगा सदैव से ही भारतीय संस्कृति को जोड़ती रही है। आज जब भारत पर सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में हमारी लोक परंपरा बड़ी तेजी से विस्मृत हो रही है। गीत संगीत और जनजीवन के संबंधों को जोड़ने में सहायक ये गीत अगर लुप्त हो गए तो हम बिखर जाएंगे। आज आवश्यकता है ऐसी लोक विश्रुत परंपरा को बचाने की, गाने की और गुनगुनाने की।

0: मोमेंटस प्रोडक्शन और उनके तकनीकी साथियों के साथ दूसरी कड़ी में गंगा की महत्ता और उसके इतिहास के साथ फिर प्रस्तुत होंगे।
1: हर हर गंगे।
2: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित रेडियो धारावाहिक गंगा के सुरताल की पहली कड़ी। लेखक रमेश रमण, निर्देशक थे दासमती चार्टर और अशोक शरण। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2 बजने
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज शेखपुरा जिले के परबिघा में 53 करोड़ रुपए लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही वे सामस पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों की सुविधा के लिए सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर शिक्षा के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पहले श्री चौधरी ने जिले के सामस स्थित विष्णु धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। इधर मुख्यमंत्री आज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड की परसोनीनाथ पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भी शामिल हुए। उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को सुना और तत्काल समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 288 करोड़ रुपए लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। राज्य की पंचायतों में भी सहयोग शिविर आयोजित किए गए हैं। गया जिला परिषद को ग्रामीण विकास और जनहित से जुड़े उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी को सम्मानित किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे

कर्म स्थान रहा। इधर विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने और वज्रपात

शिक्षण दिया जाएगा। कला और संस्कृति विभाग की ओर से पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में 5 जून से 10 दिवसीय कृष्णकालीन कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में 8 से 16 आयु वर्ग के बच्चों को नृत्य गायन और वादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को कला और संस्कृति से जोड़कर उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र के लैलख रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत साहूकट भातु टोला में पुलिस ने छापेमारी कर 258 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। इस हादसे में दो अन्य छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है, अब आप शर्फुलहुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी ने आज शेखपुरा ज़िले के बरबीघा में 53 करोड़ रुपए की लागत वाली मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। साथ ही वो सामस पंचायत में मुनक़िद सहयोग शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों के फौरी मसाइल के हल के लिए पाबंद अहद है, लोगों की सहूलत के वास्ते इस कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि बेहतर तालीम के लिए सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल की शक्ल में फ़रोग दिया जाएगा। इससे कबल जनाब चौधरी ने ज़िले के सामस वाक़े विष्णु धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। इधर वज़ीर आला आज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक के परसौनी नाथ पंचायत में मुनक़िद सहयोग कैंप में भी शरीक हुए। उन्होंने आवाम के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए अफसरान को हिदायतें कीं। उन्होंने इस दौरान 288 करोड़ रुपये की लागत वाले मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद भी रखा। आम लोगों के मसाइल के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर रियासत की बल्दियातों में आज सहयोग कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें लोगों से मौसूला दरख्वास्तों की बुनियाद पर उनके मसाइल का तदारुक 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। रियासत की पंचायतों में भी सहयोग कैंप मुनक़िद किए गए हैं। गया ज़िला परिषद को देही तरक्यात और आवामी मफाद से जुड़े शानदार काम के लिए कौमी पंचायत अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। कल नई दिल्ली के भारत मंडपम रियासती अवार्ड तकरीब में ज़िला परिषद की चेयरपर्सन नैना कुमारी को अवार्ड से नवाजा जाएगा। राजधानी पटना समेत रियासत के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क बना हुआ है। महकमा मौसमियात ने कयास आरई की है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में रियासत के ज़्यादातर हिस्सों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री के इजाफे का इम्कान है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत के साथ भभुआ रियासत का सबसे गर्म जगह रहा। इधर महकमा ने अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के जनूब मगरबी खित्तों में कुछ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने और बर्फबारी की वार्निंग जारी की है। बिहार म्यूज़ियम पटना में आज से समर कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। ये कैंप 7 जून तक चलेगा। कैंप का इफ्तिताह डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार सिंह ने किया। श्री सिंह ने आकाशवाणी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि कैंप में तजुर्बाकार तरबियतकारों के जरिए बच्चों को टेराकोटा फ़न, दूसरे फ़नून और कहानी नवेसी के फ़न की तरबियत दी जाएगी। फ़न और सकाफत महकमा की जानिब से पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में 5 जून से 10 रोज़ा समर वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा। इस वर्कशॉप में 8 से 16 की उम्र के बच्चों को रक्स, गीत और तबला की तरबियत दी जाएगी। इसका मकसद बच्चों को फ़न और सकाफत से जोड़कर उनकी तख्लीकी सलाहियत को फ़रोग देना है। भागलपुर ज़िले के सबौर थाना हलका के लैलक रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक स्मगलर को गिरफ्तार किया।

0: किया है। मधेपुरा जिले के सदर थाना हल्का के तहत साहूगढ़ भातू टोला में पुलिस ने छापेमारी करके 258 ममनुआ कफ सिरप के साथ दो स्मगलर को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के बरहट थाना इलाका से पुलिस ने एक नौजवान को असलाह के साथ गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना हल्का में एक तेज़ रफ्तार ट्रक की जद में आने से एक तालिबा की मौत हो गई। इस हादसे में दो दीगर तालिबात शदीद जख्मी हो गई। दरभंगा के जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने बहेरी सर्किल के महसूलात मुलाजिम वीरेंद्र यादव को फराइज की लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
3: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
3: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
3: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
2: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुनिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
2: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आपने सुना फिल्म थी दिले नादा। गीतकार नक्शलालपुरी, संगीतकार थे खयाम। और अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है स्वीकार किया मैंने। गीत निदा फाजली का, संगीतकार हैं उषा खन्ना।

0: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: संदेशों के बाद एक बार फिर जुड़ते हैं चित्रपट से कार्यक्रम में।

धनवान फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के युगल स्वर में। गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

थोड़ी सी बेवफाई। आइए सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। गुलजार का गीत, धुन बनाई है खयाम ने।

आशा भोंसले और मोहम्मद अजीज को आपने सुना फिल्म मुद्दत में। गीतकार इंदिवर, संगीतकार थे बप्पी लाहिड़े। और इसके साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।

0: AIR at 90. पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: तरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं नुसरत फतेह अली खान को।

तरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नुसरत फतेह अली खान और साथियों को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 3:20 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

0: संवेद स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। इसे आप सुन पाएंगे संध्या 5 तक और फिर 5 से पुनः आनंद लें आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रमों का।
1: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही हैं और हिमानी जी आई हैं तो गाने तो हम आपको रोज सुनवाते ही रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहां की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था, मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देखकर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती, ये अजीब पागलपन है तुमको रेडियो सुनने का, पर आज 20 हो गए, मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आई है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवंत अभिनय करती हैं और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहें। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें एनएसडी की साझा की, अपने बचपन की साझा की। हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गाँव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गाँव है,
2: भटवाड़ी, हाँ,
1: वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गांव को आपने गोद ले लिया है, एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी है?
2: नहीं, मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी जिसने
1: अपने गांव से निकली,
2: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी
1: जी।
2: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ
1: जी।
2: तो ये मैं क्या, जब एनएसडी में पढ़ती भी थी, स्टूडेंट थी, तभी भी जब छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी, और मैं जो वहाँ के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे, काफ़ी सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी, और आके नाटक भी करती थी देहरादून, सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी। मैं हमेशा कुछ काम करती रहती हूँ, मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपनी क्षेत्र के लिए कुछ करूं। अभी फिलहाल जब मैं आई 3-4 पहले, एक कॉन्क्लेव हुआ था जो प्रवासी उनको कहते हैं, जो बाहर रहते हैं उत्तराखंड से, तो उनसे कि आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे उत्तराखंड जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं,
1: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर,
2: क्या करें, और उनको लोगों का ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है, और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन
1: जीवन
2: है। अभी भी मैं 3 देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी। अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे, और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई, जो मैंने गोद लिया, तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं, महिलाएं हैं।

0: 30-35 बूढ़ी महिलाएं और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा
1: जी
0: कमाने के लिए. और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की, तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में. तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं. तो मुझे बड़ा बुरा लगा. और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी, खेत खाली पड़े हुए, कोई है नहीं खेती करने के लिए. और वो है, तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गांव के लिए. तो मैंने इसलिए गांव अडॉप्ट किया. ये एक सपना है, बहुत जाइगेंटिक टास्क है.
1: बहुत ही ये बड़ा
0: हाँ
1: सपना देखा है हिमानी जी.
0: हाँ
1: यहां पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे.

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने गोद हाँ। लिया है ये बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी घटना है तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ तो मैं फिर काफी साल के बाद जब गांव में गई इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है तो मैंने उनसे पूछा भाई खेत क्यों खाली है क्या प्रॉब्लम्स है तो एक महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी दीदी बुआ जी ऐसे ही बोलते हैं गांव में कि मतलब मेरे को बुखार हुआ तो मुझे सीधा देहरादून 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून पहाड़ी रास्ता है कभी सड़क सही रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे कोई बीमार पड़ रहा है तो चारपाई में लेकर जा रहे हैं बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है वेब सीरीज उसमें कि चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में तो मुझे बड़ा
0: दुख हुआ होगा फिर आपको
1: और जान मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से मतलब आम लग रहा है बताओ पहाड़ों में आम लगते ही नहीं थे कभी पहाड़ में आम लग रहे हैं माल्टे गायब हो गए और श्रोते ज्यादातर हमारे गांव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं तो और बंदर का है भालू का ये सब का मिनेस है वो सब ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं दीदी जी बुआ जी कुछ भी उगाते हैं सब
0: खा जाते हैं
1: भालू आते हैं बंदर आते हैं उखाड़ के लंगूर आते हैं चूहे होते हैं तो क्या हो करे तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहाँ पे कृषि जो करते हैं तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप जैसे हल्दी हो गई अदरक हो गई तो मैंने ये मुहैया गांव के लोगों को दिलवाए हल्दी और अदरक वो उन्होंने उगाया अच्छी फसल हुई और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से तो ताकि बड़े खुश हुए मतलब उनको लगा कि आसपास के गांव के लोग भी आ गए कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहा है कोई शुगर टेस्ट करा रहा है तो धीरे धीरे और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है और मैं
0: सच में
1: अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें ताकि पहाड़ के जो गांव हैं जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए वहाँ पे आजीविका के साधन हो और एक मेरा मैंने बात की है सरकार से वहाँ पे एक स्कूल है सरकारी स्कूल जिसमें मेरे पापा भी कभी पढ़ते थे उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहां नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वहां वो साधन ही नहीं है क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है वो संस्कृत महाविद्यालय है तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूं जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है पहाड़ों में कुछ औरतें काम कर रही है तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने उनको नीचे ना उतरना पड़े पलायन ना करना पड़े वो घर बैठ के कमा सके तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है और
0: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें ताकि इतनी सारी लड़कियां खास तौर से जुड़ पाएं और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज्यादा कठिन है
1: हमने तो ये भी कठिन है सारा काम लड़कियां और औरतें ही करती हैं घास काटने से लेके जानवर चुगाने से लेके सब
0: कुछ हमने तो ये भी सुना है कि वहां पर पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में और जानवर जो आते हैं भालू बंदर जिसका जिक्र भी किया शेर तक आते हैं तो अकेले फाइट करती हैं लड़ाई करती हैं उनको अपने बचाव के लिए तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं
1: बिल्कुल
0: सलाम
1: बिल्कुल।
0: तो हम आपको भी कर रहे हैं कि
1: पहाड़ियों पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं
0: जी जी
1: और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं उनमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे भगुना जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया शराबबंदी आंदोलन महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं चिपकी थी।
0: क्या बात है सचमुच। तो हम इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे अभी इस प्रोग्राम के बाद, 4 बजे जब हमारा प्रोग्राम सजीव प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में, और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हिमानीशुपुरी रखेंगे। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी,
1: ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है और धन्यवाद। और पेड़ लगाना ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो एनवायरनमेंट, इसके इसमें सुधार होने का, क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए, जरूर हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है निजी स्तर पर कि हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
0: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं आम जामुन के, बस वही हम खा रहे हैं।
1: हम खा रहे हैं, वो भी कट चुके हैं।
0: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, खामोशी द म्यूजिकल, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी, तो यहाँ पर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
1: जी जरूर।
0: बस इस पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए, वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देख ही रहे उन्हें।

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम और हिमानी जी की अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको?
1: जी जी
0: बिल्कुल। और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती और राधा जी, सुलक्षणा हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारे श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए ये तो बहुत ही कठिन सवाल है क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी है तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे, फिर आजकल तो एक भी होता है मुश्किल से दो। तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं, क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे, क्योंकि हमारे क्रिएशन होता है, लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसलिए कुछ खास, कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना तो एनएसडी रेपर्टरी वो गवर्नमेंट जॉब था ना, तो वो नॉर्मल टाइमिंग वो ही होता था 9 to 5, और जब शोज होते थे हमारे प्लेस तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस, अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते थिएटर, पैसा नहीं होता तो जमुना पार रहते थे मयूर विहार में। आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़ी पॉश कॉलोनी बन गई है, तो उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी और शाम को जैसे होता था ऑफिस वाले लोग जाते थे तो जैसे बैठे रहते हैं, अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे एक महिला आ रही है तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है लेकिन वैसे क्या करते हैं, देखो इमेजिनेंट की आदमी की औरत रोज सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमराही किया देवकी भौजाई का तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि हम कैरेक्टर आर्टिस्ट ना, हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे, आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग, आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पे, पर उन्हें आज भी देवकी भौजाई याद है। और वो मैं एनएसडी से फ्रेश निकली थी तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी, कैसे मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था, मुझे तो नहीं पता था पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी ऐसी, अगर कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे
0: कुछ कुछ होता है और
1: कुछ होता है कि रिफत भी और दिलवाले दुल्हनिया की भी, रज्जो बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर वन की बुआ, और परदेश की बुआ, और बंधन, बहुत सारे किरदार,
0: उमराव जान में भी आपने काम किया,
1: उमराव जान में भी काम किया, और ये मेरा जो धारावाहिक आपने सब बोला वो सुलक्षणा उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था उस टाइम का सुलक्षणा, और ससुराल सिमर का की जो था, और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल हप्पू की उल्टन पलटन,
0: जी जी जी वो बहुत
1: किरदार कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है, पसंद किया है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल कर रही हैं, और एक तरह के रोल होते थे, लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया, तो बंधन में जो मेरी माँ है और मुझे कुछ कहना है, या मैं प्रेम की दीवानी हूँ या बीवी नंबर वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है। ऐसी बुआ का आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, तो बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपने DDLJ की बुआ। तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है मैंने, नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है
0: जी। और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
1: सूरज का सातवां घोड़ा
0: मम्मो कला फिल्म है, इसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है, और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहाँ एक तरफ कला फिल्म, एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप, कैसे अपने आप को ढाल लेती हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं? ये बताइए, राज की बात है ये तो।
1: कोई राज की बात नहीं, ये क्या कहते हैं, हम किरदार करते हैं तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं। और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है। और हम ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है, शेक्सपियर ने भी कहा है कि ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज,
0: जी रंगमंच है,
1: रंगमंच है जिंदगी। तो आप देखिए, सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये तो जिंदगी सिखाती है
0: जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुने या फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयां दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं? हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है,
1: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज्यादा बड़ी है, वो सब ज्यादा बड़ी चीज है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक गाना सुनवाते हैं जिसे, जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना
1: जी,
0: एक अंश सुनते हैं।

0: गाइड फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भाई एनएसडी किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आएँ?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूँगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है ये इतनी ग्लैमरस नहीं जितनी लगती है। ग्लैमर है ज़रूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत। और टाइमिंग्स, घंटे बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पे पहुंच के, दीपिका पादुकोण है, 8 घंटे या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं, उनको उनको काम कम मिल रहा है, या मतलब जो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे लंबे आर्स होते हैं, और खासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आर्स होते हैं, संघर्ष बहुत होता है। तो अगर आप में संघर्ष करने का मादा है,
0: लियाकत है,
1: हाँ,
0: और
1: सिंसेरिटी है, सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत आइए, क्योंकि ये आसान प्रोफेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप में अदम्य प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, अभिनय कर सकती हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं, तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो ज़रूर आइए।
0: जी,
1: लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा, या शाहरुख खान के खान होना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल,
1: आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं।
0: बिल्कुल, और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
1: शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
0: बहुत संघर्ष था इनके जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो हैं इनकी भाभी बनती हैं, चाची बनती हैं, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी?
1: एक महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है तो उसको मर्दों, पुरुषों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कि उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें अकल है, चाहे आप आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूव करना चाहिए। और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर, लोग ये सोचते हैं अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्ट थी, मतलब आप लड़की हैं, आप देखने में खूबसूरत है, तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिले।

0: गए, क्यों हमारी मेहनत कहाँ गई, हमने क्या पढ़ाई नहीं करी,
1: क्या बात
0: या
1: कही
0: हम जो
1: आपने।
0: रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं हमको डबली प्रूफ करना चाहिए करना पड़ता है। और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला के अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ
1: दूरी
0: बनती है, तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है, तो एक ये सब
1: दूरी तेरी
0: संघर्ष करने
1: जिम्मेदारी भी
0: पड़ता।
1: निभानी पड़ती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल। और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है बताओ, और हिमानी शिवपुरी?
0: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है,
1: बिल्कुल। और अपनी शक्ति को तलाशे, और आपकी इस
0: और उसमें
1: लंबी
0: शक्ति
1: यात्रा।
0: है और किसी भी चीज का सामना कर सकती है, वो सब औरतों ने प्रूव किया है।
1: जी, अब गाना सुनवाए एक।
0: जरूर।
1: कौन सा गाना? खामोशी द म्यूजिकल।
0: जी।

0: हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मिले जुले कमेंट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं। विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती है, तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है। तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी है। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है, आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है, मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम जी, कर रही हूँ।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत खत्म ना करें, तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं, और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगे।
1: जरूर हम जरूर आऊंगी।
0: अब आपने सबके सामने वादा कर दिया, हाँ। तो हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक का था, और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रीकर, यूनो

0: खान और हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से ये प्रसारण सफल हुआ, और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारे विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियाँ हैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक पेज को का दामन थामे रखिए। फिलहाल अब हम इजाजत ले रहे हैं। आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा, फिल्म ओ माई गॉड, बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का, जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ, और बहुत सारे इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना,

0: अच्छा,
1: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए वहाँ। हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की हैं वहाँ पे।
0: वाह वाह।
1: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजी जहूजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी
0: जी
1: और जसपाल मुनी जी, हरि ओम जी और पंडित ज्वाला प्रसाद जी और बहुत गुणी म्यूजिक डर, मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के
0: जी।
1: और जवाहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, मैं माफी चाहता हूँ। तो पिताजी का भी अपना एक अलग
0: दर्जा
1: वर्चस्व रहा है दिल्ली में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
0: वाह।
1: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
0: अच्छा।
1: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
0: जी जी,
1: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए।
0: जी जी।
1: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में और कुछ कुछ गजल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया। तो ये इस तरीके का रहा सफर,
0: ये सफर इस तरह से चलता रहा।
1: जी,
0: हमारी बातचीत के इस सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं।
1: जरूर।
0: तो आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
1: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
0: अच्छा। देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं
1: जी,
0: और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं।
1: जी जी जी,
0: है ना
1: जी, जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूं ना
0: जी,
1: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है।
0: क्या
1: पिताजी के साथ।
0: वाह।
1: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पे रियाज कर रहा हूँ।
0: वाह।
1: आप देख रहे होंगे इस पे ये निशान।
0: जी जी जी,
1: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ, उंगलियों के।
1: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
0: वाह।
1: और ये जो थ्रेडिंग है
0: जी,
1: ये देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
0: अच्छा।
1: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी, मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को और अपने संगीत को और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
0: बिल्कुल,
1: जहां से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहां से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूं तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ
0: जी,
1: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना है मुझे।
0: क्या बात है।
1: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
0: वेणु
1: और वेणु, क्योंकि मानसरी को वेणु भी बोलते हैं।
0: जी जी।
1: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जरोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों
0: जी,
1: और श्रेया घोषाल जी से लेके, सलीम सुलेमान जी से लेके, विशाल शेखर जी से लेके, सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया।
0: वाह।
1: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की
0: जी।
1: और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया।

0: और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल,
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले।
0: ये आप चाहेंगे, क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है,
1: बिल्कुल,
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें, अब उसमें पंडित प्रवीण गोरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया, पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
1: जी
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया, ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं,
1: जी जी
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं, और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी,
1: जी
0: अभिव्यक्त किया था, और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं,
1: जी जी
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं,
1: जी जी
0: और फिर और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफी देवप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें,
1: वाह
0: उन्होंने राग मालकोस बजाया था,
1: जी,
0: मेरे भाई ने राग हंसुधनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है
1: वाह वाह वाह,
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूं।
1: जी जी जी क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा,
1: जरूर
0: उनके बारे में भी बताऊंगा।
1: जी।

0: तारा जी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर, और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए,
0: जी
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे। दिल्ली के जो नामचीन काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मुनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे, तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप ज़रूर भेजिए। वहाँ से फिर कड़ी बनी मुंबई की, आने की।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो इस तरह से एक
1: मुंबई
0: तरह
1: आना
0: से
1: हुआ।
0: जसपाल मोनी जी
1: हाँ,
0: के।
1: वो इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था
0: जी
1: नहीं,
0: जी
1: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ वो तो भी नहीं बता सकता,
0: जी
1: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
0: त्याग करना पड़ता
1: त्याग
0: है।
1: करना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
0: जी
1: उस एज में मेरे लिए।
0: बिल्कुल। एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग-अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
1: बिल्कुल।
0: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन
1: जी
0: किन-किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें,
1: जी
0: आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
1: जी वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया
0: जी
1: है तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
0: जी जी
1: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
0: ओ माय
1: जैसे
0: गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी
1: जी
0: पीसेस हैं।
1: जी
0: जी,
1: जी
0: और
1: और ऊंचाई एक पिक्चर आई थी,
0: जी
1: ऊंचाई,
0: जी राजश्री
1: हाँ
0: प्रोडक्शंस की,
1: जी,
0: अमिताभ बच्चन थे।
1: एक मिली पिक्चर आई थी,
0: जी
1: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
0: वाह वाह,
1: मुन्ना भाई एमबीबीएस रिटर्न है,
0: क्या बात है,
1: दबंग 3 है, दृश्यम है,
0: ये तो बहुत लंबी
1: सरबजीत
0: फहरिस्त
1: है, फितूर पिक्चर है,
0: है। जी
1: नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मनमर्जियां है,
0: वाह वाह,
1: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
0: हाँ दोनों पार्ट,
1: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली LLB,
0: वाह वाह
1: बहुत सारी पिक्चर हैं
0: जी,
1: और भी बहुत
0: बिल्कुल।
1: सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है
0: हाँ
1: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है,
0: जी जी बिल्कुल।
1: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, सो इट्स माई पार्ट ऑफ

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं
1: जी,
0: तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है
1: जी,
0: तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूं
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूं, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूं
0: जी जी।
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं।
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्त सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है। करेक्ट, क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंट
1: है। और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है लोगों तक, घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं और दिलचस्प बात ये है कि हम विविध भारती में बैठे हैं जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहां हमेशा हूं आपके साथ।
0: हम बिल्कुल बिल्कुल हैं। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है
1: जी,
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है
1: जी? पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो एक
0: हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
1: वो एक वो पीस है। और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है,
0: वाह।
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री मुंबई इंडस्ट्री के
0: मेटल फ्लूट बजाया करते,
1: मेटल फ्लूट हो नहीं, ये मेटल फ्लूट है सर
0: जी बिल्कुल,
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
0: वाह
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है
0: जी जी।
1: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम बैम्बू
0: डिफरेंट है बिल्कुल।
1: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
0: ये भी बजाना होता है,
1: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ
0: जी।
1: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी,
1: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी।
1: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकेरिनो है
1: जी जी,
0: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी।

0: उसका ऐसा साउंड है।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: अच्छा,
1: है।
0: ये इसकी एक खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था,
1: अच्छा
0: और ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन हैं, उनके पास में गया था इटली में, वो
1: जी
0: एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहाँ पे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज़ मेरे लिए मुझे दीजिए क्योंकि मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर
0: और
1: सा।
0: ये आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू,
1: जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं,
1: हाँ ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी जी जी जी
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गा ही
1: जरूर,
0: देता
1: बिल्कुल बहुत जरूरी है।
0: हूँ। अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है,
1: हाँ
0: रहमान साहब के गाने का है,
1: हाँ हाँ हाँ हाँ

0: वाह वाह वाह वाह, क्या
1: इसका
0: बात
1: एक
0: है।
1: ऐसा खुद से ही जुगलबंदी निकल लेता।
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो
1: अब सर
0: गया।
1: एक मैंने जब मैं फ्लूट मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना।
0: जी जी जी
1: मैं बहुत घूमा हूं, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूं, लंदन घूमा हूं, यूरोप घूमा हूं। जैसा मैंने कहा इटली में था, इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में एक प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने। तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा। सो अच्छा

0: आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का।
1: बिल्कुल,
0: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं
1: जी,
0: और बहुत अलग अलग चीजें मैंने इंजॉय की है जिंदगी में।
1: क्या बात है।
0: सो अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो एक
1: ये तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है,
0: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है। ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है।
1: कहां से लाए?
0: नॉर्मल, जहां से मैं, ये तो मेरे खुद बनाई हुई है।
1: अच्छा अच्छा।
0: सो अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स। उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में
1: जी।
0: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था, क्योंकि रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे
1: जी जी।
0: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है।
1: बिल्कुल,
0: इसका साउंड में सुनाता हूं आपको
1: जरूर।

0: अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इनटू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाय मी
1: जी।
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल बाकायदा।
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली नहीं बजा सकते उसमें,
1: बिल्कुल।
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल।
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है,

0: पूरा साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना।
0: जी जी,
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ क्या बात है।

0: ये स्टाइल है इसका,
1: वाह,
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
1: और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही है,
0: बहुत बहुत बजाया मैंने इसको
1: जी, जी। म्यूजिक
0: में मैंने अपने एल्बम में भी बजाया
1: जी,
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: है
1: जी।

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना,
0: जी।
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए।
0: जी
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको।
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी।
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर दे तो मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक।
0: जी।
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर, तो
0: हाँ तो रख लेंगे।
1: रख लेंगे, बजाएंगे। पर
0: वाह।
1: अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको। अगर इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है,
0: जी
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले।
0: जी जी
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा। पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
0: बिल्कुल, एक अलग

0: सारे गामा पादा निशा आप सेम बजा रहे हो। अभी मैं आपको एक चीज एक दो उदाहरण देता हूँ
1: जी।
0: सपोज कीजिए सुबह कर आगे तोड़ी है
1: जी जी,
0: अब सारे गामा ऐसे भी बजता है थोड़ी, पर सिर्फ सारे ही गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।

0: ये भी सारे गाँव है,
1: जज्बात आ गए
0: पर इसमें प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
1: जी,
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है, मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
1: जी जी,
0: वो नहीं होती है, तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा, तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए
1: जी,
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है, तो
1: आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती ही नहीं है
0: जी।
1: इस महफिल को यहां रोकते
0: आपका,
1: हुए
0: आपका आपका और इस, अच्छा। इस जगह का जादू ऐसा है
1: जी,
0: कि मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, बट क्योंकि समय का भाव ऐसा रहता है,
1: मैं समझ सकता
0: आपका
1: हूं।
0: भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं
1: जी
0: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रित किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा मैंने हमने शुरुआत की, दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने,
0: नहीं जाने।
1: एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
0: तो मैं
1: गाने की फरमाइश कीजिए।
0: हीरो,
1: देखिए फरमाइश भी आ गई।
0: ये तो फरमाइश नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है।
1: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश।
0: हाँ हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूं उनको शायद।
1: अच्छा। क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया,
0: कॉम्प्लीमेंट है।
1: जी जी जी जी, तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
0: जी,
1: और आपको भी हीरो कह दिया है।
0: मुझे निशब्द कर दिया आपने।
1: जी
0: सो ये हीरो धुन
1: जी,
0: स्पेशली डेडिकेशन टू यू,
1: शुक्रिया,
0: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर। क्या आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माय गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम,
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी,
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को,
0: बिल्कुल
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हूँ, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग विद सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरी वादक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो वो रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया, तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे सपोज हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है,
0: बिल्कुल,
1: इसको हम विब्राटो कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब जो उनको विब्राटो जैसे सुनाई दे रहा था वो साउंड गाने में कैसे दे रहा था मैं बताता हूँ आपको
0: जी।
1: तो विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
0: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
1: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
0: जी।
1: जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था।
0: अरे बाप।
1: खैर, ओ माय गॉड कृष्णा थीम फॉर
0: जरूर
1: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है
0: जी,
1: कुछ
0: जी।
1: फेमस जिसको लोग बोलते हैं कि मैं मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है
0: जी।
1: कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन
0: जी,
1: सिंगर
0: जी,
1: गा
0: जी,
1: जाते
0: जी,
1: हैं।
0: जी।
1: ऐसी कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है,
0: अच्छा अच्छा
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया फिर उसको रखा है।
0: जी
1: अब जैसे एक वो है कलर्स चैनल का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके
1: तो ये एक थीम है, और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है मोमो के धागे वाले का
0: गाने, बहुत शानदार पीस है
1: आपके लिए स्पेशली मोमो के धागे।

0: क्या बात है, अद्भुत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पारसजी विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा वर्ग को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

0: आज युवानी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी युवा दोस्त अर्पिता का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप भी मेरी तरह एकदम स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए बताते हैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम का एक अंश, साथ ही डेली ट्रिविया एंड फन फैक्ट्स में जुड़ी रोचक जानकारियां, वहीं विज्ञान जगत में करेंगे विज्ञान चर्चा। और आज के विज्ञान वार्ता में हमारा विषय होगा दोस्तों मृदा शौर्यकरण। वहीं आज के संगीत पहेली में गीतों के साथ होगा हमारा सवाल, और हमेशा की तरह करंट अफेयर्स में भी आपको अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, आने वाले 30 मिनट बेहद खास होने वाला है, इसलिए आप बने रहे मेरे साथ यानी आपकी रेडियो दोस्त अर्पिता के साथ। आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और बात करते हैं हमारे आज के विषय पर। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए शुरू किया गया है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है दोस्तों। इस 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयहीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना एक बेहद महत्वपूर्ण और बुनियादी स्तंभ है। इसका सीधा फोकस इस बात पर है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबी दूरियां ना तय करनी पड़े और इस उन्हें अपने घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। दोस्तों, इस योजना के मुख्य गुण और विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, लक्षित दृष्टिकोण। सरकार ने देश के उन जिलों, ब्लॉक्स और कस्बों की पहचान की है जहाँ अल्पसंख्यकों आबादी अधिक है। नए स्कूल खोलने और पुराने स्कूल को सुधारने का काम इन्हीं क्षेत्रों में प्राथमिकता दिया जा रहा है। वहीं दूसरा, समग्र शिक्षा और RTE का एकीकरण। इससे शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन और समग्र शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बुनियादी ढांचा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने। वहीं तीसरे स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स, इसके तहत सामान्य स्कूलों को अतिरिक्त फंड दिया जाता है ताकि वहां पीने का साफ पानी, बिजली, पक्की दीवारें और ब्लैकबोर्ड जैसी बुनियादी चीज़ें तुरंत सुधारी जा सके। चौथा, लैंगिक समानता पर जोर। इस कार्यक्रम का अनूठा गुण यह है कि यह अल्पसंख्यक बालिकाओं, गर्ल्स की शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है, क्योंकि सामाजिक या आर्थिक कारणों से लड़कियों की पढ़ाई सबसे पहले छूटती है। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों और बच्चों को सीधे तौर पर निम्नलिखित लाभ भी मिलते हैं, जैसे स्कूल तक आसान पहुंच, लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल और विशेष विद्यालय, वित्तीय बोझ से मुक्ति, मध्याह्न भोजन, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा। विद्यालयहीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना अल्पसंख्यक समाज की आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाने की नींव है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि वह शिक्षा को या शिक्षा के हर बच्चे के घर तक पहुंचाता है, और इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों को भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और एक बेहतर भविष्य बनाने का समान अवसर देता है। तो दोस्तों, यह थी आज के चर्चा के विषय पर कुछ जानकारियाँ। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान

0: नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, इस अंतराल के बाद बारी है डेली ट्रिविया एंड फन फैक्ट्स पर आपको अपडेट करने की। आज के डेली ट्रिविया में हमारा सवाल है, रेडियो में नियंत्रण कक्ष किस क्षेत्र में आता है? इसका जवाब आप हमें अभी मेल करें हमारे मेल आईडी पर। हमारी मेल आईडी है phair@bhagalpur.gmail.com। दोस्तों, अब बारी है फन फैक्ट से जुड़ी एक रोचक जानकारी की। तो आपको पता है दोस्तों, भारत में रेडियो की शुरुआत 1903 ईस्वी में हुई थी और तब से आज तक हमारा साथ यूं ही बरकरार है। दोस्तों, इस रोचक जानकारी के बाद बारी है आज के विज्ञान चर्चा की। तो आज की विज्ञान चर्चा का विषय है मृदा संरक्षण, जीवन का आधार। दोस्तों, धरती पर जीवन के लिए जल, वायु और मृदा तीनों अत्यंत आवश्यक हैं। मृदा अर्थात मिट्टी केवल धूल या रेत का ढेर नहीं है, बल्कि यह हमारे भोजन, कृषि और पर्यावरण का आधार भी है। यदि मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी तो कृषि प्रभावित होगी और खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी। इसलिए मृदा का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मिट्टी प्रकृति का एक अमूल उपहार है। किसान इसी मिट्टी में फसलें उगाकर पूरे देश का पेट भरते हैं। पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इसके अलावा मिट्टी वर्षा के जल को संचित करने और भूजल स्तर को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई और अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और अनियंत्रित खेती के कारण मिट्टी की गुणवत्ता लगातार घट रही है। तो दोस्तों, आज के विज्ञान चर्चा में बस इतना ही। अब बारी है विज्ञान वार्ता की, जिसमें कि हमारा आज का विषय हमारे विज्ञान चर्चा से ही जुड़ा हुआ है, मृदा शौर्यकरण। इसके वार्ताकार हैं सुमन कुमार, तो आइए सुनते हैं उन्हें।
5: मृदा शौर्यकरण से हमारा तात्पर्य यह है कि हमारे मृदा जनित रोग जनकों और खरपतवार कीट के लिए प्रभावी नियंत्रण करें, जो कि किसानों के लिए गंभीर चुनौती है। मृदा में रसायनों का एक सीमा से अधिक प्रयोग करना भी किसानों के लिए भूमि की उर्वरता को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव मनुष्य और पशुओं दोनों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। मृदा शौर्यकरण के अंतर्गत पतले पारदर्शी प्लास्टिक चादर का उपयोग किया जाता है, जिससे भूमि के तापमान में बढ़ोतरी होती है और यह तापमान रोगजनक कीटों को नष्ट करने में प्रभावी होता है। यह एक बहुत ही सरल एवं प्रभावी विधि है। साथ ही यह खरपतवारों को नष्ट करने में और मृदा स्वास्थ्य को अच्छा करने में और फसल को अच्छी खनिज तत्व उपलब्ध कराने में मददगार साबित होती है। यह विधि काफी सस्ती और प्रभावी है। हमें मृदा शौर्यकरण तकनीक अपनाने से पहले हमें मृदा और उनको हानि पहुंचाने वाले कीटों, खरपतवार और रसायन जो कि मृदा के लिए हानिकारक है, उनके विषय में हमारी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तभी हम मृदा शौर्यकरण की तकनीक की अच्छी व्यवस्था से भूमि की उर्वरता बढ़ा सकते हैं। किसी भी किसान को खेती करने के साथ उन्हें सिर्फ फसल से नहीं बल्कि अपनी मृदाओं का ख्याल भी रखना चाहिए, जैसे कि हमारी मृदाओं में कौन सी खनिज तत्व की अधिकता है, किसकी कमी है, हमारे मृदाओं का कहीं तापमान आवश्यकता से अधिक तो नहीं है जो कि फसल को हानि पहुँचा सके इत्यादि। इसलिए हम थोड़ी कुछ मृदा के विषय में जान लेते हैं। मृदा क्या है? मृदा के भौतिक दृष्टि से मिट्टी के तीन अवयव हैं, रेत, सिल्ट और मृत्तिका। रेत स्थूल अवयव है जिसमें ना केशिका तत्व होता है और ना ही ससंजन। रेत के कणों का आकार 0.04 mm से, सिल्ट के कण रेत से भी सूक्ष्म होते हैं। इनका आकार 0.04 से 0.002 mm के करीब होता है। रेत और सिल्ट दोनों निष्क्रिय पदार्थ है। तीसरा अवयव है जो कि सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, वो है मृत्तिका, जिसके कण 0.002 mm से भी छोटे होते हैं। मृत्तिका रसायन रूप से सक्रिय अवयव होते हैं। मिट्टी की बनावट काफी सीमा तक इन अवयवों की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। रेत, सिलट और मृत्तिका की अधिक

0: होने पर मिट्टी को क्रमशः रेतीली, सिल्टी और मटियार कहते हैं। रेतीली मिट्टी की बनावट खुली होती है, जिसमें वायु संचरण पर्याप्त होता है, और यदि मटियार भाग में खनिज पदार्थों की मात्रा यथेष्ट हो तो यह मिट्टी खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। मटियार मिट्टी में खनिज का यथेष्ट होना आवश्यक है, क्योंकि मटियार मिट्टी सूखने पर सिकुड़ती है और पानी से खूब फूलती है। ऐसी दशा में यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। भिन्न भिन्न मिट्टियों की संरचना एक ही है, इसमें मुख्यतः खनिज जो कि ऑक्साइड रूप में रहते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम तथा लौह पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न मिट्टियों में खनिज के यौगिक भिन्न भिन्न होते हैं। वैज्ञानिक एक्स किरण स्वजातीय शैल विश्लेषण संबंधी प्रयोगों के फलस्वरूप मिट्टी के खनिज संबंधी दो समूह निश्चित हुए हैं। फर्स्ट कोओलिन समूह, सेकेंड माउंट मार्लोनाइट समूह। कोओलिन समूह के मिट्टी के खनिज सिलिका और एल्युमिनियम के चादरों से बने होते हैं। माउंट मारिलोनाइट समूह, इस समूह के खनिज के क्रिस्टल जालकों में 2 इकाई सिलिका चादर और 1 इकाई एल्युमिनियम चादर से बने होते हैं। इन दो संरचनाओं की मिट्टियों में बहुत अंतर होता है। इनके भौतिक और रासायनिक गुण में महान अंतर होता है। केओलिन खनिज क्षार विनिमय धारिता निम्न और उसका अधिशोषण गुण भी कम होता है, जबकि मारिलोनाइट खनिज का धनायन अधिशोषण अधिक होता है। भारत के मिट्टी में प्रधान काली मिट्टी है, जो कि प्रायः समस्त मध्य भारत तथा दक्षिण भारत में छाई हुई है। माउंट मारिलोनाइट समूह का अब हम पुनः अपनी विषय वस्तु पर, माउंट मारिलोनाइट समूह का मिट्टी जो है दक्षिण भारत के विशेष समूहों में पाया जाता है। मिट्टी के परिचर्चा के बाद अब हम पुनः अपनी विषय वस्तु पर जाते हैं, जो कि हमारा मृदा सौरीकरण है। चूँकि मृदा सौरीकरण के अंतर्गत मृदाओं में उगने वाले अनचाहे पौधे जो कि सामान्यतः घास वर्ग के होते हैं, खरपतवार कहलाते हैं, उनको भी खत्म करने का विशेष अभिप्राय होता है, क्योंकि ये मृदा के तापमान में वृद्धि करते हैं। खरीफ फसलों में रबी मौसम की तुलना में खरपतवारों के प्रकोप से अधिक क्षति होती है। सामान्यतः खरपतवार फसलों को प्राप्त होने वाली 47% नाइट्रोजन, 42% फास्फोरस, 50% पोटास, 39% कैल्शियम और मैग्नीशियम का उपयोग कर लेते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार फसलों के लिए नुकसानदायक रोगों और कीटों का भी आश्रय देकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा कुछ जहरीले खरपतवार जैसे गाजर घास, जिनका साइंटिफिक नाम पार्थनियम है, धतूरा, गोखरू, कांटेदार, चौलाई आदि न केवल फार्म उत्पाद की गुणवत्ता को घटाते हैं, बल्कि मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति भी खतरा उत्पन्न करते हैं। खरपतवारों के प्रति खतरा भी उत्पन्न करते हैं। खरपतवारों द्वारा फसल में होने वाले क्षति सीमा फसल, मौसम तथा खरपतवारों के प्रकार उनकी संख्या पर निर्भर करती है। खरपतवारों के इस तरह विनाशकारी रूप को देखते हुए मृदा सौरीकरण तकनीक में विभिन्न मोटाई की पारदर्शी पॉलीथाइन सीट जो कि 50 से 100 मिली माइक्रोन मोटी समतल नमीयुक्त मिट्टी के ऊपर सतह पर फसल के बुआई के पहले मई महीने में 4-6 सप्ताह तक फैलाकर मिट्टी के ऊपरी सतह का तापमान बाह्य तापमान की तुलना में 8 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा किया जाता है। इससे मिट्टी की ऊपरी सतह में जमा खरपतवारों की बीजों के अंकुरण होने की शक्ति कम हो जाती है या निष्क्रिय हो जाती है। इसके अलावा कुछ हानिकारक कीड़े, सूत्रकृमि तथा अन्य नाशक भी नष्ट हो जाते हैं। यह तकनीक पौधशाला में पौधे तैयार करते समय खरपतवारों के नियंत्रण में बहुत लाभकारी होता है। आज खाद्यान्नों की कमी के कारणों के विश्लेषण करें तो हमें पता चलेगा कि फसलों में विभिन्न नाशकों द्वारा 1,00,000 करोड़ से अधिक की वार्षिक हानि होती है, जिसमें अकेले खरपतवार के कारण 37% हानि होती है, जबकि कीड़े से 22% व बीमारियों से 29% फसल की हानि होती है। खरपतवार हमारी भूमि से पानी को भी अवशोषित कर लेते हैं, जिनसे किसानों को जहां 3 या 4 पानी की फसल में आवश्यकता होती है, वहीं 4 से अधिक उन्हें सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस तरह किसानों पर अतिरिक्त सिंचाई का भी बोझ बढ़ता है। इस तरह मृदा सौरीकरण तकनीक से खरपतवार को नष्ट कर हम अपनी कृषि की आय भी बढ़ा सकते हैं। भारत में जहां मई जून में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, इन महीनों के तापक्रम का लाभ उठाते हुए किसान मृदा सौरीकरण की तकनीक अपना सकते हैं। इस विधि में सूर्य के तापक्रम द्वारा कीटों के अंडा, रोगाणुओं और खरपतवार के बीजों को नष्ट किया जाता है। यह विधि काफी सस्ती और प्रभावी है। सूर्य की किरणों का कुछ हिस्सा पारदर्शी पॉलीथीन से प्रेषित होकर मृदा की सतह पर अवशोषित हो जाती है और संरक्षित तापमान में परावर्तित हो जाती है। प्लास्टिक तरंगों के विकिरण एवं पानी के वाष्पीकरण को मृदा से वातावरण में जाने से रोकता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव देखा जा सकता है। जो जल की वाष्प पॉलीथीन परत की अंतः सतह पर एकत्रित हो जाती है, वह फिर से ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। यह भूमि के तापमान में वृद्धि करते हैं। काले रंग की प्लास्टिक चादर ज्यादा सौर विकिरण अवशोषित कर लेते हैं और तापमान की बढ़ोतरी करते हैं। मृदा सौरीकरण में प्रयुक्त मिट्टी ढीली, भंगुर, जिसमें बड़े ढेले एवं मलबा कचरा ना हो तो अच्छी रहती है। लंबे अधिक तापमान, नमी और सौर जनित रोग कारकों और खरपतवार के प्रति अधिक प्रभावी होता है। इसके लिए 4-6 हफ्तों के लिए मृदा को प्लास्टिक चादर से ढक दिया जाता है। इसे और अधिक प्रभावी करने हेतु मृदा में दूसरे पादप जैसे सरसों प्रजाति के पौधे के साथ ही कार्बनिक खाद आदि मिला दिए जाते हैं। मृदा सौरीकरण के दौरान मृदा का तापमान 35 से 60 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मृदा के गहराई, ऋतु, स्थान एवं अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। यह मृदा अस्थिर यौगिकों में परिवर्तन करता है। मृदा सौरीकरण के कई मुख्य रोग कारक कवकों, फ्यूजेरियम, जीवाणुओं आदि को नष्ट करने में काफी कारगर पाई गई है। यह बहुत ही नीमेटोड के प्रति काफी प्रभावकारी पाई गई है। सौरीकरण के आरंभ की प्रक्रिया में उपयोग सूक्ष्म जीवों की कमी पाई जाती है, परंतु बाद में काफी तेजी से इसकी संख्या में वृद्धि होने लगती है। पादप पोषक तत्वों में बढ़ोतरी के साथ साथ लाभदायक जीवाणु जैसे बेसिलस प्रजाति आदि में भी वृद्धि हो जाती है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विज्ञान वार्ता, जिसका विषय था मृदा सौरीकरण। वार्ताकार थे सुमन कुमार। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: दोस्तों, इस अंतराल के बाद पारी है आज के संगीत पहेली की। तो हमारे पहले सवाल को सुनने के लिए सुनिए हमारा पहला गाना फिल्म वेलकम से।

दोस्तों, इस गाने के बाद अब बारी है आज के सवाल की। तो हमारा पहला सवाल है कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है? आप हमें अपना जवाब जरूर भेजिए। आइए दोस्तों, अगले सवाल के लिए सुनते हैं हमारा अगला गाना। आपका क्या होगा? चनावे आली।

तो दोस्तों, इस गीत के बाद बारी है सवाल की। तो इस गीत से हमारा सवाल है कि इस गीत को किस फिल्म में गाया गया है। आप हमें अपना जवाब जरूर भेजें। अब है बारी दोस्तों डेली ट्रिविया में पूछे गए सवाल के जवाब बताने की। तो रेडियो में नियंत्रण कक्ष को कक्ष किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही जवाब है तकनीकी क्षेत्र। दोस्तों, अब बारी है करंट अफेयर्स पे आपको अपडेट करने की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत द्वारा नई आईआईपी श्रृंखला अपनाने के बाद अप्रैल 2026 में औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं तमिलनाडु के किसान को सतत कृषि में उनकी सफलता के लिए संयुक्त राष्ट्र FAO के मृदा किसान नायक के रूप में सम्मानित किया गया है। वहीं दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में भारत की समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड 17.890 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। भारत के समुद्री खाद्य क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से अब तक सर्वश्रेष्ठ निर्यात प्रदर्शन दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्र या ईमेल द्वारा जरूर सूचित करें। हमारा पता है युवाणी कार्यक्रम द्वारा आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन कोड है 812001। हमारा ईमेल एड्रेस है phairbhagalpur@gmail.com। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपनी रेडियो दोस्त अर्पिता को दे इजाज़त। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपको सुन

आ रहे हैं फिल्म झूम बराबर झूम से, आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की, संगीत है शंकर एहसान लॉय की और गीतकार हैं गुलजार।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, अगला नगमा सुनिए फिल्म कल हो ना हो से। स्वर है उदित नारायण और साथियों का, बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और इसकी धुन तैयार की है शंकर एहसान लॉय ने।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे।

0: क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय।
1: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आप सुनिए गायक कलाकार के की आवाज़ में ये गीत। फिल्म है भूल भुलैया। इस गीत की रचना की है समीर ने और इसे संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं आतिफ असलम की आवाज में। फिल्म है टाइगर जिंदा है, इसकी धुन तैयार की है विशाल शेखर ने और गाने के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। इसमें आप सुनेंगे हमारे केंद्र से आज प्रस्तुत होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कल प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में और जानेंगे उनके प्रसारण के समय के बारे में।

अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे प्रस्तुत होगा ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी, और संध्या 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। 8 बजे पेश होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, और रात्रि 9:30 पर सुनिए नाटक लोहा सिंह। 10 बजे आप सुनेंगे अंगिका लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार, और 10:30 पर पेश होगा गीत गजल कार्यक्रम भावगीत। पुनः रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अब एक नजर डालते हैं कल हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:48 पर। 5:55 पर आप सुनेंगे खेत खलिहान कार्यक्रम और 6:05 पर प्रस्तुत होगा चिंतन मनन। 6:10 पर सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना और 6:35 पर प्रस्तुत होगा स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान और 7:00 प्रस्तुत होगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे रसरंग, मौसम का ताज़ा हाल, रेल सूचना और समाचार पत्रों की सुर्खियाँ। 9:06 पर पेश होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने और 9:30 पर सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार अनिल कुमार आनंद की आवाज़ को। 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से और 11:00 पेश होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नई फिल्मों से।

12 बजे प्रस्तुत होगा महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दोपहर 1 बजे प्रस्तुत होगा लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग और 1:30 पर सुनिए घर आंगन कार्यक्रम। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से और 3:30 पर तीन बजे प्रस्तुत होगा रविंद्र संगीत कार्यक्रम। 3:25 से जारी होगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

संध्या 5 बजे पुनः आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम और शाम 6 बजे हम उपस्थित होंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम के साथ। 7:10 पर प्रस्तुत होगा श्रमिक जगत कार्यक्रम। 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा और रात्रि 10 बजे सुनिए कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत कार्यक्रम फिल्मी गजलें। पुनः रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से और रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। साथ ही आपने सुना कल हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

0: स्वागत है सभी श्रोता भाइयों बहनों को कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। सबको लाखों का नमस्कार।
1: सब भाई का अकलू के भी नमस्कार। लाखों भाई अपनों को नमस्कार।
0: नमस्कार और हार्दिक स्वागत अकलू भाई। और सब सुनाइए, क्या हाल समाचार है?
1: सब चकाचक छो। अभी देखो छो नवतपा चली रहो है और नवतपा रहा आज छो आखिरी दिन छिके।
0: बिल्कुल
1: एना में है एक दो दिन जिसलो गर्मी देख लो की धापी लो ले।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अपने आंध्र प्रदेश का मौसम जो है अकलू भाई, एक बार फिर से आंधी बारिश के बाद गर्म हो गया है। और यह धूप जो आज हम लोगों ने देखा, इससे कहीं न कहीं 40 डिग्री के पार तापमान पुनः जा रहा है। तो लोगों को ऐसे में फिर से परेशानी बढ़ रही है, लेकिन मौसम है, उनका मिजाज ही है बदलना, और वो गर्म और ठंडा होते रहते हैं।
1: तो प्रकृति नियम हो लखो भाई।
0: बिल्कुल,
1: कि आज गर्मी छे तो कल जैसे जाड़ा होते, फिर बरसात होते, तेना जैसे चलता रहते।
0: बिल्कुल,
1: कभी आंधी तूफान ते तो कभी जो एकदम सुखाड़ आविजते। लेकिन लोगों का घबराना नहीं छे, लेकिन सजग और सचेत जरूर हो जाना छे। केना कि है जे मौसम में परिवर्तन हो रहा छे, यानी कि जलवायु में जे परिवर्तन हो छे, एकरो पीछू कहीं न कहीं हमरे सनी के यानी कि आदमी के ही हाथ छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने हम लोग यदि पेड़ों की कटाई कम करेंगे, ऐसे प्रकार के प्रदूषण कम करेंगे जिनसे कि जलवायु परिवर्तन होते हैं, तो निश्चित रूप से मौसम अनुकूल रहेगा। और पृथ्वी के तापमान और मौसम के पैटर्न में होने वाली दीर्घकालिक बदलाव को ही तो जलवायु परिवर्तन कहते हैं।
1: जलवायु परिवर्तन के मतलब होले कि पृथ्वी के औसत तापमान और मौसम के जे पैटर्न छे, जना बारिश हो गले, हवा हो गले, धूप हो गले, एकरा में दशक या सदी तक होए वाला दीर्घकालिक बदलाव एकरे जलवायु परिवर्तन कहे छे।
0: बिल्कुल, हालांकि ये प्राकृतिक कारणों से भी होते हैं अकलो भाई, लेकिन 19वीं सदी के बाद मानवीय गतिविधियां इसका मुख्य कारण रही है। मुख्य कारण में जीवाश्म ईंधनों का जलना भी है, जिसमें कि कोयला, तेल, गैस का अत्यधिक इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं, जिनमें कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जो पृथ्वी को धीरे धीरे गर्म करती है।
1: देखो एकरा में बतेबे कर लो कि मानवीय कारण भी हो छे।
0: बिल्कुल
1: ना, प्राकृतिक कारण जे छेबे करे, लेकिन मुख्य रूप से मानवीय कारण भी छे। जना कि औद्योगिक क्रांति के बाद से मानव निर्मित गतिविधि जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़ो और मुख्य कारण हो गेलो छे।
0: बिल्कुल,
1: और हो अभी बतेबे कर लो जीवाश्म ईंधन के जलना ना।
0: हाँ।
1: जीवाश्म ईंधन जना कोयला हो गेले, तो है प्राकृतिक गैस हो गए, एकरा अधिक से अधिक जो हम सनी उपयोग कर लागलो छे, एकरा जलला से भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आरु एकरो पीछे एक चीज आरु कारण छे, हौज के जंगल के कटाई, यानी कि वन के कटाई, कृषि, इमारत आरु उद्योग के विस्तार के वास्ता बड़ा पैमाना पर जे छे पेड़ के कटाई हो रहा छे। पेड़ प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का सोखे छे, लेकिन जब पेड़ के ही हम असनी कटाई कर लेबे तो एकरा से की होते कि संतुलन बिगड़ी जते, और जब है संतुलन बिगड़ता तो जलवायु में परिवर्तन होबे करते।
0: उससे क्या होता है कि गैस जो है वायुमंडल में जमा हो जाता है और उसका प्रभाव हमें उस समय में वर्षा देखने को मिलती है, प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती है। वहीं देखिए इसके मुख्य कारणों में कृषि और उद्योग का भी है होना, कि इसमें आधुनिक और खेती और कारखानों से निकलने वाली जितने भी मीथेन और अन्य हानिकारक गैसें होती हैं इसमें बड़ा योगदान देती है, और इसके प्रभाव जो है लगातार तापमान में वृद्धि के साथ देखने को मिलता है।
1: लेकिन लाखों भाई है बड़ा चिंता के विषय हो जाए कि कहता हूँ, समय कहता हूँ को गर्मी बहुत लागी रलो छे हो ठंडा बहुत हो रलो छे हो, एह आज के दिल के गमछा भर झड़ी बुनी हो, लेकिन है कहम तो बड़ा आसान लागे छे। लेकिन एकरो पीछू जे कारण छे वो है भूली जाए छे कि ओकरो पीछू कारण केकरो छे, तो हमरे सनी के छे, यानी आदमी के छे। हम असने जंगल काटे लगलिए तो जे छे एकरा कारण से जलवायु में परिवर्तन हो गेले, और अभी बोलबे कर लो कि असमय सब कुछ हुआ लगले, समय से जो होना चाहिए उन्हें समय के बाद या समय के पीछू।

0: जे होना चाहिए संतुलित अवस्था में तो ऊ हो जाए असंतुलित अवस्था में हो जाए
1: बिल्कुल
0: जना कि पानिए दिए लगलों तो खूब पानी दिल्कों कि बाढ़ आ गलों गर्मी

0: आकाश है वो जलमग्न हो गेले
1: बिल्कुल
0: एहन नहीं हुआ एकरा वास्ते हमरा सनिक अभ्यय से सचेत होय के जरूरत है।
1: बिल्कुल, और तापमान में भारी उतार और चढ़ाव, पानी की कमी से फसलों की पैदावार प्रभावित हो रही है और मुख्य रूप से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उसका ह्रास के बीच संतुलन ही हमारे पृथ्वी की जलवायु का निर्धारण और तापमान संतुलन निर्धारित करती है। यह ऊर्जा हवा, समुद्र की धारा और अन्य तंत्र द्वारा विश्व भर में वितरित हो जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु को प्रभावित करती है। जलवायु परिवर्तन के जो कारक होते हैं उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनमें सौर विकिरण में बदलाव, पृथ्वी के कक्षा में बदलाव, वातावरण, महासागर, पर्वत का निर्माण, महाद्वीपीय बहाव और ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता में परिवर्तन आदि शामिल है अकलू भाई। और जलवायु परिवर्तन के कारण में सबसे बड़ा कारण जो है मांसाहार है। आदमी जो है कि भोग विलास में नियमित रूप से लीन होते जा रहा है, इसके लिए जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है और जनसंख्या वृद्धि मूल कारण है और सही शिक्षा का अभाव भी इसका मुख्य कारण है।
0: सही शिक्षा मतलब कि जलवायु के प्रति शिक्षा,
1: बिल्कुल,
0: कि हम असनी केना है पृथ्वी का वातावरण का जलवायु का अच्छा करी के रखबे, स्वच्छ करी के रखबे, स्वस्थ करी के रखबे, हरित बनाए के रखबे, एकरो कमी हो रहलो छे। और कमी भी नहीं हो रहलो छे, कहो तो सभे जाने छे लेकिन एकरा हिंडा कोई कदम नहीं बढ़ा रहलो छे,
1: बिल्कुल,
0: जे कि चिंता के विषय छे। ये वास्ता है अपनो सबका है मानेल पड़ते, जानेल पड़ते और हर स्तर पर है सबका सिखावेल पड़ते कि जलवायु परिवर्तन जे हो रहलो छे ओकरा जे हानि होय छे, ओकरा जे नुकसान हो रहलो छे, ओकरा प्रति सबका सजग करना छे और ओकरा केना बचना छे, है सबसे ज्यादा जरूरी चीज छे। है चीज पढ़ावेल सिखावेल पड़ते सबे के। अब एकरा प्रति सबसे आसान और सबसे बढ़िया उपाय छे कि तो खूब ढेर को पेड़ पौधा लगावो और खाली पेड़ पौधा लगेबे नहीं करो, पेड़ पौधा लगेला के बाद ओकरो सुरक्षा भी करो। और पेड़ पौधा लगा लो और भूले हो हम तो 100 पेड़ लगा दिलिए लेकिन जब कुछ दिन बाद जब वो तो सब बकरी चरी गलो ना, या फिर जैसे मरी गले पेड़ पौधा तो ओकरा केना बचे वो है सबसे बड़ा बात छे। खाली लगाने बड़ा बात नहीं छे, लगेला के बाद ओकरा बचाना सबसे बड़ा बात छे। तो पेड़ पौधा लगावो भी और ओकरा बचावो भी, तभी जब वो बड़ा होते पेड़ पौधा तब तब वहाँ जे छे है धरती का बचेते। और जब धरती बचता हूँ, पर्यावरण बचता हूँ, तभी तो सब बचते।
1: बिल्कुल, और इसलिए जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मानव जनित गतिविधियां जो होती है, जैसा कि अभी आपने बताया, वो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर रही है। पृथ्वी का वातावरण सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करता है, उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं और पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है अकलू भाई। ये गैसें सूर्य की ऊर्जा का शोषण करके पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है, इससे पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन भी होता है। और गर्मी की ऋतु देखिए कि अभी लंबी अवधि की होती जा रही है,
0: हाँ।
1: और वहीं पे शरद ऋतु छोटी अवधि की होते जा रही है। ये सब प्रभाव जो है कि जलवायु परिवर्तन का है।
0: और देखो लाखों भाई, जलवायु परिवर्तन होला से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी होये छे, जेना कि जलवायु परिवर्तन से वायु प्रदूषण बढ़ी रहलो छे और एकरा से फैनो जे छ मलेरिया, डेंगू जेनो जे छे जे भी रोग छे जे कि कीड़ा मकोड़ा से फैले वाला छे, हो बीमारी के खतरा तेजी से भी बढ़ी रहलो छे। एकरा से मानव स्वास्थ्य वास्ते एक बड़ा संकट छे, का संकट है बनी रहलो छे।
1: बिल्कुल, और इसलिए जलवायु परिवर्तन जो है एक वैश्विक संकट है जिसके समाधान के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रमुख उपायों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन चक्की का प्रयोग करना और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्य को गति देना।
0: और एक चीज लाखो भाई, अभी मतलब सौर ऊर्जा के उपयोग ज्यादा करो, सरकार भी है जब तरफ जो सजग छो कि सौर ऊर्जा अपनावे वास्ते लोगों के एकरा वास्ते प्रेरित करे के वास्ते छे, तो सोलर प्लेट जो वो खरीदो, ओकरा पर सब्सिडी भी सरकार ने दे रहलो छे।
1: बिल्कुल,
0: कितना अच्छा बात छे कि एकरा से हम असनी जीवाश्म ईंधन पर कम से कम जे निर्भर रहबे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इससे जो है कि हम अपने उपयोग में जो

0: बिजली का प्रयोग करते हैं, यदि हमारे घरों में उनका उपयोग ना है तो ऐसे ही फालतू में बल्ब या पंखा या कूलर टीवी जलाकर नहीं छोड़ देना चाहिए, ऊर्जा की दक्षता को बचाना चाहिए।
1: हाँ, यानी कि बिजली का बचाव। लेकिन एक ठो आरू जैसे ना बड़ा है दुखद जैसे चीज़ हो जाए, जना करी का सब है लोग की कथा हो है, हम अपनों सबके घर का देखो तो सब है बिजली बचेता हूँ अच्छा से रखता हूँ, लेकिन वही चीज़ अगर सार्वजनिक जगह पर चली जाए, सार्वजनिक स्थान पर जाए, वहाँ अगर कुछ चीज़ है ना बिजली जली रो फालतू में जली रो या फालतू में पानिए बही रो तो ओकरा प्रति सजग नहीं होइ छे, है जरा शोचनीय विषय है, एकरा प्रति सोचे पड़ते और अपनों सनी का सबका एकरा प्रति काम करे पड़ते कि कहीं भी अगर बिजली के खपत हो रो या पानी बर्बाद हो रो या एहनो कोनो चीज़ जेकि उपयोग वाला चीज है, जखनी उपयोग हुआ तखनी उपयोग करो, जखनी उपयोग नहीं हो रहा है तखनी ओकरा बंद कर दो।
0: बिल्कुल,
1: है सबका सोचे पड़ते रहना पड़ते, सबका आगे भी बढ़ने पड़ते,
0: इसलिए सार्वजनिक जगहों पे ऐसी वस्तुओं की रक्षा करना ही हमारा धर्म है, और सार्वजनिक वाहनों का भी प्रयोग करना हमें जो है कि आवश्यकता अनुसार जरूरत है, और जैविक खेती को अपनाएं और पौधे आधारित जो आहार होते हैं उसको अपने में शामिल करें, जैसे कि मांस और डेयरी उत्पाद के उत्पादन में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है, इसलिए अपने आहार में जहां तक संभव हो शाकाहारी भोजन को अधिक शामिल करना भी एक प्रभावी कदम है।
1: आरु स्थानीय आरु मौसमी जो खाद्य पदार्थ हो ओकरा ही जैसे वो खा ओकरे सेवन करो तो बढ़िया रहते।
0: बिल्कुल
1: है ना, और भोजन के बर्बादी भी रोकना छे।
0: बिल्कुल,
1: एक आरु बड़ो बात जो कि कचरा प्रबंधन भी ठीक से करो।
0: बिल्कुल,
1: कचरा कम से कम फैलावो, और अगर ओकरो पुनः उपयोग हुआ पर तो फेनो ओकरो पुनः उपयोग करीला, ठीक ना, तब ये जे छे ओ अच्छा से हम असनी रहबो करबे।
0: ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी हम लोग अपने कार्यक्रम में साझा करेंगे अकलू भाई। आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेशों को।

0: Akashvani at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: संदेश का सुनला के बाद एक बार फैनू से सभ्य श्रोता भाई बहन के स्वागत करे छे हुनको पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। आरो जना के मसनी एकरा से पहिने चर्चा कर रहलिए जलवायु परिवर्तन पर। त जलवायु में जे परिवर्तन हो रहलो छे आरो ओकरा से आपनो सनी के स्वास्थ्य पर उल्टा असर पड़ रहलो छे, एकरा पर सबका मिली बैठी के सोचे पड़ते और एकरा केना दूर करना छे, है समस्या के केना निदान करना छे, एकरा पर सबका सोचे पड़ते। और सबसे आसान जो हम जाने छे वो छे कि सबसे ज्यादा से ज्यादा जो पेड़ लगाबो, पेड़ जितना ज्यादा लगेबो उतने ज्यादा जलवायु अपनो सनी के हित में रहते और है धरती बचलो रहते,
4: ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बचा पाए।
3: हाँ, और देखो अपनो पीढ़ी का तो बचेबे करबे, लेकिन ओकरा हाथों में एक एहनो पृथ्वी या एहनो जलवायु देना छे जे कि ओकरा वास्ते अच्छा रह, आरो एकरा वास्ते सब कुछ ठीक ठाक करे पड़ते, चाहे वो अपनो संस्कारी केनन रह जे अपनो संस्कृति के ओकरो बचा के रखना छे। अब संस्कृति से याद आवे छौ कि है अपनो सनी के दैनिक जीवन में गीत संगीत के भी जे छौ बहुत बड़ो हाथ छे,
4: बिल्कुल
3: ओकरा से भी स्वास्थ्य अच्छा रहे छे।
4: बिल्कुल,
3: तो चलो हम सनी स्वास्थ्य पर जब इतना बात करिए रहलो छिए तो गीत संगीत भी सुनी सुनी लो जाए।
4: बिल्कुल, आइए देवी गीत से हम लोग

0: AIR at 90.
1: बिल्कुल
2: अगलो भाई, देखिए अभी जो है कि हमारे देश में, विदेशों में, सभी राष्ट्रों के बीच विश्व शांति कायम रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी का जो विज्ञान के इस दौर में प्रगतिशील राष्ट्र और विकसित राष्ट्र है, वो सभी अपनी अपनी शक्ति की प्रदर्शन के होड़ में है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि वैश्विक शांति बनाए रखे और उसके साथ ही आगे बढ़ने में सबकी भलाई है, सभी धर्मों की भलाई है, सभी संस्कृतियों की भलाई है और सभी प्रकार के संगठनों की भी भलाई है।
1: और एकराम जे छे सब देश अपना अपना तरीका से हाथ भी बटा रहा है और बटाना भी चाहिए, क्या कि जब कि पूरा विश्व में शांति होता तो समझी ला कि प्रगति भी उतने ज़्यादा होता। और क्या कि एक अशांत मन जो हो आविष्कारक नहीं हो पा रहे छो, आविष्कारक हुए वास्ते शांत मन होना जरूरी है। और जब आविष्कार होता हूँ तो अच्छा अच्छा आविष्कार होता हूँ तो और अच्छा से उपयोग भी होता हूँ, तो यही वास्ते शांति जे छे वो सबसे बड़ो बात छे। और सबके एकरा प्रति जैसे काम भी करना चाहिए,
2: बिल्कुल।
1: तब विश्व शांति के की वैश्विक उपाय होना चाहिए है सबसे बड़ो बात छे आजकल के है दौड़ भाग वाला जिंदगी में। तो चलो एकरा पर हम अपने विस्तार से जानना चाहिए है पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से, वार्ता कार्ज के विजय कुमार धावक और वार्ता के विशेष के विश्व शांति के वैश्विक उपाय।
3: पिछले दो महायुद्धों में भयानक नरसंहार को देखकर आज के विश्व का मानव युद्ध की विभीषिकाओं से संत्रस्त होकर अपनी रक्षा के लिए शरण ढूंढ रहा है। बड़े बड़े राष्ट्रों के कर्णधार युद्ध न करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं और उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु बीच बीच में कुछ ऐसी चिंगारियां फूट निकलती हैं जिनसे युद्ध की संभावनाएं भीड़ से अंकुरित हो जाती है और युद्ध विराम योजनाएं असफल दृष्टिगोचर होने लगती हैं। आज विश्व इसी स्थिति में है जिस स्थिति में महाराजा अशोक कलिंग विजय के उपरांत थे। अशोक ने मगध साम्राज्य की पूर्णता के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंगवासी लड़े भी परंतु विजय प्राप्त न कर सके। कलिंग विजय में कितना भीषण नरसंहार हुआ, कितने घर वीरान हुए, कितनी सधवा माँ बहनों ने अपनी मांग का सिंदूर सदैव सदैव के लिए पहुँच डाला, बालक अनाथ हुए। देश की हरी भरी भूमि श्मशान जैसी भयानक दिखाई पड़ती थी। उस दिन से अशोक हिंसा के स्थान पर अहिंसा का उपासक बन गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह कभी शस्त्र धारण नहीं करेगा, संसार को हिंसा के बजाय प्रेम, करुणा और अहिंसा से जीतेगा। इस घटना के पश्चात अशोक ने जो विजय प्राप्त की वह आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। सिकंदर और नेपोलियन जैसे वीर भी इतनी महान विजय प्राप्त न कर सके जितने अशोक ने की। चीन, जापान, जावा, बाली, श्याम और सिंगल आदि देशों में आज भी बौद्ध धर्म छाया हुआ है। यह अशोक के प्रेम अभियान का ही परिणाम है। भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा ही था। प्रेम और करुणा ही उनके सबसे बड़े मंत्र थे। मन, वाणी और कर्म से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट न देना ही अहिंसा का मूल मंत्र है। अशोक ने जीव मात्र को सुख पहुँचाने के लिए जितने भी उपाय संभव हो सकते थे किए। अहिंसा और शांति का संदेश दूर दूर देशों में प्रसारित करने के लिए उसने सुशील और सचित्र विद्वानों को भेजा। अपने राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी संघमित्रा को भिक्षु और भिक्षुणी बनाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रचार के लिए सिंगल द्वीप भेजा था। आधुनिक युद्ध में महात्मा गांधी जी ने भगवान बुद्ध के सत्य, प्रेम और अहिंसा का प्रचार किया जिससे विश्व में शांति और सद्भावना स्थापित हो सके। आज का युद्ध संपूर्ण मानव सभ्यता और समाज का विनाश कर देगा, इसीलिए विश्व में सभी राष्ट्र एक स्वर से शांति की कामना कर रहे हैं। वे देख चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में धन, जन और शक्ति की कितनी महान क्षति हुई थी। जापान के दो प्रमुख नगर हिरोशिमा और नागासाकी इस महान विध्वंस के साक्षी हैं। आज का युद्ध और विज्ञान मानव विकास के साधन न बनकर विनाश के साधन बने हुए हैं। पिछले विश्व युद्ध तक तो केवल अणुबमों का ही आविष्कार हुआ था, परंतु अब तो रूसी और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने उससे भी कई गुना अधिक विध्वंसकारी हाइड्रोजन बम का निर्माण कर लिया है। अब यह स्थिति है कि यदि युद्ध का सभी राष्ट्रों ने एकदम बहिष्कार न किया तो परिणाम इतना भयंकर होगा कि विजित के साथ साथ विजेता भी सर्वनाश की आंधी में उड़ जाएगा। इसीलिए विश्व के सभी राष्ट्र किसी न किसी रूप में युद्ध विराम की योजनाएं बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा वांडुंग सम्मेलन में एशिया तथा अफ्रीका के देशों का जो सम्मेलन हुआ उसका लक्ष्य यही था कि विभिन्न देशों के मध्य तनाव कम हो और युद्ध की भावी आशंकाओं को रोका जाए। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए चीन के पूर्व प्रधानमंत्री चाओ एन लाई तथा उनके समकालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील को जन्म दिया, जिनकी प्रतिष्ठा राजनीतिक शक्ति तथा सिद्धांत के रूप में वांडुंग सम्मेलन के 29 राष्ट्रों की स्वीकृति द्वारा हुई। पंचशील के सिद्धांतों में सर्वप्रथम आक्रमण न करना है। आक्रमण न करने का रूपांतर अहिंसा ही होता है। महात्मा बुद्ध ने पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनमें से पहले शील का अर्थ है कि मैं अहिंसा की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध और पंडित नेहरू दोनों के पंचशील की यही पुकार थी कि संसार में हिंसा नहीं होनी चाहिए, तभी विश्व शांति संभव है। महात्मा बुद्ध का पंचशील शक्ति को लक्ष्य बनाता था और दूसरा विभिन्न राष्ट्रों को लक्ष्य करके उद्भासित है। धरातल से युद्ध की विभीषिका को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे, प्रेम और अहिंसा द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों पर अमल भी किया और ये नितांत सफल सिद्ध हुए। ग्रेट ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली और निरंकुश शासन से भारत स्वाधीन हुआ। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा का जन्म होता है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र पारस्परिक द्वेष भाव के स्थान पर प्रेम की भावना जागृत करे। विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि किए बिना शांति विश्व में स्थापित नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरिया और मिस्र युद्ध को रोककर विश्व शांति को भंग होने से बचाया। इराक में क्रांति द्वारा प्रजातंत्र की स्थापना की गई। साम्राज्यवादी राष्ट्र ब्रिटेन और अमेरिका ने इसका विरोध किया और अपनी सेनाएं लेबनान और जॉर्डन में भेज दी। विश्व शांति तृतीय विश्व युद्ध के रूप में भंग होने वाली थी, परंतु पंडित नेहरू और उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री खुश्चेव ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से अहिंसा के द्वारा युद्ध रोकने का पूर्ण प्रयास किया और उन्हें अपने प्रयासों में पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई। पंचशील और अहिंसा के सिद्धांतों पर भी लगभग 2 दशकों के अंतराल के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्री ने 12 फरवरी 1978 से 20 फरवरी 1979 तक चीन यात्रा करके पारस्परिक सीमा विवादों को स्नेह और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलझाने के प्रयत्नों का सूत्रपात किया। 17 फरवरी 1979 को सहसा चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण 2 मार्च 1979 तक रहा। इस बीच भारत ने अहिंसा के आधार पर विश्व शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 25 फरवरी 1979 को शांतिपूर्वक आपसी मतभेदों को दूर करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार अहिंसा से विश्व शांति के मार्ग को प्रशस्त किया। इससे पूर्व कंपूचिया पर वियतनाम द्वारा आक्रमण करवाई के समय भी अहिंसा और पारस्परिक सौहार्द का मार्ग ही खोजा गया था। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव

0: नहीं बिना संभव है, क्योंकि समय समय पर युद्ध की चिंगारियों का विस्फोट कहीं ना कहीं होता ही रहता है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग उसे ही कहा जाता है जहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा है। यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी ही होगी, तभी विश्व में एक सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। किंतु अहिंसा का अर्थ कायरता कभी नहीं होना चाहिए। आज विश्व स्तर पर जो आतंकवाद चल रहा है उसके उपचार के लिए बल प्रयोग न करना कायरता होगी। कारगिल में स्थिति हमारे पड़ोसी देश ने उत्पन्न कर दी थी, यदि उसका प्रतिपाद न किया जाता तो भारत न केवल कलंकित होता अपितु अपने विभाग से हाथ धो बैठता। इसी प्रकार अफगानिस्तान में यदि तालिबान सत्ता को ध्वस्त न किया जाता तो कदाचित पूरा विश्व आतंकवादियों से त्रस्त हो जाता। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए सभी राष्ट्र आपस में सहनशीलता पूर्वक जीवन व्यतीत करें तथा सहअस्तित्व के सिद्धांत का पालन करें, तभी विश्व के समस्त राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि आज विश्व शांति के लिए वैश्विक उपाय महात्मा गांधी जी के सत्य अहिंसा करुणा प्रेम विश्व बंधुत्व अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाना ही है। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में अहिंसा का प्रयोग किया, वे अहिंसा के सच्चे पुजारी थे। उन्होंने अपना प्राणहर्ता तक को भी क्षमादान दिया था। भारतवर्ष आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा है। विश्व भी यदि उनके बताए मार्ग पर चला तो अवश्य ही वह महायुद्धों की विभीषिकाओं से अपना त्राण पा सकता है। ठीक ही कहा है, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें विश्व मानव के प्रति प्यार नहीं।
1: हाँ, ओ हृदय नए पत्थर छे जकरा विश्व मानव के प्रति छे प्यार नहीं छे।
2: बिल्कुल,
1: तो विश्व शांति के प्रति सबका सजग हो करी का काम करना छे है, सबका सोचना छे। और यही एक वैश्विक उपाय भी छे विश्व शांति स्थापित करे वास्ते। आ जब विश्व शांति स्थापित होता तो समझिला कि फैनू सब कुछ बढ़िया होते और सब आपस में प्रेम और भाईचारा के साथ रह करी का प्रगति के रास्ता पर आगे बढ़ते। तो इतना अच्छा वार्ता वास्ता वार्ताकार विजय कुमार धावक जी का बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए।
2: और जानते हैं हाँ। अगलू भाई, जब हम लोग शांति के साथ रहेंगे तभी जो है कि पूजा पाठ देवी गीत भजन झूमर सुनने में मन भी लगेगा। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक देवी गीत।

0: AIR@90.
1: संदेश का सुनला के बाद अब जैसे कुछ मौसम सूचना और कृषि समसामयिक सलाह भी होना चाहिए।
2: बिल्कुल,
1: क्या कि अगर मौसम के सूचना अगर पहना मिल जाए छे सब भाई बहन का तो वो अच्छा रहे छे कि जे भी ये काम करना छे वो सचेत होकर करे छे।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो चलो बिना देरी कर लो हम असनी अब मौसम सूचना आरु कृषि समसामयिक सलाह अपनो श्रोता भाई बहन को दे दी छे।
2: बिल्कुल,
1: तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 3 से 7 जून के दौरान जिला के अधिकांश भाग में मौसम शुष्क रहे के संभावना छे। ज्यादा से ज्यादा तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और कम से कम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे के अनुमान छे। भोर में आरो सांझ में सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 65% और 20% के आसपास रहे के संभावना छे। अगला 2 दिन तक 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से पछिया हवा चले के भी संभावना छे, जबकि एकरो बाद पूर्वानुमान अवधि के शेष दिन में दक्षिण पूर्वी हवा चले के अनुमान छे।
2: बिल्कुल, और वहीं पे धान के फसलों के लिए किसान भाइयों को सलाह है कि लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे कि सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा BPT 5204 एवं राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी स्थापित करें और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद का व्यवहार करें और नर्सरी की क्यारी की चौड़ाई जो है 1.25 से 1.5 मीटर तथा लंबाई सुविधा अनुसार रखें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र

0: क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी तैयार करें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें। बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार अवश्य कर ले।
1: आरो मक्का वास्ते सलाह छे कि खरीफ मक्का के बुआई करीला खेत के जुताई में 10 से 15 टन गोबर के सड़लो खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करो। आरो बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर और 50 किलो पोटास के व्यवहार करना छे। अनुशंसित मक्का के किस्म छे ओकराम जे इसने आवे छे ओकराम नाम छे सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11।
0: और वहीं पे मूंग के फसलों के लिए भी सलाह है अखलू भाई कि पिछात मूंग की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफ़ेद मक्खी व थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। बचाव हेतु डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।
1: और सब्जी वास्ते सलाह छे कि भिंडी में माइट और फल और तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसल में फल मक्खी के प्रकोप के नियमित निगरानी करो है किसान भाई का सलाह दिलो जाए छे। माइट के प्रकोप अगर दिखाई पड़े तो एथियन 1.5 से 2 मिलीलीटर पानी के छिड़काव मिलाकर करना छे। भिंडी में फल और तना छेदक के प्रबंधन के वास्ते डाइमेथोएट 30 ईसी प्रति 1.5 मिलीलीटर पानी के छिड़काव करो। कद्दू वर्गीय फसल में फल मक्खी के नियंत्रण के वास्ते डाइमेथोएट 30 ईसी प्रति 2 मिलीलीटर 10 ग्राम चीनी प्रति लीटर पानी में मिलाकरी का छिड़काव करो तो अच्छा होता।
0: बिल्कुल। और वहीं पशुपालक भाइयों के लिए भी सलाह है कि गलघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें।
1: और मौसम चेतावनी के संभावित प्रभाव का देखते हुए है सलाह दिलो जाए छे कि आंधी, बिजली और तेज हवा से ऊंचा फसल के गिरे के आशंका छे। तो किसान का खेत के कार्य स्थगित करे और फसल और पशु का सुरक्षित रखे के सलाह दिलो जाए छे।
0: बिल्कुल। और वहीं पे बरसाती भिंडी की खेती के लिए हम विस्तार पूर्वक जानकारी अपने श्रोताओं को देंगे एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से। आइए सुनते हैं और वार्ताकार हैं डॉक्टर विनोद कुमार।
2: महत्वपूर्ण सब्जी है जिसका उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यह गर्मा एवं बरसाती मौसम की सब्जियों में प्रमुख रूप से उगाई जाती है। भोजन में प्रयोग करने पर इसमें विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन एवं खनिज प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसके जड़ एवं तना प्रयोग करने से गुड़ की सफाई तथा चीनी की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके तने के रेशे छिलके का प्रयोग पेपर मिल में करते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे वर्ष की जा सकती है, परंतु हमारे राज्य में इसकी व्यवसायिक खेती उन्नत ढंग से किसान कर रहे हैं, जिसमें बरसाती भिंडी की खेती प्रमुख स्थान है। जलवायु एवं मिट्टी, भिंडी लंबे एवं गर्म मौसम वाली फसल है। इसकी फसल के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम सबसे अच्छा रहता है। भिंडी की अच्छी उपज प्राप्ति के लिए गर्म, लंबा एवं नमी युक्त मौसम होना चाहिए। ये सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है, लेकिन भूमि भुरभुरी एवं होनी चाहिए तथा जिसका पीएच 6 से 6.8 हो, लेकिन ये अम्लीय भूमि में भी अच्छी तरीके से उगाई जा सकती है। भिंडी की उन्नत किस्में पूसा मखमली, पूसा सावनी दोनों किस्में बरसात एवं गर्मा मौसम में उगाई जाती हैं, जिनके फल 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे, हरे, कोमल एवं रोमा रहित होते हैं तथा इससे 100 से लेकर 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। बरसाती फसल हेतु परवनी क्रांति सिलेक्शन 8-10 KS 312 आदि प्रमुख हैं, जो लगभग 90 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त करती हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब 7, वर्षा उपहार, अंकुर 41, पंत भिंडी 1, BRO 5, BRO 6, BRO 22, काशी लालिमा सिलेक्शन 101 भिंडी की प्रमुख किस्में हैं। भिंडी की कुछ हाइब्रिड या संकर प्रजातियां जैसे सोनाक्षी, भवानी, कृष्णा, हाइब्रिड 6, हाइब्रिड 8, इंद्रानील एवं अनोखी इत्यादि हैं, जिनकी खेती आसानी से की जाती है एवं 45 से 50 दिनों बाद भिंडी की तुड़ाई शुरू हो जाती है। खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करके, जिसमें खरपतवार अच्छी तरीके से सूख जाते हैं या दब जाते हैं। दूसरी एवं तीसरी जुताई कल्टीवेटर से करें तथा साथ में 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में मिला दें। अंतिम जुताई के समय नेत्रजन की आधी मात्रा, स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा खेत में मिला दें और जुताई करने के बाद पाटा चलाकर भूमि को भुरभुरा एवं समतल कर लेना चाहिए। नेत्रजन की शेष आधी मात्रा 25 से 30 दिन एवं 50 से 55 दिनों बाद दो बार पौधों की जड़ों के पास मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देना चाहिए। बीज एवं बुआई, बरसाती भिंडी की बुआई हेतु 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत पड़ती है तथा बोने के पहले बीज का उपचार 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से थिरम या कैप्टान या बेवेस्टिन नामक रसायन से अवश्य प्रयोग करना चाहिए, जिससे फफूंदी जनित बीमारी का प्रकोप कम लगता है। बुआई का समय, खरीफ मौसम में बरसाती भिंडी की बुआई का समय जून से जुलाई माह अच्छा माना जाता है। बुआई की विधि, भिंडी के बीजों की बुआई सीधे खेत में की जाती है। यदि खेत में नमी की मात्रा कम हो तो बोने से पहले 24 घंटे पानी में बीज को भिगोकर तथा अंकुरण कराकर करनी चाहिए। खेत के में बीजों की बुआई 50x30 सेंटीमीटर की दर से, जैसे जिसमें कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर पर करना चाहिए। एक स्थान पर एक या दो बीजों की बुआई करनी चाहिए। बीज की बुआई से पूर्व खेत में मेड़ एवं नाली सिंचाई के लिए अवश्य बना लें तथा बीज की बुआई की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर पर करें। खाद एवं उर्वरक प्रबंध, भिंडी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए संतुलित एवं उचित उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी जाँच के आधार पर करना चाहिए। इसकी खेती में 150 किलोग्राम या 150 से 200 किलो क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद या 60 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर केचुआ खाद या 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया, 250 से 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सिंगल सुपर फास्फेट तथा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। निकाई गुड़ाई या खरपतवार प्रबंध, बरसाती भिंडी की फसल में 1 से 2 निकाई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है, जिसमें प्रथम निकाई गुड़ाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद तथा दूसरी 45 दिन के बाद करनी चाहिए, जिससे खेत में उगने वाले खरपतवारों को आसानी से रोका जा सकता है तथा फसल की बढ़वार अच्छी होती है। सभी पौधों को एक समान रूप से पोषक तत्व, जल, हवा एवं सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता बनी रहती है। यदि खेत में खरपतवारों की समस्या अधिक हो तो इसके लिए रासायनिक विधि से खरपतवार रोकथाम के लिए एलाक्लोर या लासो नामक रसायन 2 लीटर प्रति हेक्टेयर को 600 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 2 से 3 दिन तक छिड़काव करना चाहिए। सिंचाई प्रबंध, भूमि में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है, अतः बरसात के मौसम में आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिए तथा सिंचाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भूमि में जल जमाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अधिक वर्षा होने पर जल निकास का प्रबंध अवश्य करें। कीट व्याधि प्रबंध, भिंडी में फल एवं तना भेदक कीट का प्रकोप के लिए इंडेक्साकार्ब तरल दवा 2 मिलीमीटर या डाईमेथोएट 30 EC तरल दवा का 1.5 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे प्रकोप कम होगा। भिंडी का लाल बग कीट के बचाव हेतु डाई मिथोएट 30 EC दवा का 1.5 मिलीमीटर प्रति लीटर जल में घोल कर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। लाल मकड़ी या माइट की रोकथाम के लिए गंधक की बारीक धूल 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बुरकाव करें या डाइकोफाल 18.5 EC का 3 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में फसल पर घोल करके फसल पर छिड़काव करें। जैसिड कीट की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरपिस 17.8 SL का 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें या नीम बीज चूड़ 4% का 3 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतर पर 5 बार छिड़काव फसल पर करना चाहिए। पीत सिरा मोजेक रोग या रोग सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है, इसकी रोकथाम के लिए नुमाकरान 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। एवं रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें। पत्ता धब्बा रोग के बचाव हेतु बीज उपचार करके फसल को बोना चाहिए, जिसमें कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर छिड़काव करना लाभदायक रहता है। फसल चक्र तथा अंतर्वर्ती खेती, सामान्यतः 1 वर्षीय फसल चक्र में शकरकंद, भिंडी या भिंडी, पात गोभी, लौकी को उगाया जाता है। इसी तरह 2 वर्षीय फसल चक्र में टमाटर, साग, भिंडी, फूल गोभी, लौकी को उगाया जाता है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में भिंडी के साथ आलू, मटर, बैंगन, मकई, फूल गोभी, साग इत्यादि को आसानी से उगाया जाता है। तुड़ाई एवं उपज, सामान्यतः भिंडी की फसल की तुड़ाई लगभग बुआई के 50 दिनों के बाद शुरू हो जाती है। इसकी प्रत्येक तुड़ाई तीसरे या से 5वें दिन भिंडी की तुड़ाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार उत्तम वैज्ञानिक ढंग से बरसाती भिंडी की खेती करके कृषक 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भिंडी की उपज प्राप्त कर सकते हैं।
1: हाँ तो लाखों भाई,
0: बिल्कुल
1: किसान भाई ना अगर है वार्ता का ध्यान से सुन लो होते तो उनका बहुत फायदा होते कि बरसाती भिंडी के जे खेती करते तो ओकरा केना करना छे जे कि ओकरा ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ हुआ छे कि नहीं।
0: बिल्कुल,
1: और बरसाती भिंडी के खेती करे वास्ते अभ्यास ना ओकरा जैसे खेत की तैयारी करनी पड़ते।
0: बिल्कुल, यह जो जून जुलाई का महीना होता है अकलू भाई, इसी समय इस बरसाती भिंडी की खेती की शुरुआत की जाती है। और सबसे जरूरी बात, बरसा के दिनों में इसकी होती है खेती, तो वर्षा का पानी आपके खेतों में जल जमाव की स्थिति ना हो जाए, इसके लिए जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हमें अपने खेतों में करके रखनी पड़ेगी।
1: आरु एक बात लाखो भाई है, भिंडी के जो गाछ हो ना, पौधा जो हो एकदम एक चीज आरु हम खूबी देखे छे कि जब तक कि पूरा फुनगी तक हो नहीं डूबिस था तब तक है पौधा मरे नहीं छे।
0: बिल्कुल,
1: कितना अच्छा बड़वा छे कि है आप, चूंकि अपना सीखे जो क्षेत्र छे वो बाढ़ वाला क्षेत्र छे के, तेना खेत में बाढ़ के पानी अगर फंसी जाए छे और खेत में भिंडी के अगर फसल लागलो छे तो तब तक उ नहीं मरते गाछ जब तक कि पूरा तरीका से पानी में डूबलो रहते नहीं।
0: बिल्कुल,
1: है भी अच्छा बात छे, यो सोची कर छे खेती करना चाहिए भिंडी के।
0: बिल्कुल, और खासकर खेतों में जो है कि आप प्रति एकड़ 4 से 5 टन यदि गोबर की खाद प्रयोग करते हैं, जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं, तो और भी अच्छी बात है।
1: तो इतना अच्छा वार्ता, वास्तव वार्ता का डॉक्टर विनोद कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद दे छिए। और जब कि खेत लहलाए थे तो मन भी लहलाए थे, और जब मन लहलाए थे खुशी से तो झूमे के मन करते, तो जब मन खुशी से झूमते तो गीत लात तो सुनबे न करबो।
0: बिल्कुल,
1: चलो सब मिली कर सुनै छिए निमन रंग झूमर।

0: हाँ अखलू भाई, और अब आज का कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। सबको लाखों का नमस्कार।
1: आरो देखो कि अभी मौसम बड़ा खुशगवार हो गेलो छे, तेनामे सबका अपना स्वास्थ्य के भी ख्याल रखना छे। तो सब खुश रह, सुख रह, शांति से रह, यही कामना के साथ सबसे लिए विदा। सबका अकलू के नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने ही वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत नई दिल्ली में केंद्र और झारखंड सरकार के बीच हुआ MOU। नियमों के अनुपालन पर मिलेंगे 2500 करोड़ रुपए। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। सत्ताधारी JMM कांग्रेस गठबंधन और विपक्षी भाजपा खेमे में। उम्मीदवारों के नामों पर अब भी सस्पेंस बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और जनहित की योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 15 जून तक हर हाल में मतदाताओं की मैपिंग पूरी करने के दिए निर्देश। कम मैपिंग वाले BLO को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। और हॉकी इंडिया ने न्यूजीलैंड में होने वाले महिला नेशंस कप टीम का किया ऐलान। झारखंड की 3 खिलाड़ियों को मिली जगह। सिमडेगा की सलीमा टेटे संभालेंगी भारतीय टीम की कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जल जीवन मिशन 2.0 के तहत झारखंड सरकार और केंद्रीय मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र से 6500 करोड़ रुपए की लंबित राशि की मांग की, जबकि केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने मानकों के अनुपालन पर 2500 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को नियमित निगरानी और 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा के निर्देश दिए गए। बैठक में 1400 करोड़ के ओवरसाइज्ड घटकों की समीक्षा करने और JJM के प्रबंध निदेशक का पद संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपने की सिफारिश की गई। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी दोनों ही खेमों में आम सहमति बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व जल्द ही अंतिम नामों की घोषणा कर सकता है। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दावा किया है कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी उनकी जीत तय है।
2: केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद हमारे उम्मीदवार की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन वो उम्मीदवार होगा जो 100% का भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता होगा और पूरे तरीके से दमखम से चुनाव लड़ेगा। भाई आंकड़े हमारे पक्ष में बिहार में भी नहीं थे, लेकिन लोगों ने अंतरात्मा की आवाज और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है उसके आधार पर दिया। यहाँ तो विप भी जारी नहीं होता है, तो हमारे जो उम्मीदवार है वो सारे वोटर्स के पास जाएंगे, अपना वोट मांगेंगे, अपना विजन बताएंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी के दावों पर सत्ताधारी गठबंधन ने पलटवार किया है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने नैतिकता को ताक पर रखकर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है।
3: यहाँ उनके कुत्सित प्रयास सफल नहीं होंगे। नैतिकता को ताक पर रख के उन लोगों ने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। कहाँ लाएंगे विधायकों की संख्या, खरीद फरोख्त, पैसे के बल पर राजनीति करेंगे, झारखंड को दागदार करेंगे, वो सब नहीं चलेगा। ये झारखंड है, फुल प्रूफ रणनीति है हेमंत सोरेन जी की, इंडिया गठबंधन का दोनों उम्मीदवार जीतेंगे।
1: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। रांची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश ने महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार, और जिस तरह से इन 12 वर्षों में देश की सेवा उन्होंने की है, लगातार लोगों की सेवा के लिए वो कृत संकल्पित है, और अंत्योदय को लक्ष्य मानते हुए 4 आयाम, युवा, महिला, गरीब और किसान, उनके लिए निरंतर योजना बनाना, उस योजना का लाभ उन तक पहुंचे, उसके लिए उन्होंने काम किया।
1: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने देश की वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की मांग की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने नीट और CBSE परीक्षाओं में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले की जाँच रिपोर्ट जल्द महालेखा

आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने CBSE में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया में गड़बड़ी के विवाद के बाद बोर्ड अध्यक्ष और सचिव को पद से हटा दिया है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। वहीं साइबर हमले के बावजूद बोर्ड का री इवैल्यूएशन पोर्टल सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और पहले ही दिन 16,000 से अधिक छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। गढ़वा के नक्सल प्रभावित रहे बूढ़ा पहाड़ से CRPF हटाने की तैयारियों पर राज्य के

0: और पहले ही दिन 16,000 से अधिक छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। गढ़वा के नक्सल प्रभावित रहे बूढ़ा पहाड़ से सीआरपीएफ हटाने की तैयारियों पर राज्य के वित्त के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लंबित फॉर्मों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से ना छूटे। श्री कुमार ने कम मैपिंग वाले बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण देने की बात भी कही।
1: निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी अन्य पदाधिकारी के साथ में बैठक हुई, उसमें कुछ सेलेक्टेड बीएलओ का भी हम लोग आमंत्रण किया था, उनका मैपिंग काम है। आज वो फेरेंडल मैपिंग के बारे में चर्चा की गई थी, उसमें अभी लगभग 76% के ऊपर मैपिंग हो चुका है, उसमें बचा हुआ 24% में कुछ एएसडीडी वोटर का भी उसमें शामिल है।
0: एडीजी मनोज कौशिक ने गुमला में रांची जोन के 4 जिलों की पुलिस के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने 3 वर्षों के लंबित मामलों, विधि व्यवस्था और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा की समीक्षा की। एडीजी ने महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों और पॉक्सो मामलों में त्वरित कार्रवाई और तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
2: विधि व्यवस्था एवं उसके अलावा स्पेशल क्राइम्स पे हम लोग एक रिव्यू किए हैं, जिसमें गुमला, लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा चारों जगह के ऑफिसर्स डिटेल्ड रिव्यू हुआ है। उसमें जो लास्ट 3 इयर्स में जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए थे तो उसकी डिटेल प्रोग्रेस हम लोग जांचे हैं, और जिन केसेस में एक्शन पेंडिंग थे तो उनमें एक्शन करने के लिए डायरेक्शन दी। उसके अलावा जैसे है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसके लिए स्पेशल डायरेक्शन दिया गया है सभी एसपी से।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं, जिसे जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार वीरता, खेल, समाज सेवा और कला संस्कृति जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। और अब मौसम का हाल। राज्य में कल संताल परगना को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में 40 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। न्यूजीलैंड में होने वाले FIH महिला नेशंस कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इसमें झारखंड की 3 खिलाड़ी सलीमा टेटे, निकी प्रधान और दीपिका सोरेंग को जगह मिली है। सिमडेगा की सलीमा टेटे को टीम की कमान सौंपी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत नई दिल्ली में केंद्र और झारखंड सरकार के बीच हुआ MOU। नियमों के अनुपालन पर मिलेंगे 2500 करोड़ रुपए। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। सत्ताधारी JMM कांग्रेस गठबंधन और विपक्षी भाजपा खेमे में उम्मीदवारों के नामों पर अब भी सस्पेंस बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और जनहित की योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 15 जून तक हर हाल में मतदाताओं की मैपिंग पूरी करने के दिए निर्देश। कम मैपिंग वाले BLO को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। और हॉकी इंडिया ने न्यूजीलैंड में होने वाले महिला नेशंस कप टीम का किया ऐलान। झारखंड की 3 खिलाड़ियों को मिली जगह। सिमडेगा की सलीमा टेटे संभालेंगी भारतीय टीम की कमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:13 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। कार्यक्रम में सुनिए वार्ता, विषय है विश्व पर्यावरण दिवस, नई उम्मीद नया संकल्प। वार्ताकार हैं अरविंद कुमार मिश्र।
4: विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति को समर्पित दुनिया भर में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। स्वस्थ पर्यावरण हमारे जीवन की रोजाना की जरूरत है, फिर भी हमें अलग से यह दिवस मनाकर पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास का संकल्प लेने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने

स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें 119 देशों ने भाग लिया था और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया गया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ तथा प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया तथा इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था। तभी से हम प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इसके अनुसार जल, वायु, भूमि इन तीनों से संबंधित जीव जैसे मानव, पौधे, सूक्ष्म जीव, अन्य जीवित पदार्थ आदि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। हम दिनों दिन पर्यावरण की समस्याओं में उलझते जा रहे हैं। वैश्विक उष्मता, ठोस अपशिष्ट, कचरा निष्पादन, जल संकट और अब ये मुआ पॉलीथीन। एक सवाल का निपटारा होता नहीं कि दूसरा यक्ष की तरह मुंह फाड़े सामने खड़ा हो जाता है। अब तो पर्यावरणीय समस्याएं हमारी जमा पूंजी हो चुकी हैं। यह अनुमान है कि अगर धरती के औसत तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक की बढ़ोतरी हो जाएगी तो हमारे ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से दुनिया के कई तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे, साथ ही कई द्वीप और द्वीपों पर बसे देश भी समुद्र के अंदर समा जाएंगे। 1990 से 2000 के बीच वैश्विक समुद्री जल स्तर 14 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है। आज ग्लोबल वार्मिंग न होती तो बढ़ोतरी आधी से भी कम होती। खाद्यान्न संकट गहराता जा रहा है। धरती का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से गेहूं में 70 लाख टन तक की कमी आ जाती है। सुख सुविधा अब भोग विलास बन गया है। वर्षा चक्र अनियमित हो ही गया है। पानी के लिए मारामारी हो रही है। वैश्विक उष्मता जैसी विकराल समस्या पर पिछले 2 दशकों में जलवायु परिवर्तन पर 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं, परंतु कोई ठोस नतीजा आज भी सामने नहीं आया है। सबसे पहले 1992 में रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने की दिशा में यह सबसे पहला सार्थक कदम था। 1997 में एक और बड़ा कदम उठाया गया। एक संधि के रूप में एक समझौता किया गया जो 2005 में प्रभाव में आया। इस संधि के तहत सभी देशों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर में 1990 में हो रहे ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन के तुलना में 5.2% की कमी करेंगे। परंतु उसके बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं आने पर जलवायु परिवर्तन पर और भी समझौतों की आवश्यकता बनी रही, खासकर कार्बन के उत्सर्जन को कम करने को लेकर, क्योंकि कार्बन गैसों का हिस्सा ही ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक है। 1750 से अब तक यानी औद्योगिकरण की शुरुआत के बाद धरती के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनका उत्सर्जन कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों, फ्रिज, AC आदि के प्रयोग से की वजह से धरती पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। उसका सीधा प्रभाव धरती के तापमान पर पड़ रहा है। हाल ही में दिसंबर 2015 में पेरिस में हुई COP की 21वीं बैठक में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए फिर एक जलवायु परिवर्तन समझौता हुआ, जिसमें वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर सीमित रखने पर एक व्यापक सहमति बनी। परंतु हमेशा की तरह विकसित देशों की विकासशील देशों पर दादागिरी यहाँ भी देखने को मिली और अमेरिका ने इस समझौते से अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि चीन के बाद अमेरिका ही ऐसा देश है जो सर्वाधिक 16.4% कार्बन का उत्सर्जन करता है। चीन दुनिया में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन 27.3% करता है, जबकि भारत सिर्फ 6.6% कार्बन उत्सर्जित करता है। इस संधि में कोयले, लकड़ी और ऊर्जा के अन्य पारंपरिक स्रोतों का इस्तेमाल न कर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों तथा ऊर्जा के नवीन स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। समय के साथ साथ समस्याएं भी विकराल होती जा रही हैं और साथ ही हमारी सोच भी। पहले हमारे दिमाग से वेद, पुराण, हरियाणी और वृक्षारोपण जैसे ही नारे उपजते थे, तो अब उनकी जगह नए शब्दों ने ले लिया है, जैसे नदियों का संरक्षण, गैस रिसाव, हवा में जहर, पहाड़ों के खनन, वाहनों का धुआं, प्लास्टिक मुक्त वातावरण, कचरे का निष्पादन, समुद्र में कचरे का जमाव, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी कचरा, रासायनिक खाद और कीटनाशक, बिजली की कटौती, ऊर्जा संरक्षण, तालाबों और नदियों का पुनर्जीवन। आज समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक जमा होता जा रहा है और इसके लिए दुनिया के बस मात्र 5 देश सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं।
प्लास्टिक के गले हुए चूर हवा के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जमा हो रहे हैं। मछलियां और अन्य जल जीव जल पर तैरते इन कणों को अपना भोजन समझकर खा रहे हैं और उनके माध्यम से यह प्लास्टिक हमारे पाचन तंत्र में जा रहा है, जो कैंसर, दमा, थायराइड, प्रजनन तंत्र, चर्म रोग जैसी बीमारियों को पैदा कर रहा है। हमें इन बातों का पता भी नहीं लग पा रहा है। यह एक साइलेंट किलर की भूमिका निभा रहा है प्लास्टिक। इस प्लास्टिक की वजह से हमारा भूजल स्तर प्रभावित हो रहा है, मिट्टी और मवेशियों तक को बांझ बना रहा है यह प्लास्टिक। विश्व पर्यावरण दिवस आते ही हम फिर एक बार सक्रिय हो जाते हैं। गोष्ठियां कार्यक्रमों की झड़ी लग जाती है, अखबारों के पन्ने हरियाली से रंग जाते हैं। इनमें से कुछ उन पन्नों को सहेज कर भी रख लेते हैं और गजब की आपाधापी मच जाती है। हम सोचते हैं, जानते हैं, मगर समझने और मानने को तैयार नहीं हैं। पर्यावरण संकट समाधान के दायरे से बाहर होता जा रहा है। चाहे वो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो, पेयजल का संकट हो, ठोस अपशिष्ट यानी कचरे का निष्पादन हो, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण हो, पिघलते ग्लेशियर हों, सूखती नदियां हों, भरते तालाब हों, जेनेटिकली मॉडिफाइड या संकर प्रजातियों के बीज, फसल, सब्जियां हों, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग हो, जंक फूड का प्रचलन हो, कारों का धुआं हो, गर्द का गुबार हो, भूकंप से तबाही हो, डीजे जैसे कानफोड़ू बाजों का शोर हो, एयर कंडीशन संस्कृति की आदत और प्राकृतिक पर्यावरण से दूर रहने के कारण शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे घटती जाती हो, देसी और स्थानीय पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, औषधि प्रजातियों का विलुप्त होना हो, बिकता पानी हो, फेंकी जा रही पानी की बोतलें हों, पॉलीथीन का बढ़ता शाप हो, बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थ के माध्यम से भी प्लास्टिक का घुलता जहर हो, हिमालय के शिखर पर भी बढ़ता कचरे का ढेर हो, पहाड़ों पर भी नदियों के रास्ते बंद कर उन पर बनते भवन और होटल हों जिनके कारण केदारनाथ के जैसे सैलाबों का कहर बरसता हो, पर्यटन के नाम पर जमीन को कंक्रीट में परिवर्तित किया जा रहा हो और कितनी जैव विविधता को समाप्त किया जा रहा हो, चौड़ी चौड़ी सड़कों का जंगलों के अंदर से जाल बिछाया जा रहा हो, विद्युतीकरण के नाम पर बड़े बड़े टावर और तारों का जाल बिछाया जा रहा हो, पवन चक्कियां भी हवा में उड़ने वाले पक्षियों तथा अन्य जीवों के लिए घातक सिद्ध हो रही हों, जितना भोजन हमें मिलता है उसका एक बड़ा प्रतिशत सड़कों और नालों में फेंका जा रहा है, नदियों में बड़े बड़े यात्री और मालवाहक जहाजों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। जैसे अनेक संकटों से हम जूझ रहे हैं। रोज सैकड़ों कार्यशालाओं, व्याख्यानों एवं कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इन आयोजनों पर भी अनाप शनाप पैसे खर्च हो रहे हैं, परंतु नीतियां बनाते समय ऐसी समस्याओं की स्पष्ट अनदेखी हो रही है। हम सब इस बात से भी चिंतित नहीं हैं कि चीन की राजधानी बीजिंग में अति जल दोहन के कारण प्रतिवर्ष 11 सेंटीमीटर धनसान हो रहा है। हाल ही में पहाड़ों के खनन को फिर से बढ़ावा देने के मुद्दे पर हमें फिर से विचार करने की जरूरत है कि यह सही है कि इससे बेरोजगारों को कुछ रोजगार तो मिलेगा, लेकिन इससे हमारा पर्यावरणीय नुकसान कितना होगा, इसे भी हमें समझने की जरूरत है। हम ये देखें कि रोजगार के अन्य विकल्प कैसे मुहैया कराए जा सकते हैं और इस मुहिम में हम भी सरकार का साथ दें। हम इन बातों को महसूस करें कि कम से कम सुविधा में हम कैसे अपने जीवन को सुगम रूप से निर्वाह कर सकते हैं। पर्यटन का दबाव प्राकृतिक क्षेत्रों में लगातार बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक झीलों, जंगलों की सफाई कर उन्हें उद्यान और सैरगाह बनाया जा रहा है। क्या होगा हमारे वन्य जीवन का, पशु पक्षियों का? देश में अभी 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा राष्ट्रीय उच्च मार्ग बना हुआ है, इसके बावजूद ऐसी सड़कों का जाल बुनना जारी है। नतीजा स्पष्ट है कि वन्य जीवों से मानवों का टकराव बढ़ता जा रहा है। हम उन्हें हिंसक बताकर मार डालने की अनुमति भी जारी कर दे रहे हैं। कुछ समय पूर्व ऐसे ही एक भटके हुए हाथी को मारना पड़ा क्योंकि लोगों ने उसको घेर लिया था, उस जानवर को आगे निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था और फिर एक और हाथी जो हाल ही में निकल कर आया था उसे भी मारने के विकल्प के बारे में विचार किया जा रहा था, परंतु उसको बचा लिया गया। बिहार में कोसी कदवा दियारा में दुनिया के स्टोर्क प्रजाति के सबसे दुर्लभ पक्षी गरुड़ प्रजनन कर रहे हैं। ठीक उनके प्रजनन करने वाले पेड़ों के नीचे से ही 4 लाइनों वाली सड़क का निर्माण जारी है। इसमें जरूरत है कोई चेतावनी देने की, सावधानी बरतने की जरूरत है, जबकि यह इन गरुड़ों के दुनिया के मात्र 3 प्रजनन स्थलों में दूसरा बड़ा ठिकाना है। कुछ खास लोग को कृषि भूमि
उपलब्ध करने के चक्कर में राज्य के बड़े बड़े जलाशयों और पक्षी आश्रयणियों को सुखा कर

0: पर उन्हें सिकोड़ कर समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। उन्हें कानूनी दायरे में समेट कर रखना होगा ताकि जिसके जो मन में आए, जैसे मन में आए, वह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न कर सके, उनका विनाश न कर सके। ऐसे प्रस्तावों को राज्य की उच्च स्तरीय बैठकों में भी लाना आवश्यक है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। विषय था विश्व पर्यावरण दिवस, नई उम्मीद नया संकल्प। वार्ताकार थे अरविंद कुमार मिश्र। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:25 होने ही वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आप भी लगवा ही दो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। सूर्य घर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमा पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की सभी पंचायतों और नगर निकायों में सहयोग शिविर का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में हुए शामिल। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटाया। राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त मदरसों की होगी स्थलीय जांच, प्रखंड स्तर पर जांच समिति का होगा गठन। और प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के बाद उमस भरी गर्मी का सिलसिला शुरू। 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ भभुआ सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए आज प्रदेश की सभी पंचायतों के साथ साथ पहली बार नगर निकायों में सहयोग शिविर आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले की अलग अलग पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और इसके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। हमारे शेखपुरा संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ तय समय सीमा के भीतर मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया।
1: शेखपुरा जिले के सामस बुजुर्ग पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री ने खुद लोगों की फरियाद सुनी। उन्होंने कहा कि जनता के समस्याओं को लटका कर रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
2: यदि आपने कोई आवेदन दिया, 10 दिन तक यदि कोई कार्रवाई हमारे कर्मचारी के द्वारा या पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया तो 11वें दिन उसको मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं नोटिस देने का काम करता है, और यदि 30 दिन में नोटिस की अवहेलना करता हो तो 31वें दिन वो स्वतः निलंबित हो जाता है। किसी का कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है।
2: कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं लोगों को। यदि सरकार और यदि पुलिस को कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो हमारी पुलिस 48 घंटे में उसको जवाब देने का काम हमारी पुलिस करने का काम करेगी। अपराधी किसी जात का नहीं होता, कुछ लोग इसको दिल पर लेते हैं। अपराधी किसी जात का नहीं हो सकता, किसी धर्म का नहीं, अपराधी अपराधी है साथियों।
1: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 53 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार।
0: शेखपुरा के बाद मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड की परसोनीनाथ पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 288 करोड़ रुपए लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इधर हमारे पटना संवाददाता ने बताया कि जिले की 31 ग्राम पंचायतों और 17 नगर निकायों के विभिन्न वार्डों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया।
3: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी नौबतपुर प्रखंड की खजरी पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस शिविर का मकसद सिर्फ आवेदन लेना नहीं बल्कि लोगों को तुरंत न्याय और राहत पहुंचाना है। उप मुख्यमंत्री ने शिविर में लोगों की शिकायतें सुनी। शिकायतों में भूमि विवाद, स्थानीय विकास योजनाओं, राशन कार्ड, सड़क निर्माण और प्रशासनिक शिथिलता से जुड़े मामले मुख्य रूप से शामिल थे। इधर पटना के रुकनपुरा में आयोजित सहयोग शिविर में स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था उपलब्ध थी। शिविर में आए लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें आवश्यक दवाई भी उपलब्ध कराई गई। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: सारण जिले के नयागांव आमी और फेरूसा पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव शामिल हुए। विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव सहयोग शिविर में मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उनका तबादला कर दिया है। यह कार्रवाई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सेवाओं की खरीद प्रक्रिया में सामने आई गड़बड़ियों और विवाद के बाद की गई है। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है जिसका नेतृत्व क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। इस समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपनी होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। यह पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: राज्य सरकार ने अनुदान प्राप्त मदरसों की स्थलीय जांच कराने के लिए प्रखंड स्तर पर 3 सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह कुंजियाल ने बताया कि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे, वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा प्रखंड मुख्यालय स्थित माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरीयतम प्रधानाध्यापक को सदस्य बनाया जाएगा। समिति को 10 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट, फोटो और अन्य साक्ष्यों के साथ जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि शिक्षा विभाग की बैठक में संस्कृत विद्यालयों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए भी एक समिति के गठन का फैसला किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। श्रीमती मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रावास योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रही थी।
5: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में 2 श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह देशभर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ग्रामीण विकास, सुशासन, जनभागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्मानित करेंगे। बिहार की भी कई पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। श्री कुमार बिहार विधानसभा सचिवालय के नेवा केंद्र में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के बाद एक बार फिर उमस भरी गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है।
4: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है।
3: बिहार संग्रहालय पटना में आज से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप का उद्घाटन महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने किया। एक रिपोर्ट।
5: 7 जून तक चलने वाले समर कैंप का उद्देश्य बच्चों को कला और संस्कृति से जोड़कर उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को टेराकोटा कला, मुखौटा निर्माण कला और कहानी लेखन कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
6: बिहार म्यूजियम में 2 विधाओं पे काम हो रहा है। एक तो मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला है, क्योंकि बिहार संग्रहालय के पास बहुत अच्छा संग्रह है मूर्तियों का, तो उनको पूरा घुमाया गया है, उनको जो अच्छा लगे वो बनाएंगे। दूसरा, बिहार संग्रहालय में जो चीज है उसको देख के कहानी लिखने की कला, तो उसे उसको देख के उनकी कल्पना खुले और क्या कहानी सोचते हैं वो उस समय के बारे में, और दोनों जगह पे अच्छे विशेषज्ञ को बुलाया गया।
5: समर कैंप में शामिल हो रहे बच्चों ने किताबी दुनिया से इतर उनकी कल्पनाओं को एक नया मंच मिलने पर प्रसन्नता जताई।
7: मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि तो हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, पॉटरी बना रहे हैं, बहुत सारे नए स्किल्स एंजॉय कर रहे हैं।
8: ये बच्चों को प्रोत्साहन करने का एक तरीका है, और अभी जो ये मैं टेराकोटा के लिए आया हूँ इसके लिए मैं उत्सुक, क्योंकि ये एक नया स्किल है जो मैं सीखना।
9: हम लोग कई तरह के चीजें सीखे और आर्ट सीखकर वैसे हम लोग को अभी पता चलता है कि पुराने जमाने में भी इंजीनियरिंग का काम होता था।
10: यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे मौर्यन गुप्ता में कैसे कॉपर कॉइन्स और उस टाइम के टेराकोटा पेंटिंग्स कैसे थे, वहाँ के आर्टिसंस कितने ज्यादा टैलेंटेड थे, कैसे हम लोग आज भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
5: आज के डिजिटल दौर में इस तरह के शिविर बच्चों की मानसिक और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही ऐसे आयोजनों से बच्चों में टीम वर्क और कौशल विकास की भावना भी मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
3: निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने बांका जिले के चांदन अंचल कार्यालय में पदस्थापित सर्वे अमीन आदित्य कुमार को 8,500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अमीन सर्वे के कागजात में अशुद्धियों को सुधारने के लिए शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। बक्सर में उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग 21 लाख रुपए मूल्य की शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत साहूगढ़ भातु टोला में पुलिस ने छापेमारी कर 258 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के उड़ोसरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक छात्र

0: की मौत हो गई। हादसे में दो अन्य छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत खिलाफतपुर गांव में रेलवे लाइन के नजदीक बिजली की तार की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गई। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बहेड़ी अंचल के राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र यादव को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय खेत बचाओ अभियान के तहत शिवहर जिले के हरनाही और शेखपुरा जिले के गोसाई मढ़ी गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की सभी पंचायतों और नगर निकायों में सहयोग शिविर का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में हुए शामिल। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटाया। राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त मदरसों की होगी स्थलीय जांच, प्रखंड स्तर पर जांच समिति का होगा गठन। और प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के बाद उमस भरी गर्मी का सिलसिला शुरू। 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ भभुआ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: इधर आइए। इधर
2: इधर
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
4: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है दरभंगा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मणिकांत झा।
5: दरभंगा जिले में विकास और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन की ओर से 18 प्रखंडों की 36 ग्राम पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में भारी संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिनका प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निष्पादन किया गया। पूरे अभियान को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं जनहितकारी बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि पिछले सहयोग शिविरों में विभिन्न शिकायतों से संबंधित कुल 3,764 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2,660 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि यह सहयोग शिविर आम जनता के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपनी समस्याओं को लेकर बिना किसी झिझक के इन शिविरों में आने की अपील की है। राज्य सरकार की ओर से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 5 जून तक विशेष स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिवसीय अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। उप विकास आयुक्त स्वप्निल ने सभी संबंधित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कर्मियों से इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी से ही हम एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में बहेरी प्रखंड के बनडेहली गांव में आयोजित 15 दिवसीय लोडिक महोत्सव 2026 का सफल समापन हो गया। महोत्सव के अंतर्गत 12 से 15 मई तक विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नामचीन कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य अब पूरी तरह संपन्न हो चुका है। रेल सुरक्षा आयुक्त के निरीक्षण और सफल ट्रायल के बाद सबसे पहले इस रूट से मालगाड़ी को गुजारा गया। इसके बाद अब रेल गाड़ियों का परिचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। जिले में नीली क्रांति को बढ़ावा देने और मत्स्य पालन को आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मत्स्य निदेशालय और बिहार एक्वाकल्चर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के संयुक्त सहयोग से जिले में मत्स्य पालन के समावेशी और दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। अभियान के प्रथम चरण में जिला मत्स्य पदाधिकारी अनुपम कुमार, राहुल कुमार और स्वाति चौधरी की उपस्थिति में जिले के 9 चयनित मत्स्य पालकों को उन्नत नस्ल के स्पॉन उपलब्ध कराए गए। जिला मत्स्य पदाधिकारी अनुपम कुमार ने बताया कि जयंती रोह और अमृत कतला वैज्ञानिक चयन प्रजनन तकनीकी से विकसित उच्च उत्पादन क्षमता वाली प्रजातियां हैं। सामान्य मछलियों की तुलना में इनकी विकास दर काफी तेज होती है, जिससे मत्स्य पालकों को कम समय में अधिक पैदावार और बम्पर मुनाफा मिलेगा। जिले में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार पूरी अकीदत, शांति और आपसी सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ। पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशील इलाकों सहित विभिन्न जगहों पर सुरक्षा के कड़े और चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रमोहन पासवान के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने कड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी ने वीडियो के 6 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान वीडियो पर करीब 89 लाख रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जो उनकी ज्ञात कानूनी आय से 81% अधिक है। जांच टीम ने दरभंगा, मधुबनी और केवटी स्थित उनके पैतृक घर, सरकारी कार्यालय और व्यावसायिक परिसरों की गहन तलाशी ली है, जहां से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को भीषण और उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है। हालांकि बारिश के साथ चल रही तेज आंधी और झोंकेदार हवाओं के कारण जिले के कई हिस्सों में पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने से जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है।
4: अभी आप सुन रहे थे दरभंगा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मणिकांत झा।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:52 मिनट हो रहे हैं। पेश है सुगम संगीत कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार हैं श्यामानंद झा। कार्यक्रम के प्रारंभ में इनसे सुनिए कबीरदास का लिखा भजन।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम सुरलहरी। अब सुनिए कलाकार श्यामानंद झा की आवाज में मीराबाई द्वारा लिखा भजन।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार हैं श्यामानंद झा। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बज रहे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में। फिल्म है सिर्फ तुम, गीतकार हैं समीर और इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
1: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए फिल्म क्रिस से, स्वर है सोनू निगम और श्रेया घोषाल का। बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क ने और इसकी धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोता, आप सुनिए अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में ये गीत। फिल्म है बादशाह। गीत की रचना की है समीर ने और इसे संगीत दिया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए फिल्म आजा नचले से। स्वर है राहत फतेह अली खान का, संगीत है सलीम सुलेमान का और गीतकार हैं जयदीप सहनी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म है दबंग, बोल लिखे हैं जली शेरवानी ने और संगीत है साजिद वाजिद का।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोताओं आप सुनिए फिल्म वीर से ये नगमा। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और सुनिधि चौहान की। गीत की रचना की है गुलजार ने और इसकी धुन तैयार की है साजिद वाजिद ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने ही वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्चन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता

0: एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉक सीरी नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2-3 ब्रांड्स ऑल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
5: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ।

0: अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने सीबीएसई की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का चेयरपर्सन मुकरर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरूनी मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज्यादा सारेफीन का संगे मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। और खवातीन क्रिकेट में आज रात टोंटन में तीसरे और आखिरी टी20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सीबीएसई की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम सिस्टम खिदमात की खरीद से मुतालिक मामलात की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की सरबराही सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन राधा चौहान करेंगी। कमेटी से अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अमले और तरबियत के महकमे को पेश करने को कहा गया है। तलबा को फराहम करदा स्कैंड कॉपियों में पाए गए मामलात के वेरिफिकेशन का अमल और 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच जारी है। ये सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा को दस्तियाब है जिन्होंने जांच किए गए अपने जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल की हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: सरपंचन अनासर की जानिब से लगातार साइबर हमलों की वजह से रुकावट के बाद सीबीएसई पोर्टल जल्द ही लाइव कर दिया गया है। ताहम सीबीएसई ने यकीन दहानी कराई है कि वो तलबा की हर तरह से मदद को यकीनी बनाने के लिए लगातार चौकसी बरत रहा है। सीबीएसई ने मजीद कहा है कि तलबा के फीडबैक की बुनियाद पर प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर किया गया है और सेशन टाइम में भी इजाफा किया गया है ताकि कामकाज को ज्यादा आसान तर्ज पर और बिला रुकावट तरीके से अंजाम दिया जा सके। सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच से मुतालिक उसका पोर्टल फिलहाल 8,000 से ज्यादा सारिफिन की मदद कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में सीबीएसई ने बताया है कि 16,000 से ज्यादा तलबा अब तक कामयाबी से अपने मंदरजात पेश कर चुके हैं। सीबीएसई का पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा और ऑफलाइन दरख्वास्तें या मुद्दत गुजरने के बाद दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: इस दौरान सीनियर आईएएस अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी तकरूरी राहुल सिंह की जगह हुई है जिनका बतौर एडिशनल सेक्रेटरी ज़िरात और किसानों की बहबूद के महकमे में तबादला कर दिया गया है। हुकूमत ने वरुण भारद्वाज को भी सीबीएसई में सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वो आला तालीम के महकमे में डायरेक्टर के फराइज अंजाम दे रहे थे। तकरीरों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने इन तकरीरात को मंजूरी दी है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाख्तियार बनने का ताकतवर वसीला है जो लोगों को खुद कफील, बाखबर और बासलाहियत बनाती है। सदर जमहूरिया आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफदीन से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हकीकी मायने में तरक्की तभी मुमकिन है जब माशरे के सभी तबकात समाजी, इकतसादी और तालीमी तरक्की करें।
2: जुबा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी जुबाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के जुबाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमों ने कबाइलियों की जिंदगी में यकसर तब्दीली लाई है और उनके लिए आला तालीम और नए मौके तक रसाई मुमकिन हो पाई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है और उन्होंने उसे फरोग देने के लिए उसकी निशानदेही करने, परवान चढ़ाने और सही मकाम अता करने पर जोर दिया।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता है। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आप जैसे अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के तहत भारत में खातिरख्वाह तब्दीली लाई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज खवातीन को बाएख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात के बारे में हम बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान भारत में खवातीन को बाएख्तियार बनाने के सिमत में नुमाया तब्दीली हुई है, जो हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। इन कोशिशों का मकसद खवातीन को सेहत, तालीम, रोजगार के मौके, माली शमूलियत और क़यादत के शोबों तक रसाई को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो 2015 में शुरू की गई थी, ने लाखों खवातीन को अपना कारोबार शुरू करने और इसे उसत देने के लिए बगैर जमानत के कर्ज हासिल करने के काबिल बनाया है। इस स्कीम के तहत रवा माली साल मार्च तक 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज मुस्तफिदीन को फराहम किए गए हैं, जिनमें से 17 लाख करोड़ रुपए खवातीन को दिए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसे अहम प्रोग्रामों ने मुश्तरका तौर पर खवातीन की बैंककारी, बचत और कारोबारी प्लेटफार्म तक रसाई को मजबूत बनाया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 33 करोड़ अकाउंट्स खवातीन के नाम है। दीपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि भारत और नेपाल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में किसी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं है। वजारत खारजा में तर्जमान रणधीर जायसवाल ने नेपाल के वजीर आजम की भारत नेपाल सरहद से मुतालिक रायजनी और उसके बाद नेपाल की वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरहद से मुतालिक मामलात के सभी पहलुओं से निमटने के लिए कायम शुदा बाहमी तरीक़ेकार मौजूद है। जनाब जायसवाल ने कहा कि हालांकि भारत नेपाल सरहद के तकरीबन 98% हिस्से की वाजह तौर पर हदबंदी हो चुकी है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर काम होना है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन मुश्तरका बयान में गैर जरूरी तस्करे को भी मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के सिलसिले में जिनकी खुद कोई हैसियत न हो, उन्हें कोई बात कहने से गुरेज करना चाहिए। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज कल से भारत के 4 रोजा दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके हमरा खारजी उमूर, इकतसादी व मालियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, मवासिलात व इत्तलात और नकल व हमल के महकमों के वज़रा भी होंगे। जनाब जायसवाल ने कहा कि मोहतरमा रोड्रिगेज अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दोतरफा बातचीत करेंगी। इस बातचीत में तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल, अद्वियात और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में इश्तराक के इम्कान तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मरकज ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक जाब्तों में तरमीमात को नोटिफाई कर दिया है। ये तरमीमात 180 दिन तक भारत आ रहे गैर मुल्की अफराद को मुल्क में अपने क्याम में तौसी की ख्वाहिश की सूरत में उन अफराद के वीज़े की मुदत खत्म होने से पहले रजिस्टर करने को मुमकिन बनाती हैं। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 को नोटिफाई किया है, जिसमें इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक जवाबित 2025 के तहत रजिस्ट्रेशन की मुदत और अपील मैकेनिज्म में अहम तब्दीलियां मुतारिफ कराई गई हैं। जाब्तों में पहली मरतबा ऑनलाइन अपील निज़ाम को जोड़ा गया है। किसी ऑर्डर से मुतासिरा कोई शख्स अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के कमिश्नर के पास ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकता है। ऑर्डर मौसूल होने के 30 दिन के अंदर अपील दाखिल करना लाजमी होगा। कमिश्नर को 60 दिन के अंदर मुतालिका फरीकों को सुनना और मामले को हल करना होगा। भारत ने फिजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरूनी मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO और भारतीय फिजाइया की जानिब से सभी अहम निजाम की सलाहियत को कायम रखते हुए ये आजमाइशी तजुर्बा किया गया। वजारत दिफा ने कहा कि इन मिसाइल को पहले से तयशुदा निशाने की जानिब दागा गया। चांदीपुर में मरबूत टेस्ट रेंज पर नसबशुदा मुख्तलिफ आलात की जानिब से परवाज से मुतालिक डेटा में इस बात की तस्दीक की गई है कि इस आजमाइशी तजुर्बे के सभी मकासद हासिल कर लिए गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय फिजाइया, दिफा से मुतालिक सरकारी कंपनियों, शराकतदारों और सनतकारों को इस उसूलियाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि इस कामयाब आजमाइशी तजुर्बे से अंदरूनी मुल्क तैयार करदा दिफाई टेक्नोलॉजियों की बढ़ती सलाहियत का इजहार होता है और जदीद हथियार निज़ाम के सिलसिले में आत्मनिर्भरता की जानिब ये अहम कदम है। प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने नवंबर 2024 में अपने आगाज के बाद से दो साल से भी कम वक्त के अंदर 1 करोड़ रजिस्टर्ड सारिफिन से तजावुज कर लिया है। इत्तिलात और नशरियात की वजारत ने कहा है कि इस संगी मील से अंदरूनी मुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा अख्तियार किए जाने की अक्कासी होती है जो नाजरीन को काबिल भरोसा और मुख्तलिफ तरह का मवाद फराहम करता है। 1,40,00,000 से ज्यादा डाउनलोड्स के साथ अब वेव्स OTT कंटेंट के सिलसिले में शराकतदारी को वसूल देने, इलाकाई और तालीमी मवाद को मुस्तहकम करने और मार्च 2027 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स के निशाने को हासिल करने पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर 24,000 से ज्यादा कंटेंट टाइटल्स, 15,000 घंटे से ज्यादा कंटेंट, 140 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स और 200 से ज्यादा रेडियो खिदमात दस्तियाब हैं। यकसां अदायगी के निज़ाम UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ मालियत के माशी लेन देन का इंदराज किया है। मालियाती खिदमात के महकमे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डिजिटल अदायगियों को अपनाने पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया है। रूस की जानिब से यूक्रेन की राजधानी कीव और दीगर यूक्रेनी शहरों पर रात भर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम अज कम 21 शहरियों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों में शहरी बुनियादी ढांचे और तवानाई के मराकज को निशाना बनाया गया। जनाब जेलेंस्की ने अमरीका से मजीद पेट्रियाट फिजाई दिफाई मिसाइलें फराहम करने की दरख्वास्त की। इस दौरान रूस की वजारत दिफा ने कहा कि ये हमले यूक्रेन की जानिब से किए गए हमलों के जवाब में किए गए हैं। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि सभी तयशुदा ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। आलमी मौसमियाती महकमे WMO ने सख्त इंतबाह जारी किया है कि एल नीनो का मौसमी निज़ाम तश्कील पा रहा है और तवक्को है कि ये इस साल दुनिया भर में शदीद मौसमी हालात पैदा करेगा। मौसमियाती इदारे के मुताबिक इस बात का 80% इम्कान है कि एल नीनो का मौसमी निज़ाम इस साल जून और अगस्त के दरमियान पैदा होगा और नवंबर तक बरकरार रहेगा। साइंसदानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली इसके असरात को मजीद शदीद बना देगी। हुकूमत ने फैसला किया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI को मरहलेवार तरीके से ख़त्म करके उसकी जगह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI का जामे निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। ये फैसला मुल्क के फरात ज़र और कीमतों से मुतालिक आदाद व शुमार के निज़ाम को जदीद बनाने और उसे आलमी बेहतरीन तरीक़ों से हम आहंग करने के लिए किया गया है। ख्वातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच आज रात इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। भारत ने चेम्सफोर्ड में खेला गया पहला मैच 38 रन से जीतकर और इंग्लैंड ने ब्रिस्टल में खेला गया दूसरा मैच 26 रन से जीतकर सीरीज को बराबरी पर ला खड़ा किया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरूनी मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज के दो साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज्यादा सारिफिन का संगी मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं और ख्वातीन क्रिकेट में आज रात टोंटोन में तीसरे और आखिरी टी20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
4: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है नाटक लोहा सिंह। नाटक के लेखक हैं रामेश्वर सिंह कश्यप और नाटक के प्रस्तुतकर्ता हैं श्याम सुंदर उस्ताद।

0: हाँ जजमान, कहना सोच में पड़ल बड़ा जीवस है कबीज के बगल में।
1: हसन बाबा, दंडवत वाला से लूट मारता है, बैठिए।
0: जय होके जय होके, एक बाल बनल रहे। ये बातें जजमानी कहाँ बड़ी?
1: उसको हाल मत पूछिए फाटक बाबा।
0: का है कुछ अनशन भैया का जजमान?
1: बुझे नहीं करता है कि खदेरन को मदर कहाँ से कहाँ तक मेम है और कहाँ से कहाँ तक मेमिन है। हम निमन बात करता है तो उहे इसको खराब लगता है।
0: हरिओम हरिओम, ये संसार के लिए जजमान मन बेदिल ना होके थे। शास्त्र के वचन हो कि होम करत हाथ जरेला, अर्थात नेकी करत होखे हान तबो न छूटे धर्म के बाण। तहार भलाई करे के आदत बा, तू भलाई कैले जा, आ जेकरा मुँह चमकावे के बा ओकरा के चमकावे दो।
1: आप तो जनबे करते हैं न फाटक बाबा कि हम देहात का विलेज में रहने वाली जनाना लोग के तरंग की खातिर आजकल कितना मेहनत करते हैं।
0: इहो कहे के बात बा जजमान, राजा भगीरथ जितना गंगा जी के सरग से धरती पर ले आवे खातिर तपस्वा कैलन, ओकरा से अधिका देहात के मेहरारू के तरंग की खातिर तू कैला जजमान।
1: तब
0: तू साबित कर देला कि काही न अबला कर सके कान समुद्र समाही। जनते रमनते सत्य देवता, ये वचन मंदोदरी रानी कुंभकरण से काले बाड़ी जे बाते।
1: यही खातिर खदेरन को मदर हमारा साथ कनेक्शन करती रहती है फाटक बाबा, गिरगिट का माफिक रंग चेंजर करती है।
0: हरिओम हरिओम, वृथा न जाय देवर की बानी, अर्थात अचंभा जरत बा तहार। साचे हूँ करत हाथ जरत साचे हूँ करत हाथ जरत बा तहार। अब बुझा था जजमान कि हाथे ना मोछो जो कर जाई।
1: यही कनेक्शन में फाटक बाबा एगो और भीतरिया कनेक्शन है जान जाइए जे।
0: अच्छा,
1: वही खातिर खदेरन को मदर हमारा साथ बादरेशन वाला दुर्घटक ना करती है।
0: वो कौन कनेक्शन जजमान?
1: अब हम कैसे कहें। अच्छा, हम पूरा खींचे आपको डिटेल में फरिया के सुनाते हैं।
0: हाँ सुनाओ सुनाओ, हम काग भूसुंती लेखा चोट खोल के सुनत बानी।
1: हुआ ई फाटक बाबा कि काबुल का सर्जेंट का मेमिन है, बहुते हाई कलौटी का बमपिलाट मेमिन है। वो एक रैन हमारा नैन का आगा सपना में कंटोप और खूर वाला जूता पहन के छछात प्रगट हो गया।
0: प्रगट हो गई? मेमिन तहरा सपना में जे बाते
1: है? अरे
0: गजब रे गजब, अजब रे अजब। अब बाकी का रहल आए के सब कही न जाए, का कहिए।
1: अब फटक बाबा, वो बमपिलाट मेमिन हमको आर्डर दिया कि लोहा सिंह काबुल का मोर्चा पर हम तुमको पिलाट पर पिलाट बिस्कुट का मुरब्बा खिलाया था, याद है कि नहीं? अब टाइम आ गया है कि तुम बिस्कुट का शरियत दो, तुम देहात के जनाना लोग के जगाओ, उनका पोजीशन हाई करो और नरेटी फार के गाओ। उठ जाग जनाना भोर भइल और रैन कहाँ जे सोवत है।
0: बहुत ज्ञान के बात बा, बहुत ज्ञान के बात बा। हाँ, मेमिन जी के उपदेश सुन के हमारा तीनों तिर रोक लौके लागल।
1: अब बताइए फटक बाबा, ये मेमिन काबुल के मोर्चा से यहाँ हमारा गांव तक कूच मार किया, हमारा सपना का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में घुसिया के आर्डर दिया, उसको आर्डर तमिल करना हमारा धर्म है कि नहीं?
0: एकदम एकदम, ये बात है कि बीच का बगल में कोना में। हाँ,
1: मेमिन का सिग्नल सुन के हमारा औंगी फटाक देख टूट गई फटक बाबा। हम देखता क्या है कि बगल के खटिया पर खदेरन को मदर सुता हुई है और उसको नाक डीजल का अंजन का माफिक बाजती है। जब वो पुकारने पर नहीं जागी सुनू तो हम एक बाल्टी पानी खदेरन को मदर पर उझिल दिया।
0: तो जजमानी जागी गई हुई है।
1: जाग तो गई महाराज, बाकी उसको बाद हमारू बहुत इंसल्टी की फाटक बाबा। हमारा इज्जत का सैंडबोर्ड पर खदेरन को मदर कौआ का माफिक लोल चलाती थी।
0: हरिओम हरिओम, जाय दो जजमान जाय दो। जजमानी के तनी मनी बात तो हाग भाग हो। एक आध हाली की हो सही।
1: एका ढाली का बात नहीं ना है फटक बाबा, रोज रोज ही है बदरेशन, डेली का डेली दुर्घटना।
0: रोज रोज?
1: हाँ।
0: कई दिन से?
1: 8 दिन से।
0: हरी ओम हरी ओम।
1: हम क्या करें फटक बाबा, हमारा सपना में रोज ठीक 12 बजे सार्जेंट का मेमिन मरक पहन करती हुई जनाना को जगाने का आर्डर देती है।
0: आ रोज तू जजमानी के बिछौना पर एक बाल्टी पानी रात में उजील दे लो, हाँ?
1: तो हम उसका बात कैसे करें और क्या कर सकते हैं हम?
0: ठीक है कहत बाड़, मेमिन के आर्डर ठहरा, उपाय का बाजे बचे?
1: बतियाई है आप ही, कदरन को मदर हमारा ऊपर जुलुम करती है कि नहीं करती है?
0: एकदम जुलुम बा, एकदम जुलुम बा, सवा 16 आना जुलुम बा जे बाते।
2: यजमान उपरोहित मिल के हमार खूब शिकायत होता ना।
0: यजमानी तू ए जा रहू जे बाते का बीच का बगल में है?
1: हमको फटक बाबा इसका यही बात पर मिंजाज का इंडिया गर्म हो जाता है और टेम्परेचर कड़कड़ाने लगती है। हमारा ऊपर दुश्मन का जसूस का माफिक निगरानी करती रहती है।
2: हमार बहनी रे उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, आपन गलती ना देखत चलल बाड़न शिकायत करे। अरे केहू के बात हम धूका लगा के ना सुनी, ये हमार आदते ना हा। हम तो राउर बोली सुन ली तो गोर लागे चले दी है ये फाटक बाबा, गोर लागे।
0: जय हो के जय हो के, दूधे ना पूतो घर मोटाई रहो, दंदनात रहो, ससनात रहो, हिंदी के बाड़ू नु
2: रे। वो जजमान संगे रह के केहू नीचे रह सकेला फाटक बाबा? 9 दिन से फाटक बाबा हमार प्राण संकट में पड़ल बा, बुखार सर्दी खोखी अंग अंग फाटक बाबा, के जाने इनका कबार पर कौन भूत सवार बाकी।
1: हाल भूत नहीं, मेमिन का आर्डर बोलो, हम इसको जगाने खातिर पानी उझलेगा तो खिसियाएगी, यह जनानी का धर्म है।
2: हमार बहनी रे खिसियाए के बात रही, हम खिसियाए ना फाटक बाबा।
0: आ, जरूर जरूर कहे ना जे बात है, खिसियाए के बात पर खिसियाबू ना तो का खुश हो
1: फाटक बाबा। मेमिन का आर्डर तमिल नहीं करें?
0: भला कहो तो मेमिन के आर्डर से बढ़ के भला कौन आर्डर बाजे बात है?
2: वो इनका पक्ष में मत बोली फाटक बाबा।
0: देखी बोला जजमानी कहा बोला रानी, कबो बोली ला।
1: आप हमारा पार्टी छोड़ के खदेरन को मदर के पार्टी में जाने का पॉलिटिक्स करता है आए? आप हमारा पार्टी के आदमी है कि नहीं?
0: जरूर है, जहाँ छाया तहाँ छाया।
1: तब दोनों साइड में डबल कनेक्शन मत कीजिए।
2: हाँ ये कुडल पीतल से केहू ना, ये नून डालल से दादी। हमार बहनी रे फाटक बाबा के दान दक्षिणा हम दी, भर भर लोटा चाह पियाई हम, जजमान के पार्टी में चल जाये।
0: कभी ना जजमानी कभी ना।
2: अरे राउर जजमान के तो मत मरा गई बा, दिमाग क्षण भंगुर हो गई है। काबुल के मोर्चा के मेमिन के हुकुम पर रोज रात के हमरा पर एक बाल्टी पानी उझेल देत बाड़े, हमरा हारमोनिया की बीमारी हो जाई तब।
1: एक बाल्टी पानी में फटक बाबा इसको हारमोनिया का बेरानी होके लागल। अरे मेढकी के जो खाम हो जाए उहे बहुत है, हारमोनिया का बेरानी बहुत हाई कलौटी का कास्टिक चीज है। वो करनैल के मेमिन के तब हुआ जब वो हमारा डर का मारे जाड़ा का रात में इनारा में कूद गई, सबके हारमोनिया होके गई।
2: ये रोज एक बाल्टी पानी उझलता रे तो हमार जीव खराब ना हुई। अरे जाड़ा के दिन बा भोरे नीमन जार परत बा, खैर राउर जे दयानत बा से करी, हम तो अपन कर्तव्य निभा जात बानी। अब देखी कि बुलाती भगजोगनी सब के जुलूस और मीटिंग में हरदम न धले रहता रे। अब गाय गोरु चौका बर्तन झाड़ू बहारू सब हमरे करे के बा, ऊपर से रोज रात के नवासो बारन अब बीमारो नहीं कौन पर देत। फटक बाबा एक जुलूम के कोनो बारा पार बा।
1: अरे मेमिन ई सब तुम ही लोग के फायदा खातिर मुँह हम करता है, देहाती नारी जागरण समिति तुम ही लोग के तरंगी का नू प्रोग्राम है जी, उसका सभापत्नी तो तुम ही नू है।
0: हाँ जजमानी, नारी जाति के उत्थाने खातिर जजमान तम्बू समयाना जलूस जंडी पटाका सब के चकाचक इंतजाम कैले बारन। हाँ तू ई नत भूलै हो कि तू नारी हो, जजमान लड़की के शिक्षा खातिर स्कूल बनौलन, सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण के इंतजाम कैलन।
1: फटक बाबा हरदम भूला जाती है कि नारी है, अब जे नारी पर अत्याचार करेगा हम उसका धुरछक छोड़ा देगा।
2: हमार मुन्नी रे सुतला मेहरारू के कपार पर रोज एक बाल्टी पानी उझलल अत्याचार ना हो सका है।
1: सुनते हैं ना फटक बाबा, सुनते हैं ना, सुनत पानी जे बात सुनही के परत बा। ई नारी फटक बाबा हमारा पर बेंग का बटन बोलती है, उहे खिसा है कि जिसको खातिर चोरी करें उहे कहे चोर।
3: हरिओम हरिओम
2: मलकाइन, हे मलकाइन हमार जान बचाई, हे मलकाइन। भाभी चुकनी, अरे भाभी चुकनी का भइल रे? अरे का भइल हो गुलाटी भैया, का भइल कुछ कहबो करबा जा, अरे बोल दे।
4: मलकाइन मलकाइन हमार जान बचा दी, मलकाइन हमरा से ई काम ना हो।
2: अरे का ना हो, साफ साफ बोल।
4: अरे मलकाइन घोड़ा पर चढ़े में हमरा बड़ी डर लगत बा मलकाइन।
1: ए गुलाकी बहुन भाई तनी मामला क्लियर करके सामने ले आओ।
3: अरे हमनी के दिन रात लाग के नारी जागरण वाला कार्यक्रम पूरा करत बानी, स्कूल के लड़का लड़की मास्टर मास्टरनी जी सब लोग काम में जुटल बा। केहू पोस्टर लिखता, कहूँ नारा लगत बा, कहीं स्वागत गान के तैयारी होता, आ कहीं झंडी टंगाता, आ कहीं झांकी सजावल जाता।
1: हम तुरंत जाके बुला के आप लोग के काम का चेक इन करेगा।
3: अरे का करबो, भाई भगजोगनी नु सब काम भर मंडिल कर दिलक, अब हम का कही।
1: कहे रे भगजोगनी, तुम दाल भात में मुसर चौन लेखा बद्रेशन करती है।
3: अच्छा बोली रौरे आगा ना भगजोगनी सकरले रहे कि जुलूस में रानी लक्ष्मी बाई के भेक धर के ये हाथ में ढाल और तरवार लेके चली घोड़ा पर। बोली अब संगे संगे जुलूस के मेहरारू लोग गाई कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी।
1: पाछा पाछा हारमोनियम के गावल जाई जी।
3: हाँ जजमान,
1: कितना बढ़िया सीनियरी होखेगी।
2: अरे तो अब कौन माछी छीक देलस कि बाधा पर गई हमार बहनी रे।
4: ए मलकाइन मलकाइन उ घोड़ा बहुत बड़ बा मलकाइन, हमरा से समझी कि एक पोरसा बड़। बाप रे बाप।
3: अब बताई अब आजे हम दोसर केकरा के तैयार करी।
4: बुलाकी मलिकार उतना ऊंच घोड़ा पर हम चढ़ब कैसे?
1: अरे फान के और कैसे, काबुल का मोर्चा पर कर्नल के मेमिन वाला फुर्ती दिखाओ, टप दे फन जाओ।
4: मलकाइन ये मलकाइन हमरा खातिर एगो छोट घोड़ा मंगवा दी।
2: अरे घोड़ा से छोट तो गधा होला, गधा में बैठवी।
4: गधा में ठीक रही।
3: अरे राम राम राम, ये कैसन बात करत बाड़ू बहनिया। अरे लक्ष्मी बाई खातिर बहुत बहुत सीनियर अरबी श्याम करण घोड़ा चाहिए कि ना? बोल। पूरा जवार में छाट के वो घोड़ा चुन के बड़ा मेहनत से ले लिया जा।
2: अच्छा।
3: बड़ा मनसोख घोड़ा है। लागेला अलफ लेबे अब पुस्तक मारे तो नीमन नीमन घोड़ सवारन के हवाई गुम हो जाला। हे पाहुन ये नूर रिसाला के सूबेदार अब्दुल खाओ के पोखरा में बिक दिल रहे।
5: अरे हम तो जेबा से होता ही नू रही। अरे कतना जना के हाथ गोड़ टूटल, कतना आदमी एक घोड़ा के सवारी में मुंह गईलन, एकर कोनो गिनती बा? अरे हवा हो हवा।
3: अरे वो मामूली ना तूफान में।
2: ओए मैया बुला के मलिकारा फाटक बाबा असही हमरा के डरवा डरवा के मुआ दिलो। मलकाइन मलकाइन ये घोड़ा पर हम ना चढ़ा। मलकाइन बुला के मलिकार कहत रहन, जाना तनी का कहत रहन, तोरा के घोड़वा पर बैठा के मारो पाठा से एक डंडा घोड़वा के, बस तोरा लेके घोड़वा सरपट उड़ जाए। बाप रे बाप, हमार सौ बूटी के जीव एक बूटी में हो गए मलकाइन।
1: नोट भग जोगनी, काबुल का मोर्चा पर हम ढेर मेमिन और मेम के घोड़सवारी का ट्रेनिंग दिया है।
3: और ना तका
1: हम तुमको ऐसा ट्रेनिंग देगा कि तुम घोड़ा का पीठ पर सर्कस का जोकर का मफिक कलाबाजी खाएगी, दौड़त घोड़ा पर फन के सवारी कसेगी।
2: मलकाइन भाई ये माई अब हमरो खींच बरा लाओ ता। हां ढेर ओट पर दिया बार के क्यों ना मत दिखाओ, आज शाम के जुलूस बा आ ई कहत बिया के घोड़ा पर ना चढ़ब। अरे अब इतना जल्दी और के तैयार होई रे? जग विध्वंस करे के मन बा, तनि एकर बीजा के दिमाग से देख।
3: अरे हम तो कहली बहिया कि तहरा के कान्हा पर टांग के बैठा दे, तेरा काप पर गोड़ रख, हम एगो सीढ़ियों मांग के ला देनी है, सीढ़ी पर चढ़ के घोड़वा पर बैठ जो। आए अब बतावा, काल भोर ही जुलूस निकली, सांझ हो गई, अब समय कहाँ बा बहिनिया?
5: आ इहो सोचे भक्तिन कि रानी लक्ष्मी बाई बन के घोड़ा पर निकलबू तो तार कतना नाम हो जाए जवार में के बात है। अब फोटो घिचाई से गलुरा में
2: फटक बाबा, अब एकर बात सुने के काम नहीं थे, एकरा घोड़ा पर चढ़े के पड़ी। चल अलमारी छाव दिखावे, ढेर चल चल चल मत करी सके अमा बढ़नी रे।
1: चलो भाग जोगनी, हम सिखावे जा तुमको घोड़ सवारी। तू सुने मत भागो, चलो
2: बलिका चलो। कांड रोकती घोड़ा पर बैठे के पहले हमारे हदस के मुंह जाए मलकाई।
5: केला चटिया लोग बोले रु बा है, जाओ बुलाती आज जा के सिखाओ भक्तिन के घोड़ सवारी। जे बसे कभी सब बगल के कोना में।
3: ठीक बा ठीक बा।
2: अरे रुआ रहे दीदी, बड़ा डर आ गई लिया
1: पीपर के पतई का माफी काटती है। अच्छा अब की जाना छोड़ दिया, बुला की ले जाओ इसको खराद पर तुम चढ़ाओ।
3: अच्छा ए पाहुन, कौन चाल सिखाई, दुलकी कदम ईरगा की सरपट?
1: हम सरपट के नीचे तो बातें नहीं करता है।
3: ठीक बा, सरपटे सिखाई। चल रे चल रे भगजोगनी चल
2: चल।
1: अरे सुनो, नारा सब ठीक है कि नहीं?
3: एकदम बलुक सुन लो, औरत के आजाद करी, स्त्री शिक्षा प्रचार करी, तिलक दहेज बंद, नारी के सम्मान करी, पतोह जराबल बंद करी।
5: वाह बहुत निमन बहुत निमन। जजमान जेवा से हमहू तनी जाके स्वागत गान आ मंगलाचरण के तैयारी देखी।
1: जरूर जरूर जरूर देखिए।
3: फटक बाबा, सब कुछ ठीक हो गईला पर बुला ले।
2: बुलाती भैया, ओ घड़ी हम चलब।
5: चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले चले।

0: कदरन कुमोदर, आज जलसा आज जलूस का प्रोग्राम फिट हो जाए नू तो समझो कि भारी दंगल मार लिया
1: हो। ये जाई पूरा गांव जवार के लोग जब तन मन धन से लागल बा तो काम फता होख दे करी। आज ले राउर कोनो काम रुकल है जी? हाँ, हमरा सभापति बन के का करे के होई?
0: अरे कुछ नहीं भाई, देराती कहे कुर्सी पर बैठ के प्रस्ताव पास करना है और सब पर हुकुम झाड़ना है।
1: प्रस्ताव का कहा लगी?
0: अरे नारी के भलाई में जलसा में प्रोग्राम बनाना है डिटेल में।
1: जैसे?
0: अरे जैसे का कहें, यह कि मर्द लोग हम लोग से बहुत बर्तन मलवाया, खाना बनवाया, कपड़ा खिंचवाया, घर में झाड़ू दिवाया, और ये काम मेहरारू लोग एकदम नहीं करेगा, ये सब काम मर्द के करना होगा। आप मर्द के मेहरारू के सलाम करना होगा।
1: ये तो बड़ा नीमन बाजी, तब का हुई?
0: तब का हुई? अरे मर्द लोग चाहे तो तुम लोग का बात मान जाई, ना तो हड़ताल करी और बगावत करी मेहरारू लोग के मारी जनता से।
1: तो रउआ का करब?
0: अरे भाई हम तुम्हारा प्रस्ताव तो मान लेगा, बाकी ये शर्त पर कि तुम हमारा सब ऑर्डर 100% आंख मूंद के बिना हिला हवाला के तमिल करेगी।
1: हाँ तुम अब प्रस्ताव के मतलब का रहल, बड़ा चल हाथ बनल वाले हमार बनली रे। बड़ा चल हाथ
0: एक खदरन को मदार हाई, हम बुलाकी के फाटक जी के एगो बहुत अर्जेंट मामला सेटलमेंट करने के भेजा था, अभी तक आया काहे नहीं?
1: अब तो पहर रात बीत गई हुई जी।
0: हाँ हाँ दोपहर,
1: तनी खा पी के आराम कर ले, काल दिन भर दौड़ी के बाद।
0: ठीक है ठीक है, बाकी बुलाकी या फाटक जी आया कहीं नहीं भाई?
1: ली नाव लेते दोनों जना पहुंच गए ले जा। तो आवा हो बुलाकी भैया।
2: पहुंच पहुंच गजब होके जा रहा बा, पहुंच गजब होके जा रहा बा।
1: भाई काम होय का?
2: अरे जजमान ये सब कहीं न जाए का कही,
1: हमार बहनी रे
0: सिंगा पर हवाई उड़ रही है।
1: बुझावल का है बुझावत मारा जा। अरे रउआ का है कटिया मार देलस जी।
0: खदेरन को मदार, नरेटी का बिगुल अपाना फुल स्टॉप करो, फौज का जवान खतरा के अलगे से चीन लेता है। हाँ तो फाटक जी या बुलाकी अकुआ का रिपोर्ट तमिल करो।
2: जजमानी के सामने कोई जजमान?
3: अरे बाप बहुत खतरनाक गुफा, तनिको इन्हें से उन्हें फैलाओ तो सब गुड़गोबर हो जाए।
2: अजेबा से बनिता संघार पुराण में दुर्वासा लिखी कहले बानी कि जनाना लोग के लाद में बात ना पचे आ कुकुर के जीव ना पचे।
1: हमार बहनी रे जब अतने विश्वास नहीं थे तो ऊपर पर नारी जागरण समिति के मरद लोग डपोर संघ में डपोर संघ।
0: अरे अरे अरे अरे तुम बैठो कहाँ, बेकार खिसियाओ मत, डोंट खिसियाओ मेमिन, तुम तो बात के टॉपिक का डायरेक्शन है बदल के चेंजर कर दिया।
2: बैठो जजमानिन बैठो बैठो, कोप के तोप त्याग दो, जे बात का बीच का बगल में
0: ए दीदिया ए दीदिया रूस। अरे बैठ जो हमरे किया बैठ।
1: हाँ नहीं तो हमारे बढ़नी रे।
0: हाँ बैठो भाई, अब बुलाकियों का बात नहीं मानेगी। हाँ तो ऑपरेशन मेहरारू जागरण और शिक्षा स्टार्ट।
2: ये हमनी के आंख से देख ली और कान से सुन ली, उस सब सुना दे पानी, बस ये पूछ जाई कि हमनी के गांव जेबा से ज्वालामुखी के मुंह पर बा अब विस्फोट हो कहीं वाला बा, अंत नगी चाहिल बा, परले द्वार पर आ गई बा।
1: हाँ

0: अंधार धुंधार रात में ये लोग हमने के कहां ले जा रहल बा?
1: से जाने भाई, हम तो आज ही जा गए।
2: कांट ओट गड़ गई काए परदेसी भाई।
3: आ जाई आ जाई, आइए गली जा, इका सामने स्कूल बा।
0: हां हां, देख रहल बानी।
1: अब तो हरा अंधार में तो लोगबे करे ना।
3: इतनी मोमबत्तियां बारह जजमान।
0: हाँ ठीक बा, ठीक बा, बारह से बनी। निमन कमरा बा, असबाब संभार के कोना में रखो।
1: हाँ
0: अब रहुआ सब भेज जाए। देखी सजाओ दही आ

0: खुआ के मिठाई रखल बा, खा पी के आराम करी सके। ओके कचरम कूट के बातें आ तबले हमनी के तनी ओठंगत बानी ढाबा में आ।
1: हाँ जी, चार दिन से दिन रात जागल बानी जा, देह थाक के चूर चूर हो गई बा, सुते के नू फटक बाबा।
2: हाँ हाँ
1: ठीक
2: हाँ।
3: हाथा दोनों फूट गई लग, अब खाना बंद करो लो भाई, बहुत काम करे के बाद।
4: तोरा सब हाथ गोला हरवा हथिया रेडी बा।
3: हाँ स्विच बोर्ड ठीक रखो, हम तार जोड़ जात बनी, बस अतने ध्यान देवे के बाद कि जब कहीं काल भोरे जुलूस निकले, एक साथ जुलूस पर, मंच पर, घोड़ा के कतार पर बम छूटे के चाहिए। जब पूरा भगदर मच जाए तो कुछ जुलूस के मेहरानों के पकड़ के आम के बगीचा देने ले जाए के बाद, वहाँ दूगो जीप आदमी के साथ तैयार बा, एक एक मेहरानों पर 5,000 रुपया मिली।
4: ओके बा, सुनते सुनते कान पाक गए, अब सुतत बानी।
3: अच्छा अच्छा सुत, हम सुतत बानी, बिहान होके में अब देर नहीं।
5: अरे जागले बानी भटक बाबा, सुना ना, अब अबीर करे के काम नहीं थे।
6: अरे तुरंत चली पाऊं भी कौन, वो आहट न ठोके ना, चलो
0: ये तो हाल बा ए पाहुन।
6: अब का होखी जजमान, हरि ओम हरि ओम।
7: अब का होई, अजय अब का होई, 8 बजे से जुलूस बा।
8: अरे फिकर नॉट मेमिन, अटेंशन, बुला की खूटी पर से हमारा रैपल उतारो।
7: आए आए दादा, कहाँ चलनी?
8: टोको नॉट मेमिन,
6: खतरा के मौका पर जजमान के अकिल बिजली रेखा चमकेला।
0: पाहुन रैपल लो, अगला हुकुम।
8: बुला की तुम कुदारी या पिलास साथ में लो।
0: हमू गोजी ले ले बानी।
8: नहीं नहीं, तुम घर का फरन संभारो, आर्डर तमिल। बुला की तुम दौड़ के ढेमन के साइकिल पर थाना भेजो, जल्दी करो।
0: ठीक बात, ठीक
8: करोगा जी के बोलेगा कि फोर्स के साथ तुरंत आना है, उनसे बात हो चुकल बा हमारा।
0: ठीक बात,
8: आम के बगीचा और पूरा गांव के घेर लेना है, क्विक मार।
6: चले जजमान।
7: ओहो
8: ओह, बात बुझो मेमिन, तुम्हारा ई बेकूफी वाला मोहब्बत पूरा गांव खातिर बहुत महंगा पड़ी, हमारा तुम्हारा साथ सौसे गांव उड़ जाई। ये फटक बाबा,
0: चली चली चली
7: चल गई जल्द हम कब करी। हे भगवान, हे काली माई, हे काली माई रक्षा करी, हम सहाय हो के काली माई।
0: जजमान तू तो दौड़े लगला।
8: अरे भाई तो आप हूँ, खड़ाऊ खोल के हाथ में लीजिए, टाइम नहीं है, दौरा में डेल मत डालिए, चलिए।
0: आ गई पन, ये इसको ला गई,
5: ये कोठरी हो। हाँ ये बुलाती
0: हाँ,
5: अंगुली से टेल के तनी देखो, भीतर से बंद तो नहीं है।
0: हरिओ मरिओ, मोमबत्ती जड़ते बा। अरे दादा ना, सब सुतल भरन सो।
6: अरे पाहुन मिठाई में भांग नु रहे।
5: हाँ कोना में आओ, देखिए स्विच बोर्ड आसमान के पास, केहू के मत जाने दीजिएगा।
0: मजाल हो जे बाते,
5: उन्हें आपका डिप्टी है। आ, आ, आ, आ, आ, बुला की
0: पाहुन,
5: इस सब पर तुम धुआं धार लाठी से हुमच हुमच के मारो, डराओ न, थम रैफल तान के खड़ा है।
0: ठीक बात बा, ठीक बात बा।
8: अरे देश द्रोही, हाथ उठा के सरेंडर बोलो।
0: खटक बाबा,
6: अजमान
8: खड़ा हूँ, इस सब के बेलमुंड पर तान के रेडी रहिए, महाराज हिलेगा नहीं।
6: रेडी रेडी, देखो अजमान खड़ा हूँ, मारत बन हिलत बा देश द्रोही के बात
8: है।
6: अरे अरे हिल में रे, हिल में रे, अरे
8: स्विच बोर्ड एकदम बेकार कर दो, बहुत खतरा है, जितना गोला बारूद और राइफल है अपना कब्जा में लिया, पुलिस को देना होगा। अरे अरे भाई, तुम सब यहाँ कहाँ चला आया, खतरा नु है।
7: अजी बर्दाश्त ना भइल जी, गिरे न मानल चल। अच्छा
8: आया तो नहीं खड़ा रहो, खतरनाक कुछ जगह है, देश द्रोही बटेलियन फाटक बाबा कतनो जोर से तुम लोग का बेलमुंड पर खड़ाऊ चार्ज करेगा, तब तुम लोग के हिलना नहीं है, नहीं तो हमारा रैफल का

0: बोली तुम लोग का करेगा पर दस्तखत करेगा।
1: पुलिस फोर्स आ गई
0: है,
1: आ गई पुलिस फोर्स।
0: चावस चावस मिजाज, देखिए देखिए दरोगा जी कैसा देशद्रोही बन बिलार के गिरफ्तार किया है।
2: ए बहरकन के मोर ये लोहा से पूंछ ढाली थे।
0: दरोगा जी तनी ई लोग के गधा पर चढ़ा के जलूस में घुमावेगा तब आप लोग के हैंडल करेगा।
3: ई लोग के मुंह में करिका चुन्ना पोतल जाई।
0: आगे बात नरेकी में पुराना जूता के माला पहनावल जाई। फाटक बाबा, फाटक बाबा, मिजाज आप देशद्रोही लोग के प्रोग्राम भरनस कर दिया। अजनाना लोग के जागरण का जुलूस निकाला, मीटिंग किया हाई कलौटी का, आ खदेरन को मदर का सब कनेक्शन भी फिट कर दिया।
1: हाँ नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम
0: बाबा।

अभी आप सुन रहे थे रामेश्वर सिंह कश्यप का लिखा नाटक लोहा सिंह। नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे श्याम सुंदर उस्ताद। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब सुनिए अंगिका लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार।

0: लोक संगीत, मिट्टी की खुशबू, श्रम की सुगंध, इसी से सराबोर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुंजित बिहार। बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गुंजित बिहार, आकाशवाणी भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार रात 10 बजे नामी गिरामी लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गुंजे बिहार।
1: श्रोताओं नमस्कार, लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गुंजे बिहार के आज के इस अंक में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका ही दोस्त डॉक्टर विजय कुमार मेश्वर और आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं
2: सोनाली कर्मकार। नमस्कार।
1: विष्णु पुराण की एक पंक्ति है, गायंती देवाह के लगितकाने धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद हेतु भूते भवंति भूया पुरुषा सुरत्वात्। विष्णु पुराण की ये पंक्ति अपने आप में इस माटी की महिमा को, इस धरती की महिमा, भारत के धराधाम की महिमा को दर्शाती हुई प्रतीत होती है और इस माटी की खुशबू और इस माटी में और सब बहुत सारी कुछ ऐसी ही बातें हैं कि माना जाता है कि पूरे विश्व के लोग, यहाँ तक कि देवलोक, वहाँ से भी लोग इस माटी पर लौटने के लिए वो तरसते रहते हैं।
2: बिल्कुल, और हमें यह गर्व है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ के कण-कण में आध्यात्म रचा है, आध्यात्म वसा है, जहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है, जहाँ धरती को माँ कहकर बुलाया जाता है, जन्मभूमि को माता कहकर हम श्रद्धा भी करते हैं और कहा भी जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है।
1: निश्चित रूप से, और अगर कहा जाए तो अपने इस प्यारे देश भारत में प्रकृति की एक अद्भुत कृपा है, मौसम की भी एक अद्भुत कृपा है, षड ऋतुओं का यह प्यारा अपना देश जहाँ की ऋषि कृषि संस्कृति विराजमान रहती है और यही संस्कृति की विशेषता है इसकी कि जो पूरे विश्व में इसकी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है।

0: जहाँ शिव कल्याणकारी है, शुभकारी है, शांतिदाता है, पापों का नाश करने वाले हैं, वहीं शिव अर्धनारीश्वर भी है। शिव शक्ति के प्रतीक भी हैं और शिव शिव भी हैं। इस सृष्टि के आधार और रचयिता यानी स्त्री पुरुष शिव और शक्ति के ही अनन्य स्वरूप हैं।
1: इसीलिए तो कहा जाता है शिव शक्ति की महिमा अग जग में सबसे न्यारी, अंतर की भक्ति कर मन की है बलिहारी।
0: इन्हीं से संचार और इन्हीं से संसार संचालित भी होता है और संतुलित भी होता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है और नर पुरुष,
1: यानी कि प्रकृति और पुरुष का ये संयोग,
0: बिल्कुल,
1: जिसके बगैर सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है।
0: प्रकृति के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष के बिना प्रकृति, दोनों का अनन्याश्रय संबंध है। अर्धनारीश्वर शिव इसी पारस्परिकता का प्रतीक है। आधुनिक समय में स्त्री पुरुष की बराबरी पर जो इतना जोर डाला जाता है, उसे शिव के इस स्वरूप में बखूबी देखा और समझा जा सकता है। यह बताता है कि शिव जब शक्ति युक्त होता है तभी समर्थ होता है। शक्ति के अभाव में शिव शिव ना होकर शव हो जाता है।

0: हमारा आज का कर्म हमारे भविष्य के फल का निर्धारण करता है।
1: निश्चित रूप से ये कहा गया है कि कर्म प्रधान है वो कर ही रखा, मगर जीवन का क्रम है और जीवन का क्रम जब अपनी गति से चलता रहता है तो किसी कवि की बड़ी ही खूबसूरत पंक्ति है कि ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा रहा मनमानी है। यानी जीवन है, जीवन के क्रम है, तो सुख और दुख आएंगे ही, और इसी क्रम के बीच में जिंदगी की नैया को लेकर आगे बढ़ते रहना है।
0: बिल्कुल, और सुख दुख में हमें संतुलित रहना है, सम पर रहना है। हमारे आज के अच्छे कर्म ही यह तय करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। हमारा आज का कर्म अच्छा नहीं हुआ तो हमारा भविष्य भी उज्जवल और सुरक्षित नहीं हो सकता है। हम कहते भी हैं कि जो बोएगा वही पाएगा। जीवन है, सुख दुख से है भरा, और हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही तो पाएंगे। इमली के बीज रोपकर क्या आम के पेड़ की आशा कर सकते हैं।
1: निश्चित रूप से ये कामना, यह कहावत तो बड़ी ही मशहूर है कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते हुए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म आप जैसा करेंगे वैसा ही आप फल पाएंगे, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए कि मन वचन और कर्म इसमें शुचिता बनी हुई रहे। जो भी कर्म हो ईमानदारी के साथ हो, सत्कर्म हो, और साथ ही साथ सतत प्रयत्नशील हो सदा आगे बढ़ते रहने के लिए।
0: बिल्कुल, इसलिए हमारा कर्म ही हमारे आने वाले भविष्य को प्रतिबिंबित भी करता है।

0: तो श्रोता भाइयों बहनों, लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार के आज के इस अंक को अब यहीं विराम देते हैं। आज के इस कार्यक्रम से अपने इस दोस्त डॉक्टर विजय कुमार मेश्वर को और साथी
1: सोनाली कर्मकार को
0: दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: संगीत, मिट्टी की खुशबू, श्रम की सुगंध, इसी से सराबोर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गूंजे बिहार। बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गूंजे बिहार, आकाशवाणी भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार रात 10 बजे नामी ग्रामीण लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गूंजे बिहार।
1: अभी आप सुन रहे थे अंगीकार लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गीत गजल कार्यक्रम भावगीत।

दोस्तों, ज़िंदगी खुशियों, गमों और संघर्षों का एक खूबसूरत सफ़र है। यह कभी मुस्कान देती है तो कभी आंसू, लेकिन यह हर मोड़ पर हमें कुछ नया सिखा जाती है।

प्यार में किसी को खोना भी जिंदगी है, जिंदगी में गमों का होना भी जिंदगी है। यूं तो रहती है।

नौकरी की तलाश में मैं शहर तो आ गया था, पर मेरा दिल अब भी मेरे गांव में था। यहाँ लोगों के बीच चलते हुए भी मैं अकेला था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि हर आंख मुझे ही पर रख रही है। हर एक शख्स पता नहीं जिंदगी की किस भाग का दौड़ी में बस भाग ही चला जा रहा है, बस अपने सर को झुकाए चले जा रहा था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वह भी मेरी ही तरह अपनी ज़िंदगी में कुछ समझौते कर रहा है। यह ज़िंदगी भी कितनी बड़ी कीमत लेती है आगे बढ़ने की। मैं तो शहर आ गया था, पर मेरा दिल अब भी वहीं मेरे गांव में था।

रोज आंखें खोलते ही जिसकी याद आए वो है प्यार, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए सारा दिन इंतज़ार रहे वो है प्यार, जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसके मनाने का इंतज़ार रहे वो है प्यार, जिसकी बातें सोच सोच कर हमारे चेहरे पे मुस्कान आए वो है प्यार। पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान को की कमी आपको अगर उदास कर दे वो है प्यार।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं गीत गजल कार्यक्रम भावगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा आपने सुना फिल्म तुम बिन से, जिसे गाया था जगजीत सिंह ने, बोल लिखे थे फैज अनवर ने और संगीत था निखिल विजय का। दूसरा गीत आपने सुना था फिल्म साथ साथ से, स्वर जगजीत सिंह का था, संगीत कुलदीप सिंह का था और गीतकार थे जावेद अख्तर। उसके बाद आपने सुना था फिल्म नाम से नगमा, स्वर पंकज उदास का था, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। अभी आप सुन रहे हैं फिल्म मौसम से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने और इसकी धुन बनाई है मदन मोहन ने।

इस गीत के साथ ही गीत गजल कार्यक्रम भावगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court today extended the judicial custody of five accused in the NEET paper leak case till 15th of this month. Yesterday, two other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paper leak. A re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal, days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of the border matter.
3: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River has resulted in this situation. In addition, there are cases of cross-border occupation and encroachment of no man's land in demarcated segments of the boundary, which are currently being mapped jointly. We have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of boundary matters. It should be clear to all concerned that there is no role for any third parties in a bilateral matter between India and Nepal.
2: Mr. Jaiswal said India also rejects the unwarranted references made in Pakistan-European Union joint statement regarding Jammu and Kashmir. Mr. Jaiswal said that the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable parts of India. The ministry spokesperson also said the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a four-day visit to India starting tomorrow. Mr. Jaiswal said during her visit, Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi. India has successfully conducted flight tests of the indigenously developed Rudra M2 air-to-surface missile from an airborne platform. The tests were carried out by Defence Research and Development Organisation DRDO and the Indian Air Force IAF under extreme release conditions with critical trajectory establishing the capability of all subsystems. Ministry of Defence said all the test objectives were fully met. Defence Minister Rajnath Singh lauded the efforts of DRDO, IAF, Defence Public Sector Undertakings, Development Production Partners and Industry Stakeholders for the achievement. He said the successful tests demonstrate the growing maturity of indigenous defense.